श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि। तदनुसार 6 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 6:02 पर आपके लिए लेकर आएंगी सुप्रभात ऋचा वर्मा। 7:02 पर होगा गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, जिसमें साथ रहेंगी नेहा बेनीवाल और ऋचा वर्मा। आपके लिए लेकर आएंगी दिल्ली और आसपास की खबरें। 9:00 आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने, जिसमें नए और पुराने गीतों का समागम लेकर आपके साथ रहेंगी नेहा बेनीवाल। पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए आपको रहना होगा पूजा आनंद के साथ। मैचलेस म्यूजिक आर होगा 10:02 पर और प्ले इट कूल के लिए समय रहेगा 12:02। 1:00 आप सुन सकते हैं रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित सभी शंकाओं का निवारण करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे श्री मनीष मल्होत्रा, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनसे बातचीत करेंगी आकृति खंडूरी।

तीन बजे का समय रहेगा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का, जिसमें आज वर्ल्ड जूनोसिस डे के अवसर पर बातचीत करेंगे डॉक्टर आरटी शर्मा से, जो कि हैं एक पशु चिकित्सक, और साथ ही रहेंगे डॉक्टर आर के रसानिया, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। ये बात करेंगे जूनोसिस के बारे में। आप इनसे अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। कृपया हमारे फोन नंबर नोट कीजिए, 2342108 0, 2342108 2। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नंबर है 9868107070, 9868107070। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपने संदेश भेज सकते हैं।

प्रधानमंत्री प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज दिन से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की चौथी इंडोनेशिया यात्रा होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम अय्यर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह सहकार समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर को मिले दान को छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले मंत्रिमंडल ने आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया है कि उर्वरक और कच्चा माल भारत ला रहे कुल 15 जहाज हॉर्मुस जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज कोलकाता के पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित किया है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष सिंगल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने देर रात लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के 7 विकेट से हराकर आईसीसी टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, चंगे होंगे। और मैं हूँ ऋचा, आपके साथ लेकर आई हूँ आज एक ऐसे शो को जो आपका जिससे आपके दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बात के बारे में जो चाहे ना चाहे हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि चाहे इस सोशल मीडिया के ज़माने में हम सभी जब कभी देखते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे कजन्स, हमारे रिलेटिव्स तरक्की कर रहे हैं, तो चाहे ना चाहे हम उनसे अपना कंपैरिजन करने लगते हैं। जब देखते हैं कि वो लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, किसी ने घर ले लिया, किसी ने कार ले ली, लोग क्योंकि अपने सोशल स्टेटस को हमेशा ही फ्लॉन्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। और जब अब हम लोग ये सब चीज़ें देखते हैं तो मन में एक इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि शायद हम वो नहीं कर पाए जो उन्होंने अचीव कर लिया। और ऐसे में हमारे मन से एक आवाज़ आती है कि आप क्यों नहीं उस जगह पर खड़े हैं। तो आज हम इसी बात पे बात करने वाले हैं, यानी कि तुलना नहीं बल्कि तरक्की कीजिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन। हम सब एक अलग अलग जर्नी पर हैं, क्योंकि हर बार जब हम खुद को कंपेयर करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ रहे होते बल्कि अपनी तरक्की को रोक देते हैं। किसी की जॉब, किसी के मार्क्स, किसी की शादी, किसी का लाइफस्टाइल, किसी की इंग्लिश, किसी का कॉन्फिडेंस, जब हम देखते हैं तो चाहे ना चाहे सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ तक पहुँच गए हैं, सवाल ये है कि क्या आप आज से कल बेहतर हुए हैं। तो अगले एक घंटे में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन के उस प्रेशर की, सेल्फ डाउट की, ग्रोथ की, जो आपके उस सफ़र की जहाँ आपका कंपैरिजन दूसरों से है ही नहीं, बल्कि आपको जीतना है खुद से। और हाँ, इस सफ़र में हमारे साथ ही बनेंगे कुछ बेहद खूबसूरत से गाने। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जो कहता है कि आप बस खुद पर भरोसा रखिए, मंजिल तो मिल ही जाएगी।

प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, सुप्रभात। मैं हूं ऋचा आपके साथ, और प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो एक दूसरे के साथ जो कंपैरिजन है, जो पीयर प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को रोक देता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ये कंपैरिजन शुरू कहाँ से होता है? बहुत छोटी उम्र से, चाहे न चाहे, हम अपने बच्चों के साथ करने लगते हैं। शुरू से हम, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते आए हैं दूसरों से कंपेयर। कहते हैं कि देखो, उनके बेटे के मार्क्स आपसे ज़्यादा अच्छे आए हैं, तो वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। उनकी नौकरी जल्दी लग गई, तुम्हारी कब लगेगी? उनकी शादी हो गई, भाई तुम कब करोगे? उनकी फैमिली आगे बढ़ गई, तुम कब जाओगे? अरे वो तो बड़े लकी हैं, देखो उनके बच्चे तो विदेश चले गए। और धीरे धीरे ये बातें केवल बाहर नहीं रहती बल्कि हमारे अंदर घर बना लेती हैं। हम अपनी अचीव को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं क्योंकि हम उस कंपैरिजन के जाल में जो फंसे हैं। अगर 70% आए ना तो खुशी नहीं होती, जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी और के 90% आए हैं और आपके मन में ये साल रहा है कि भला मेरे 90% क्यों नहीं आए। और अगर नौकरी मिली है तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती क्योंकि आपको लगता है कि मेरा

पैकेज अभी उतना अच्छा नहीं है कि जो हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ मैच कर सके। और मन में एक बात आती है कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूँ। और याद रखिए दोस्तों, सबसे बड़ा ट्रैप ही ये है, क्योंकि ये कंपैरिजन हमें भुला देता है कि हर इंसान की स्टार्टिंग लाइन अलग है, हर इंसान का स्ट्रगल अलग है, हर इंसान की स्पीड अलग है, हर इंसान की कहानी अलग है। इसीलिए किसी के चैप्टर नंबर 20 को देखकर अपने चैप्टर नंबर 30 को जज मत कीजिए। आज अगर वो आपसे थोड़ा सा आगे हैं भी, तो हो सकता है कल से थोड़ा भी बेहतर हुए हैं। इसलिए आप अपनी दिशा में बिल्कुल सही कर रहे हैं। बस आगे बढ़ते रहिए, मूव करते रहिए, खुश रहिए। और याद रखिए कि जो लोग जीत की जिद रखते हैं ना, जीत भी उन्हीं को मिलती है।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है सुप्रभात। मेरा नाम है ऋचा। प्रोग्राम का नाम और आपने मेरा नाम जानने के बाद आपको बता दूं कि 102.6 मेगाहर्ट्ज इस फ्रिक्वेंसी पर आप हमें सुन रहे हैं और हमारे चैनल का नाम है FM रेनबो, जो आप तक इंटरटेनमेंट के सातों रंग पहुंचाने का एक प्रयास करता है। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें इस कंपैरिजन से बचना है। और आपको पता है, कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, और शायद टेक्नोलॉजी की ही मेहरबानी है कि मेरी आवाज़ यहाँ से आप तक पहुँच पा रही है। लेकिन जहाँ पर कई फ़ायदे होते हैं, वही नुकसान भी होते हैं। और टेक्नोलॉजी का एक जो सबसे बड़ा नुकसान हमारे दिमाग पर और हमारे दिल पर हुआ है, वो है कि जैसे ही हमें सोशल मीडिया मिला है, वैसे ही हम अपना कंपैरिजन लगातार उस पर शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम कभी भी सोशल मीडिया खोलते हैं तो देखते हैं कोई विदेश जा रहा है ट्रिप के लिए, किसी का प्रमोशन हो गया है, किसी की एंगेजमेंट हो गई है, किसी की अचीवमेंट किसी ने पोस्ट की है, और हम अपनी ज़िंदगी को पॉज करके कुछ देर दूसरों की हाइलाइटेड रील देखने लगते हैं। लेकिन याद रखिए कि सोशल मीडिया पर लोग केवल अपना पॉजिटिव साइड ही डालते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं डालते। वो वहाँ पर वो पोस्ट करते हैं जो उनका बेस्ट एंगल दिखाता है, यानी कि उनकी आपको स्माइल दिखती है लेकिन स्ट्रगल नहीं दिखता, आपको रिजल्ट दिखता है लेकिन स्लीपलेस नाइट्स नहीं दिखती, आपको उनका कॉन्फिडेंस दिखता है, इनसिक्योरिटीज नहीं दिखती। और फिर हम क्या गलती करते हैं कि हम अपनी बिहाइंड द सीन लाइफ को किसी और की एडिटेड हाईलाइट से कंपेयर करने लग जाते हैं। किसी की सक्सेस देखकर आपको इंस्पिरेशन मिलती है अगर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसे बिल्कुल इसी तरह लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कीमत कम हो रही है, आप लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको कभी अपनी सेल्फ वर्थ कम होती हुई दिखे, तो याद रखिए सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए, क्योंकि अपने फ़ोन को साइड में रखिए। खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं बेहतर हुआ हूँ पहले से, क्या 6 महीने में मैंने खुद से कुछ सीखा है, क्या मैंने कोई स्किल डेवलप की है, कौन सी मुश्किल में मैंने क्वाइटली हैंडल किया था उस सिचुएशन को, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। क्योंकि ग्रोथ हमेशा दिखती नहीं, वो हमेशा आपके अंदर भी होती है। और इसी थॉट के साथ एक गाना आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, जो आपको कहता है कि अपनी उड़ान पर, अपने संघर्ष पर यकीन रखिए, अपने पंखों को फैलाइए और उड़ जाइए। हर पंछी की उड़ान अलग है, सफ़र अलग है, बस उस सफ़र को इंजॉय कीजिए और बने रहिए ऋचा के साथ प्रोग्राम सुप्रभात में।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा, आपके साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुप्रभात 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर। तो क्या आपने भी कभी किसी से कंपैरिजन करके खुद को कम महसूस किया है? अगर हाँ तो उससे बाहर कैसे निकलें? अगर आपको बता देती हूँ कि एक छोटी सी एक्सरसाइज जो अभी इसी वक्त मन ही मन आप कर सकते हैं, तो अपनी तीन क्वालिटीज़ के बारे में सोचिए, सिर्फ तीन। हो सकता है कि आप बहुत पेशेंट हों, हो सकता है आपकी अपनी फैमिली के लिए आप हमेशा खड़े रहे हों, हो सकता है कि आपने धीरे ही सही लेकिन हार नहीं मानी हो सकता है अपनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हों, या आपकी ऑनेस्टी आपकी ताकत हो। अक्सर हम अपनी कमियां गिनने लगते हैं, खुद को कम मानने लगते हैं और ये मान के बैठ जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप खुद को किसी से कम समझ रहे हैं तो याद इतना रखिए सिर्फ कि भगवान ने किसी को किसी की कॉपी बनाकर नहीं भेजा है, आप ओजी हैं। ओजी मीन्स ओरिजिनल कॉपी हैं, और ओरिजिनल की वैल्यू कंपैरिजन से नहीं कंट्रीब्यूशन से होती है। शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही खूबसूरत सी बात कही थी जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगी। किसी ने उनसे पूछा कि सफलता के आपके लिए मायने क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि किसी ने उस सफ़र को शुरू कहाँ से किया था। अब मान लीजिए कि शुरुआत को अगर हम 1 से लेकर 10 तक रेट कर दें और अलग अलग पड़ाव हैं,

और सफलता 11वें पायदान पर खड़ी है। तो किसी ने 10 से शुरू किया तो सफलता उसे तुरंत मिल गई, लेकिन वो सफलता किसी व्यक्ति जो 0 पे खड़ा है उसके लिए 1 तक आना, 2 आना, 3, 4, 5 आना, मेरे ख्याल से वो सफलता उस व्यक्ति के लिए ज्यादा है जिसने 0 से लेकर 5 तक का सफर तय किया है, बजाय उसके कि जो ऑलरेडी 10 पे खड़ा था और उसे 11 मिल गया। ठीक इस तरह अपनी सफलता को आंकना शुरू कीजिए, अपनी जर्नी का रिस्पेक्ट कीजिए। याद रखिए कि आप एकदम ओजी हैं और आपको लक्ष्य तभी मिलता है जब आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं। मेरे साथ बने रहिए, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुप्रभात, मैं हूं ऋचा आपके साथ।

प्रोग्राम का नाम है सुप्रभात और हम बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन नहीं बल्कि आप खुद ग्रो करना शुरू कीजिए। एक समय की बात है कि एक टीचर ने क्लास में दो प्लांट्स को रखा, एक प्लांट को रोज दूसरे प्लांट से कंपेयर किया और एक प्लांट को कहा कि देखो तुमसे ये लंबा है, तुम कब बड़े होगे, उसके पत्ते ज़्यादा हैं, तुम इतने अच्छे भी नहीं हो। और दूसरे प्लांट को दिया बस पानी, धूप और कहा गया कि तुम अपने पेस पर ग्रो करो। कुछ देर के बाद जिस प्लांट को कोसा जा रहा था, जिसे कहा जा रहा था कि तुम कम हो, वो प्लांट कमज़ोर पड़ने लगा। दूसरा प्लांट जिसे तारीफ मिल रही थी धूप पानी के साथ साथ, वो खिल रहा था। कहानी प्लांट्स की है लेकिन इशारा है हमारी ज़िंदगी की तरफ। जिस इंसान को हर वक्त कंपैरिजन मिलता है, जिस इंसान को हर वक्त लो फील करवाया जाता है, जिसे कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसका कॉन्फिडेंस सूखने लगता है। जिसे सपोर्ट, पेशेंस, सेल्फ ग्रोथ का स्पेस मिलता है, वो खेलने लगता है। खुद के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप कंपैरिजन वाला या ग्रोथ वाला? अपने आप से कहते चलिए कि मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मुझे बनना है खुद का एक सेल्फ वेल वर्जन। और अपना जो वर्जन है वो हर बार अपडेट करते चलिए, खुद को अपडेट करते चलिए, अपने स्किल्स डेवलप करते चलिए। और उस बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ एक बहुत ही खूबसूरत से गीत की तरफ बढ़ते हैं, जिससे जो हमें हर वक्त याद दिलाता है कि मैदान फतेह करने के लिए होते हैं। अपने आप को कंपैरिजन करते रहेंगे तो लाइफ में हासिल करना कुछ भी मुश्किल हो जाएगा। बस बढ़ते चलिए, चलते चलिए और देखिए हर एक मंजिल खुद ब खुद आपके कदमों में आएगी। मैं हूं रिचा आपके साथ प्रोग्राम सुप्रभात।

0: अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और मैं हूं आपके साथ ऋचा. और आज हम बात कर रहे हैं कि तरक्की नहीं बल्कि अपनी तुलना करनी है आपको, तरक्की करनी है और तुलना से आपको बचना है. आखिर क्यों ये सवाल ज़रूरी है कि तरक्की आखिर है क्या? हमें जानना भी तो है ना कि तरक्की भला है क्या. क्या सिर्फ बड़ी सैलरी होना तरक्की है? क्या अच्छे मार्क्स होना तरक्की है? क्या बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पर लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले, फॉलोअर्स आपके बढ़ जाएं, ये तरक्की है? या फिर शादी, गाड़ी, घर, बंगला, ये सब तरक्की है? नहीं, तरक्की है दरअसल कि आप जब छोटी बात पर पहले टूट जाया करते थे लेकिन अब आप संभलने लगे हैं. तरक्की ये है कि पहले आप ना नहीं कह पाते थे लेकिन अब आप अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं. तरक्की ये है कि पहले आप सभी को खुश करने की कोशिश करते थे लेकिन अब आपने खुद को अहमियत देना शुरू कर दिया है. पहले आप खुद पर डाउट करते थे लेकिन अब खुद पर काम करते हैं. ये भी ग्रोथ है, सक्सेस है और एक जीत है. तरक्की का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया को दिखाने के लिए होने वाली अचीवमेंट्स. तरक्की का अर्थ है एक अंदर से बेहतर इंसान बनना. मान लीजिए कि आपका प्रोग्रेस स्लो है, कोई बात नहीं, बस रुकना नहीं है, चलते रहना है. और याद रखिए ये बात भी कि फूल और सूरज कभी कंपटीशन नहीं करते. दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं और दोनों अपने समय पर खिलते हैं. चांद और सूरज की जर्नी को जरा सोचिए कि कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने सिंक कर रखा है. एक शांति का अनुभव लेकर आता है. एक सूरज निकलता है तो चमकता है. दोनों के काम अलग अलग हैं. अगर आप मछली से कहें कि वो आसमान फतह कर ले तो ये वो कभी नहीं कर पाएगी. अगर एक बर्ड से कहें कि समंदर की गहराई में गोता लगाकर दिखाए तो बताइए क्या उसके पंख ये कर पाएंगे कारनामा. इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक जीव की अपनी विशेषता है. जरूरत है तो सिर्फ अपने वजूद को पहचानने की, सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की, अपनी स्किल्स को शार्पन करने की. जरूरत है तो अपनी कमियों को कम ओवर करने की और बस इस सफर पर आगे बढ़ते रहने की. क्योंकि जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो यकीनन बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन असल बात तब है जब आप रुके ना, बस आगे बढ़ते चलें, चलते चलें. मैं हूं ऋचा, आपके साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप.

तो दोस्तों, आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि अगर मैं एक लाइन में कहूं तो दूसरों की रफ्तार देखकर अपना रास्ता मत बदलिए, अपनी मंजिल की पहचान कीजिए, अपनी चाल पर भरोसा रखिए, क्योंकि कंपैरिजन आपको थका देगा, ग्रोथ आपको बना देगी। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपनी ओरिजिनलिटी मत खोइए। दुनिया आपको कॉपी नहीं, बल्कि आपकी असली पहचान, आपका हुनर जानना चाहती है। आज जब आप घर जाते हुए, काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए या रात में सोने से पहले खुद से बस एक सवाल कि क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर हुआ हूँ, और अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, कंग्रेचुलेशंस, आप तरक्की कर रहे हैं हर दिन, चाहे थोड़ी सी ही ज़रूर। मैं हूँ आपकी दोस्त ऋचा, और इस प्रोग्राम सुप्रभात में उम्मीद करती हूँ कि आपको जो थॉट्स, जो स्टोरीज, जो फीलिंग्स आप तक पहुँची होंगी, आपको पसंद आई होंगी। चलते चलते एक गाना आपके लिए प्ले करके जा रही हूँ, मिलूंगी आपसे ठीक 8 बजे, तब तक इंजॉय कीजिए, क्योंकि नेहा आ चुकी है स्टूडियो में लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का पिटारा। तो अभी के लिए इस गाने को कीजिए इंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त।

सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की चौथी इंडोनेशिया यात्रा होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इस सत्र का आयोजन किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले मंत्रिमंडल ने आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी है। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर विंबलडन टेनिस पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। और अंत में क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने देर रात लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आग की वाणी आकाशवाणी।
1: सुबह के 7 बजते ही आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल हाजिर हो जाता है अपने सभी श्रोताओं की खिदमत में जो हमें सुन रहे हैं पूरे विश्व भर के साथ साथ हमारे इस प्यारे से शहर में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 102.6 के माध्यम से और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर आप पूरे भारत के साथ साथ विश्व भर में हमें सुन रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के पहले घंटे में। मेरा नाम है नेहा और आशा करती हूं कि आप सभी के दिन की शुरुआत ढेर सारी खुशियों के साथ बहुत सारे आराम के साथ हो चुकी है और ऐसे में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश भर की क्या खास बातें हैं आप तक पहुंचाने का पूरा वादा हम यहां पर कर रहे हैं। और हाँ, एक खास बात आप जरूर याद रखिएगा, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, फिर देखिएगा जिंदगी की हर परेशानी का हल आपको इतनी आसानी से मिल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज के शो में बहुत सी बातें होंगी। शुरुआत हो रही है बहुत प्यारे से गाने के साथ, कुणाल गांजावाला, वसुंधरा दास और बहुत से साथियों की आवाजों में। गाने के उस पार आपको लेकर चलेंगे इतिहास के पन्नों की तरफ।

सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल तो हम कर ही चुके हैं। और जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या डिमांड करते हैं कि भाई हमें मेन्यू कार्ड दिखाया जाए ताकि हम वहां जाकर सिलेक्ट कर सकें कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है और क्या आज हमें सर्व होने वाला है। ऐसे ही गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का मेन्यू कार्ड भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको बताऊंगी कि आज क्या क्या खास खबरें होने वाली हैं 7 से 8 के इस कार्यक्रम में जिसे आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और ये पहला घंटा है शो का, ये 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, 8 से 9 के बीच में भी जारी रहता है। फिलहाल नेहा आपके साथ है बिटवीन 7 to 8 AM। और आज हम याद करेंगे उन खास लोगों को जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है या बर्थडे है, और साथ ही उन्हें भी जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। इसके अलावा 7:30 AM पर आपके लिए लेकर आएंगे विम्बल्डन टेनिस अपडेट। जी हाँ, मुझे पता है यू आर अ स्पोर्ट्स लवर और आपको बिल्कुल टाइमली अपडेट्स चाहिए होती हैं, और इसीलिए 7:45 AM पर स्पोर्ट्स पल्स का विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से। और इस बीच हम ये भी जानेंगे कि 6 जुलाई जो आज है तारीख, ये इतिहास के पन्नों में किस तरह से दर्ज है। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं ना कि जब हर दिन हमारे सामने आता है तो वो एक कोरे कागज की तरह होता है जिस पर हम जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं और साथ में किस्मत जो चाहे वो लिख सकती है। तो आज 6 जुलाई कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं इस पन्ने पर दर्ज है इतिहास में, तो चलिए आपको बता दें 1885 में यानी कि 1885 में 6 जुलाई के दिन ही लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। क्या बात है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि एक जानकारी हमारे लिए है। इसके साथ साथ 2005 में मेक्सिको में 40,000 वर्ष पुराना मानव पदचिन्ह मिला था। भाई क्या बात है, ये ऐसी खबरें होती हैं जिनके बारे में जब जानते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम उस दिन क्या कर रहे थे जब यह खबर आई थी। लेकिन आकाशवाणी पर हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बिल्कुल अवगत कराएं कि इतिहास में क्या कुछ खास और नया हो रहा है, और साथ साथ आपके मनोरंजन का भी पूरा पूरा इंतजाम यहां पर हो गया है। सुबह के 7:10 हो चुके हैं, आइए एंजॉय करते हैं एक और प्यारा सा गाना FM रेनबो दिल्ली पर।

0: साथियों, आज प्रख्यात शिक्षाविद, जननेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। आकाशवाणी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर सादर नमन करता है।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

सुबह के 7:15 लीजिए जी, 16 हो चुके हैं। और अब बर्थडेज की बात करें तो आज फिल्म जगत से हिंदी फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह का जन्मदिन है। हिंदी फिल्मों के वो लोकप्रिय अभिनेता हैं, हम सभी उन्हें जानते हैं और बहुत सी फेमस मूवीज में हमने उनको देखा है, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गली बॉय और 83 जैसी फिल्मों में उन्होंने बहुत बहुत अच्छा अभिनय किया। और आज हम उन्हें हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं आकाशवाणी की तरफ से। और साथ में अगर आज आपका भी बर्थडे है तो मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, अब रणवीर कपूर सिंह की बात की है हमने, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, रणवीर सिंह की हमने बात की है, तो चलिए उनका बर्थडे मनाते हुए गाना सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से, यहाँ रामलीला से, बहुत ही प्यारा सा गाना, तत्तड़ तत्तड़।

0: श्रोताओं, आज महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की 40वीं पुण्यतिथि है। सामाजिक न्याय, समान अवसरों के लिए उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। आकाशवाणी बाबू जगजीवन राम को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। श्रोताओं, आज भारत के जाने माने उद्योगपति धीरूभाई अंबानी की 24वीं पुण्यतिथि है। उनका निधन 6 जुलाई को 2002 में हुआ था। भारतीय उद्योग जगत में उनके योगदान को आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। इनके साथ साथ आज हम याद कर रहे हैं भारतीय समानांतर सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्देशक मणि कौल को, जिनकी आज 15वीं पुण्यतिथि है। उसकी रोटी, दुविधा और नौकर की कमीज जैसी फिल्मों के लिए उन्हें आज भी याद हम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अलग सोच और फिल्म बनाने के नए अंदाज से भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। आकाशवाणी इन सभी विभूतियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

सुबह के 7:24 और 31 सेकेंड हो चुके हैं और मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि 7:30 पर आपके लिए होगा विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का अपडेट। और उससे पहले आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना, कुमार सानू की आवाज है साथ में, बहुत प्यारा सा म्यूजिक हम एंजॉय करेंगे। दामिनी फिल्म का ये गाना सिर्फ आपके लिए।

0: सुबह के 7:35। मेरा नाम है नेहा और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का पहला घंटा आप मेरे साथ सुन रहे हैं। और अब अगर आप दिल्ली से प्रयागराज सफर करते हैं रेलगाड़ी से, तो आपके लिए है एक बहुत ही अच्छी सी खबर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन की अवधि बढ़ा दी है। अभी कौन सी ट्रेन है मैं आपको गाड़ी संख्या बता रही हूं, चाहे तो नोट कर सकते हैं 04123 और 04124। ये वो गाड़ियां हैं जिनकी अवधि बढ़ा दी गई है। ये ट्रेन अब प्रयागराज से 5 जुलाई से 29 जुलाई तक और हजरत निजामुद्दीन से 6 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगी और आप ज्यादा आना जाना कर पाएंगे दिल्ली से प्रयागराज। क्या बात है जी, बड़ी ही काम की खबर है। और ऐसी ही खबरें प्लस टोटल एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आता है आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। अब चलिए जरा थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा तारा रमपम कर लें इस गाने के साथ।
1: Okay, now listen up. We're gonna tell you a story about four guys

जैसे सरगम के साथ सुरों में इतना प्यारा सा बंधन होता है, एक तालमेल होता है, यही तालमेल हमारी जिंदगी में भी बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद ठीक 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। आप ये कार्यक्रम सुनेंगे शिवेंद्र चतुर्वेदी के साथ। 8 बजे तक आपको मिलेंगी ताजा तरीन जानकारियां, स्पोर्ट्स जगत में क्या हो रहा है, खेल की दुनिया में क्या खास हो रहा है, कितनी बढ़िया बढ़िया खबरें हैं, वो सभी आपके लिए पेश होंगी। फिलहाल मैं आपसे लेती हूं अनुमति, आपसे मिलूंगी 9 बजे दिल के तराने गाने नए पुराने कार्यक्रम में। और आखिरी गाना आज इस शो का आपके लिए छोड़कर जा रही हूं, बहुत ही प्यारा सा गाना है, एंड फाइनली इट्स 7:40 नाउ, और ये गाना बिल्कुल निकल चुका है सोनू निगम और अलका याग्निक की मधुर आवाजों में। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट।
3: इंडिया विन 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
4: स्पोर्ट्स पल्स।
5: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। स्पोर्ट्स पल्स का एक और संस्करण लेकर हाजिर हैं हम। खेल दुनिया की हर धड़कन को करीब से, शिद्दत से, दिल से, बहुत मोहब्बत से महसूस करने की हमारी कोशिश का नाम है स्पोर्ट्स पल्स। और दुनिया भर में इस समय अगर साथियों कहा जाए खेलों के लिहाज से कार्निवाल चल रहा है तो गलत नहीं होगा। देखिए, एक तरफ वर्ल्ड कप फुटबॉल का जलवा देखने को मिल रहा है और पहली बार वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास में 1930 में जिस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, 2026 में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि तीन देश मेजबानी कर रहे हैं। और वैसे सह मेजबानी की शुरुआत की याद दिला दें आपको, 2002 में पहली बार जब एशिया में वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन हुआ था तब जापान और साउथ कोरिया ने ज्वाइंटली होस्ट किया था इस टूर्नामेंट को। और 2002 में वो संस्करण था, उस बार कोरिया की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जैसे पिछली बार मोरक्को की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी, इस बार भी मोरक्को की टीम बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। तो वर्ल्ड कप फुटबॉल में एक से बढ़कर एक उलटफेर भरे मुकाबले भी जारी हैं और एक बहुत ही जबरदस्त उलटफेर हुआ है कल रात को, जबकि पांच बार की चैंपियन ब्राजील को नॉर्वे ने हरा करके टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इससे पहले जर्मनी बाहर हो चुकी थी। हम आपको जरूर बताएंगे कि इन देशों ने कितनी कितनी बार वर्ल्ड कप फुटबॉल का खिताब जीता है। पांच बार मैक्सिमम टाइम्स ब्राजील ने जीता है और ब्राजील दरअसल एकमात्र ऐसा देश है जो लगातार 1930 से लेकर के अभी तक सभी संस्करण में वर्ल्ड कप फुटबॉल में खेलता आया है और उनको खिताब के दावेदारों में ऑटोमेटिकली हर बार शामिल किया जाता था। जो उनका कलेवर, जो चरित्र है, जो फुटबॉल का एक जलवा देखने को मिलता है, जो सांबा म्यूजिक देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और वही रिफ्लेक्ट होता है कलात्मक खेल में ब्राजील के, वो ब्राजील की टीम हार करके टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। और नॉर्वे ने एर्लिंग हालैंड, आपको याद होगा, जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, उन्होंने अपनी टीम के लिए गोल किए और नॉर्वे को जीत मिली, ब्राजील को मिली हार। नॉर्वे जीते 2-1 से, क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, यानी अंतिम आठ में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। इस समय जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तब एक और बड़ा अहम मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में एक और फॉर्मर चैंपियन खेल रहे हैं। जी हां, वो हैं मेजबान, ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि 1966 में जिन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, और वो एक और ऐसी टीम है जिनको हर बार खिताब के दावेदारों में शामिल किया जाता है और उनके बारे में कहा जाता है, जैसे अभी हमने नाम लिया इंग्लिश प्रीमियर लीग का, दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे डिफिकल्ट, सबसे धनी रिच लीग में उसका शुमार होता है और खिलाड़ी वहां पर सारी दुनिया से आकर के खेलने के लिए बेचैन रहते हैं। वो है इंग्लैंड और इंग्लैंड इस समय खेल रहे हैं मैक्सिको से। मैक्सिको जो कि इस टूर्नामेंट के को होस्ट हैं, सह मेजबान हैं अमेरिका और कनाडा के साथ। तो मैक्सिको में जहां पर यह मुकाबला खेला जा रहा है वो कहा जाता है कि काफी हाइट पर है और बहुत बातें आ रही थी कि इंग्लैंड को दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी फिलहाल इंग्लैंड की टीम ने 2-1 की बढ़त बना ली है और दो जो गोल किए गए हैं वो जूड बेलिंगम ने किए हैं। जूड बेलिंगम जो कि करिश्माई खिलाड़ी माने जाते हैं इंग्लैंड के और रियल मैड्रिड में फिलहाल खेलते हैं क्लब फुटबॉल, उन्होंने 36वें और 38वें मिनट में दो गोल किए और अभी उन्होंने गोल पोस्ट को हिट भी किया था। लेकिन इंग्लैंड को एक जोर का झटका अभी अभी लगा है जब हम और आप बात कर रहे हैं 54वें मिनट में, जबकि जेरल क्वांशा, उनको रेड कार्ड दे दिया गया है। यानी अब इंग्लैंड को आगे का जो मुकाबला है, जो बचा हुआ समय है, वो 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना होगा। तो मैक्सिको की पूरी कोशिश होगी कि वो वापसी करें और इंग्लैंड को, इंग्लैंड के साथ अभी फिलहाल वो जो ट्रेल कर रहे हैं 1-2 से, वो पिछड़ रहे हैं, उसमें बराबरी हासिल करें, क्योंकि इंग्लैंड अब 10 खिलाड़ियों के साथ खेलेगा। जेरल क्वांशा को रेड कार्ड मिल चुका है, जूड बेलिंगम ने दो गोल किए हैं और मैक्सिको की ओर से एक गोल हुआ है। इंग्लैंड 1966 के चैंपियन है, 1966 में एकमात्र बार उन्होंने खिताब जीता, 2010 में स्पेन ने खिताब जीता। स्पेन और पोर्चुगल, पोर्चुगल एक ऐसा देश है जो कि अभी तक एक भी बार खिताब वर्ल्ड कप का नहीं जीत पाया फुटबॉल में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी वो सपना लेकर के पहुंचे हुए हैं, इस बार के विश्व कप में भी। तो कल सुबह जो एक मुकाबला होने वाला है उसमें स्पेन और पोर्चुगल की टीमें आमने सामने होंगी, यानी एक पुराना चैंपियन खिताब का तगड़ा दावेदार स्पेन और दूसरी ओर पोर्चुगल जो कि यूरोप में फुटबॉल की महाशक्ति माना जाता है, वो उन दोनों टीमों में से एक टीम कल एलिमिनेट हो जाएगी। और हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन एक फॉर्मर चैंपियन कल भी एलिमिनेट हो जाए। इंग्लैंड जैसे अभी खेल रहे हैं, बढ़िया उन्होंने बढ़त हासिल कर ली थी, इनफैक्ट 3-1 की बढ़त हो सकती थी, फिलहाल वो 2-1 से आगे हैं, लेकिन एक रेड कार्ड उन्होंने फेस करा है, तो कुछ भी हो सकता है। 5 बार की चैंपियन ब्राजील बाहर हो चुकी है, नॉर्वे ने उनको हरा दिया। 4 बार की चैंपियन जर्मनी, वो तो खैर पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इटली 4 बार की चैंपियन है, 1934-1938 में इटली ने लगातार 2 बार टाइटल जीता था और 1930 में उरुग्वे ने पहला टाइटल जीता था। तो इटली 4 बार की चैंपियन, वो तो खैर क्वालिफाई नहीं कर पाई पिछले 2 बार से। अर्जेंटीना एक ऐसी टीम है लियोनेल मेसी के करिश्माई नेतृत्व में जो खेलती हुई नजर आ रही है, और 2022 में कतर में उन्होंने खिताब जीता था। उससे पहले 1978 जब मारियो कैंपस टीम में हुआ करते थे, 1986 जब डियागो मैराडोना हुआ करते थे, और 2022 में जबकि लियोनेल मेसी ने खिताब दिलाया था। तो 3 बार की चैंपियन अर्जेंटीना, खिताब के दावेदारों में सबसे तगड़े दावेदारों में उनको शामिल किया जा रहा है फिलहाल। एक और टीम है जिसको कंप्लीट टीम कहा जा रहा है, वो है फ्रांस की टीम। 1998-1998 जिनेडिन जिडान और 2018, ये 2 बार फ्रांस ने खिताब जीता है। और अर्जेंटीना और फ्रांस रियलिस्टिकली कहें साथियों तो 2 सबसे तगड़ी टीमें हैं जो कि इस कॉम्पिटिशन में फिलहाल बची हुई हैं। ऑफकोर्स अभी स्पेन

0: है, ऑफ कोर्स अभी इंग्लैंड भी खेल रहा है, उनको डिस्काउंट नहीं कर रहे हम। उरुग्वे जो कि दो बार की चैंपियन है वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के अगर वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि केवल 8 मुल्क हैं, केवल 8 देश हैं जिन्होंने ये टाइटल जीते हैं। और जैसा हमने बताया, 5 बार ब्राजील, 4 बार जर्मनी, 4 बार इटली, 3 बार अर्जेंटीना, 2 बार फ्रांस, 2 बार उरुग्वे और एक एक बार 1966 इंग्लैंड, स्पेन 2010। तो क्या कोई नया वर्ल्ड कप फुटबॉल का चैंपियन हमें देखने को मिलेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तक जो परिणाम आए हैं, मोरक्को ने कनाडा को पराजित किया 3-0 से, मोरक्को पहुंच गए हैं क्वार्टर फाइनल में। पिछली बार मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचे थे, प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जीत हासिल की है। फ्रांस ने पराग्वे को पराजित कर दिया है 1-0 से, तो फ्रांस भी पहुंच गए हैं अंतिम 8 में। इंग्लैंड मैक्सिको का मुकाबला जारी है, ब्राजील और नॉर्वे के बीच का रिजल्ट हम आपको बता चुके हैं, सनसनीखेज परिणाम आया है, जबकि ब्राजील की टीम नॉर्वे से 1-2 गोल से हार करके टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इस वर्ल्ड कप फुटबॉल में इंग्लैंड और मैक्सिको का जो मैच चल रहा है उसमें जो भी अपडेट होगा हम बिल्कुल आपको बताएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं।
1: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: इंग्लैंड के लिहाज से एक बढ़िया खबर आई है साथियों, मैक्सिको के साथ जो उनका मुकाबला चल रहा है, हैरी केन जो कि स्कोरिंग मशीन है, पहले वो टॉटनहम हॉटस्पर में खेला करते थे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, फिलहाल वो बायर्न म्यूनिक के साथ खेल रहे हैं और इंग्लैंड के लिए उन्होंने पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, 2 गोल किए थे, अभी अभी उन्होंने पेनल्टी पर 1 गोल कर दिया है, तो इंग्लैंड ने 3-1 की बढ़त बना ली है। और विंबलडन की बात करें, वहां पर भी बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स का सिलसिला जारी है। इगा स्वियातेक जो कि फॉर्मर चैंपियन है वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। नोवाक जोकोविच खिताब की दौड़ में बने हुए हैं, यानिक सिनर खिताब की दौड़ में बने हुए हैं। बहुत से वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों की विदाई हो चुकी है इस टूर्नामेंट से, लेकिन सच्चाई यह है कि यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच, इनफैक्ट नोवाक जोकोविच तो अपना 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब तलाश रहे हैं और उनकी खिताब की तलाश जो है वो दिनों दिन लंबी होती जा रही है, तो कुछ भी आसान तो नहीं है। और जैसे लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वैसे ही विंबलडन को टेनिस का मक्का कहा जाता है। और ये भी एक संयोग है कि विंबलडन और लॉर्ड्स दोनों पर मुकाबले जारी थे, क्योंकि विंबलडन में तो हम सभी जानते हैं कि टेनिस का मक्का है और वहां पर एक से बढ़कर एक मुकाबले हो रहे हैं। इगा स्वियातेक के बारे में हमने आपको बता दिया, इस बार कार्लोस अल्काराज़ नहीं खेले इंजरी की वजह से और उनकी अनुपस्थिति काफी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। सेरेना विलियम्स आई एक लंबे अरसे के बाद, हालांकि उनकी वापसी उतनी सुखद नहीं हुई। जो कॉम्पिटेटिव टेनिस है उसमें इतना आसान नहीं होता कम बैक करना। T20 वर्ल्ड कप महिला विश्व कप का महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला खेला गया कल लॉर्ड्स के मैदान पर और वहां पर 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित करके बहुत आसानी के साथ 7 विकेट से पराजित करके 7वीं बार खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की और ऑस्ट्रेलिया की टीम अजेय टीम सी बनती हुई नजर आ रही है। ये भी एक संयोग है साथियों, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि न्यूजीलैंड की टीम ने पिछली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था और भारत ने, आपको याद होगा, महिला टीम ने मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम पर 50-50 ओवर के संस्करण का खिताब जीता था। तो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर पहुंची थी इंग्लैंड और वेल्स में, जो महिला विश्व कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, बड़े लंबे अरसे के बाद हुआ था कि ना तो वो T20 के चैंपियन थे और ना ही 50-50 ओवर के संस्करण के। तो अब उन्होंने खैर वो कमी पूरी कर दी है। कल टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, सोफी बलिनी टीम के कप्तान, उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की, 150 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, कभी भी कंफर्टेबल टीम दिखी नहीं। नैट सिवर ब्रंट 7वां वर्ल्ड कप खेल रही थी, पहली बार टीम को लीड कर रही थी, पहली बार खिताब तलाश रही थी, अपनी ओर से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, 58 रन बनाए 53 गेंदों में। फ्रेया कैंप ने 44 रन बनाए नॉट आउट रहते हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जो 151 का लक्ष्य था वो तो केक वॉक साबित हुआ और बड़ी आसानी के साथ 153 रन उन्होंने 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए। बेट मूनी ने बेहतरीन पारी खेली, उन्होंने 64 रन बनाए 49 गेंदों का सामना करके और बहुत ही शानदार प्रदर्शन, ओवरऑल बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा ऑस्ट्रेलिया का। 7वीं बार वो T20 महिला विश्व कप के चैंपियन बन गए हैं, हर बार जब जब वो खेले हैं कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं और ऑफकोर्स इस बार तो खैर उनका जलवा बुलंद रहा। टीम की जीत को शब्द दे रही हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान सोफी मोलिनी।
2: Too good to be true, to be honest, Aish. Dad's here as well, so it's a special day. A lot of thought, a lot of effort, a lot of hard work, and just a group of people that wanted to do anything for each other. And that's been the real theme.

0: This last 3 or 4 months, playing for each other and caring for each other. Having the likes of Pez out there to calm the team down after that first innings. You know, Ash has been around for a long time and, yeah, that's not even hitting the surface. And to see someone like Lucy Hamilton just, you know, take it to water. She was so calm and had so much clarity out there. It's a true testament to her nature and the group around her.
1: सोफी मिलर ने टीम की जीत को शब्द देते हुए, साथियों जीत को शब्द देना हमेशा बड़ा आसान होता है लेकिन हार को शब्द देना कितना आसान या कठिन होता है। या आप जब किसी कंपटीशन में जाएंगे और भगवान न करे अगर आप कोई मुकाबला लूज करें और फिर आपसे रिएक्शन पूछा जाए तब आपको पता चलेगा। नैट सेवर ब्रंट जो कि इंग्लैंड की सर्वकालीन महानतम महिला क्रिकेट खिलाड़ियों में शामिल हैं और उन्होंने कल भी बहुत ही बढ़िया पारी खेली। इनफैक्ट उन्होंने सेमीफाइनल में जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ था 90 गेंदों में 133 रन जोड़े थे उन्होंने और हैदर नाइट ने, और सिंगल हैंडेडली कह सकते हैं कैरी किया था इंग्लैंड की टीम को इस पूरे टूर्नामेंट में। कुछ मैचेस नहीं खेल पाई थी नैट सेवर ब्रंट और पहली बार टीम को लीड कर रही थी लेकिन टीम को हार से 2-4 होना पड़ा। तो नैट सेवर ब्रंट कितनी डिसअपॉइंटेड थी आइए सुन लेते हैं उनके शब्दों में।
0: So they're hugely disappointed. We've had such a great competition up to this point. I suppose to end like that feels a bit sour in the mouth at the moment. But we were outplayed today by a class Australian side that used all of their experience in a huge final. Initially, yeah, I mean, ideally I'd won the toss and would be bowling first. I don't know. We were short of a par score on that wicket.
1: या कई सारे कारण बता रही थी कि अगर टॉस जीतती तो शायद वो बॉलिंग करती बल्लेबाजी नहीं करती या शी वाज शॉर्ट ऑफ वन फास्ट बॉलर, लेकिन सच्चाई है कि इतिहास लिखा जा चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने खिताब 7वीं बार जीत लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम भी इस समय इंग्लैंड में मौजूद है। वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया दूसरे T20 में मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड पर, ऐतिहासिक मैदान था और उन्होंने नया इतिहास रचा। हालांकि बल्ले से कुछ खास कर नहीं पाए और भारत को इस मैच में हार से 2-4 होना पड़ा। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था तो दूसरा मैच इंग्लैंड ने जीता और 1-0 की बढ़त बना ली है। 5 T20 मुकाबलों की श्रृंखला है, उसके बाद 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। तो काफी कुछ इस समय क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस के मैदान पर चल रहा है। एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप चल रही थी बैंकॉक में जहां पर भारत ने 10 मेडल जीते हैं। सिंड्रेला दास और दिव्यांशी भौमिक ने सिल्वर मेडल जीता, इनफैक्ट 4 मेडल भारत ने जीते हैं। 10 मेडल तो भारत ने विश्व पैरा आर्चरी सीरीज में जीते हैं जो कि चेक गणराज्य में चल रही थी, वहां पर 5 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक भारत ने जीते। और एशियन युवा टेबल टेनिस में भारत ने 4 मेडल जीते जिसमें 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल थे। कनाडा ओपन बैडमिंटन में भारत की चुनौती जल्दी समाप्त हो गई। आज अगर इस हफ्ते बर्थडेज की बात करें, 7 तारीख को महेंद्र सिंह धोनी अपना बर्थडे मनाएंगे, 8 जुलाई को सौरभ गांगुली अपना बर्थडे मनाएंगे, 10 जुलाई को सुनील मनोहर गावस्कर अपना बर्थडे मनाएंगे, 8 जुलाई को अनास्तासिया मिस्किना और चेतन आनंद जो कि भारत के पुराने बैडमिंटन खिलाड़ी रहे, अनास्तासिया मिस्किना जो कि टेनिस खिलाड़ी रही अपना बर्थडे मनाएंगी, 9 जुलाई को पूनम यादव भारत तोलक अपना बर्थडे मनाएंगी और 11 जुलाई को सविता पूनिया और कैरोलिन वोजनियाकी यानी दो हॉकी और टेनिस खिलाड़ी अपना बर्थडे मनाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल शिवेंद्र को अनुमति दे दीजिए क्योंकि कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, आप अपना ध्यान रखें, नमस्कार।
2: भारत को 1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
3: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आपकी वाणी आकाशवाणी पर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं ऋचा लेकर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

कुछ समझ आया? कई सारे गाने ऐसे होते हैं और म्यूजिक की एक खासियत है कि वो किसी लैंग्वेज, किन्हीं शब्दों का मोहताज ही नहीं है। बस आप सुनते हैं, झूमते हैं, आपको अच्छा लगता है, दैट्स इट, है ना। और रेनबो की कोशिश रहती है कि आप तक कुछ ऐसे गाने पहुंचाएं, कुछ ऐसी जानकारी पहुंचाएं ताकि आपका जो दिन है ना वो बेहतरीन हो सके। अब आज के मौसम के हाल से शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों का एकदम परफेक्ट डोज। तो शुरुआत करते हैं मौसम के हाल के साथ। तो आज छाता रखिएगा अपने साथ, क्योंकि आज भीग सकती है पूरी दिल्ली। आज सुबह और दोपहर के बाद बारिश के हैं अनुमान, और हालात ऐसे बनेंगे दोपहर के बाद कि आप बारिश में भीगेंगे। एक सुहावने से दिन की हो चुकी है शुरुआत। हालांकि कल बहुत ही चिपचिपा सा मौसम था, आपने महसूस किया होगा, मौसम में गर्मी थी, उमस थी, घबराहट हो रही थी, चिपचिपाहट हो रही थी, लेकिन आज सुबह से मौसम में हल्की सी ठंडक देखने को मिल रही है और धीमे धीमे बादल घिर कर आएंगे और एक बार फिर अपने साथ बारिश को लाएंगे। तो मौसम का हाल आज ऐसा है कि ऑफिस निकलने का आपका समय हो रहा है, अम्ब्रेला अपने साथ रखिएगा, क्योंकि गजब का दिन होने वाला है आज।

जी हाँ, एक गजब से दिन की हो चुकी है शुरुआत। मैं हूँ रिचा आपके साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर। और जब बारिश आज होगी तब आपको भी कुछ करना है। हाँ हाँ, पकौड़े चाय खा लीजिए, समोसों का आनंद ले लीजिए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जिम्मेदारी बनती है आपकी। बारिश में भीग कर नहाना और उसके बाद फिर गर्मा गर्म चाय पकौड़ों के साथ खाना, तो जैसे एक बहुत ही अच्छा तरीका है बारिश को एंजॉय करने का। लेकिन एक जिम्मेदारी भी निभानी है आपको, और वो जिम्मेदारी क्या है? कैच द रेन अभियान से जुड़ना है। और इस अभियान में आपको करना है जल का संचय, क्योंकि जल है तो हम हैं। और इसके लिए आपको कुछ बहुत ही जिम्मेदाराना कदम उठाने हैं, जो अगर आप करते हैं तो आप जल का संचयन करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, और उस पानी का प्रयोग हम कई जगह कर सकते हैं, जैसे कि हर घर, सोसाइटी और वर्क प्लेस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक को अपनाएं, सही जगह पर चुनकर रिचार्ज पिट या शाफ्ट बनवाएं, और अनुपयोगी जो बोरवेल्स हैं उन्हें ठीक कराकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने में मदद करें। जितनी भी आपके आसपास बावड़ियां हैं, कुएं हैं या पारंपरिक जल संरचनाएं हैं, इनका इन्हें आपको ठीक करना है, और साथ ही

इस्तेमाल के लायक बनाना है ताकि पानी को कि पानी जो है वो सभी लोगों को मिल सके। मानसून के जल का अधिकतम संचयन हो इसलिए आसपास के तालाब जलाशयों से गाद निकालकर जनधारण की जो क्षमता है उसका विकास करना है। साथ ही जल ग्रहण क्षेत्रों में अधिक से अधिक आपको पेड़ लगाने हैं ताकि ग्रीन कवर को बढ़ावा मिल सके। पानी की एक एक बूंद कीमती है और इसे हम सबको मिलकर बचाना है और ये एक बहुत ज़रूरी कदम भी है। तो अब जब बारिश हो तो अपने सारे एंजॉयमेंट के साथ ये भी सोचिए कि इस पानी का को हम कैसे बचा सकते हैं, इस पानी के लिए को हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो आज बारिश होने वाली है और एक छोटा सा ट्रायल पानी को सेव करने का आप आज ही कर सकते हैं। अच्छा, बारिश की बात हो ना तो मुझे ना सारे गानों में से सिर्फ ये गाना मेरे दिमाग में अपने आप आने लगता है और जो ये वाला म्यूजिक है ना, अपने आप बजने लगता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए बारिश का ये बहुत ही लेजेंडरी सॉन्ग।

कितना खूबसूरत गाना है ना, है ना। वैसे बारिश के टाइम में अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, घूमना, यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिससे हम मेमोरीज़ बनाते हैं। और हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मेमोरीज़ बनती हैं ना, वो बनती हैं कॉलेज टाइम में। आपको पता ही होगा कि जब कॉलेज टाइम होता है तो हम लोगों के कितने सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, कितनी सारी अनकाउंटेबल मेमोरीज़ कलेक्ट करते हैं, और यही सारी चीज़ें बाद में थ्रू आउट लाइफ हम लोगों को याद आती हैं। जब भी कभी जिक्र होता है तो आप पहुँच जाते हैं उस एरा में जहाँ बार बार कहते हैं, जब हम कॉलेज के दिनों में थे ना तब हम ऐसे किया करते थे, है ना। तो अगर आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जो स्टूडेंट, जो आप अभी एडमिशन के लिए ढूंढ रहे हैं, आपका CUET का रिजल्ट आ चुका है, आप एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग आपको ये करनी है कि आपको हमारा प्रोग्राम अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग जो हर वेंसडे को आता है वो ज़रूर सुनना है, क्योंकि हर बार हम एक नया कॉलेज लेकर आते हैं जिससे आपको कॉलेज के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस कार्यक्रम को सुनते रहना है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ भी मिलनी है। अब क्या होता है ना कि वैसे तो सारी जानकारी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर या जो भी यूनिवर्सिटी है उनकी वेबसाइट पर मिल जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के पास इतना वक्त ही नहीं होता, वो इतना टाइम डिवोट नहीं करते कि वो हर एक जानकारी जाकर वहाँ पढ़ पाएं, या कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से लिखी होती है कि वो समझ नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं आता कि भला कौन है ऐसा जो उनके सारे सवालों का जवाब दे, उन सारे क्वेश्चंस को हल करे। तो सॉल्यूशन मेरे पास है, अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन केवल यहीं पर है, इसीलिए तो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ के स्काईक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली को हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज। तो मिरांडा हाउस में ओपन हाउस का फेज टू होने जा रहा है आज से, जी हाँ आज से होने जा रहा है, और 6, 7, 8 तीन दिन ये होगा, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। इसके लिए क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है इनकी वेबसाइट पर जाकर, और वहां पर आपको कोर्सेज की जो प्रेफरेंस लिस्ट है, आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, आपको ECA या स्पोर्ट्स में कोटे में एडमिशन कैसे मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रोग्राम के लिए हैं, होस्टल रेजिडेंशियल क्वेरीज वगैरह की एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोसेस क्या रहता है, कोर्स कैसे रहते हैं, आपको जो सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से लेने चाहिए, क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर अगर आपको बहुत बहुत आपको प्रॉब्लम हो रही है सोचने में, तो आप आज रुख कर सकते हैं मिरांडा हाउस की तरफ। देखिए अभी सुबह का समय है, प्लान कर सकते हैं आप, 10 बजे तक पहुंच सकते हैं नॉर्थ कैंपस, Gate No. 3 से आपको एंट्री करनी होगी, और यहां जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो एक्सपर्ट्स हैं इस कॉलेज के वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, और ओपन हाउस रखा ही जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 12th पास किया है, जिन्होंने CUET अपीयर किया था और उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। तो बस रेडी हो जाइए आप भी इस गाने में, जैसे अमृता ने एंट्री ली है ठीक उसी तरह आप भी कॉलेज में एंट्री लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। जब कॉलेज की बात होती है ना तो खुद ब खुद एंट्री लेती हुई अमृता मुझे देखने लगती हैं। इंजॉय कीजिए इस गाने को और बने रहिए ऋचा के साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी

दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

एक बार फिर से आपका स्वागत है एफएम रेनबो पर। मैं हूं रिचा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। तो अगर आप अभी अपने ऑफिस की तरफ निकल चुके हैं, रास्ते में ट्रैफिक मिल रहा है या फिर आपकी गाड़ी एकदम हवास के साथ झूमते गाते हुए आगे बढ़ रही है, यानी ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है, दोनों ही इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की बात कर रहे थे हम, तो अगर आज आप मिरांडा हाउस जा रहे हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पीजी करने की सोच रहे हैं तो डीयू ने एक वर्षीय पीजी कोर्स के लिए भी आवेदन शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू ने पहली बार एक वर्षीय स्नातोत्तर यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा कल से शुरू कर दी है और एनईपी 2020 के अनुरूप के द्वारा इन कार्यक्रमों का उद्देश्य चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को पूरा कर चुके विद्यार्थियों को एक बार फिर से जो डिग्री देने का अवसर उपलब्ध कराना है। विश्वविद्यालय के अनुसार इसके लिए बच्चे 11 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। ये प्रवेश केवल उन्हीं बच्चों के लिए खुला है जिन्होंने विश्वविद्यालय से यूजीएफ 2022 के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में सफलतापूर्वक पूरा किया है, यानी कि दाखिला पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को चार वर्षीय स्नातक डिग्री के साथ संबंधित पाठ्यक्रम के निर्धारित पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा। इसका अर्थ यह है कि अगर आपने चार साल की जो यूजी है यानी कि ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, उसके बाद अगर आपका कोर्स अलाउ करता है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको करना क्या है, या तो आप मिरांडा हाउस जा सकते हैं अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है www.du.ac.in यहां जाकर भी आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डीयू में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है और बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन ले रहे हैं। तो अगर आपकी चॉइस भी अलग तरीके की है, आप कोई और कोर्स देख रहे हैं, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही नीट और जेईई से जुड़ी हुई भी एक खबर मेरे पास आपके लिए है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपका इंतजार कर रहा है। चलिए इस गाने को सुनते हैं, झूमते हैं, गाते हैं और बने रहिए मेरे यानी ऋचा के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ ऋचा आपके साथ। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर सुन रहे हैं आप। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नीट और जो जेईई एग्ज़ाम है, इनके तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मेरे पास एक ऐसी खबर है जो सुन के उन्हें बड़ा ही अच्छा लगेगा। यानी कि सरकार बोर्ड परीक्षाओं के नंबर को वेटेज देने की तैयारी कर रही है। अब इस सिस्टम में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी भी बनाई है और इस पर विचार भी किया जा रहा है। नीट जेईई जैसे बड़े एक एंट्रेंस एग्जाम में बदलाव होगा और इसमें क्या किया जाएगा कि आपके जो बोर्ड के मार्क्स होंगे ना, उन पर 50% आपको वेटेज दी जाएगी। और कई अगर वाकई ऐसा होता है तो बोर्ड के एग्जाम का महत्व सोचिए जरा कितना बढ़ जाएगा, है ना। और एक चीज़ और है इसमें कि शिक्षा मंत्रालय जो है, उनके अधिकारियों का ऐसा भी मानना है कि जिन बदलावों पर विचार किया जा रहा है उनमें एडमिशन या मेरिट लिस्ट तैयार करने में बोर्ड के 50% नंबर की वेटेज दी जाएगी। अब इससे ज़्यादा अच्छा ये भी रहेगा कि जो बच्चे हैं वो स्कूल के सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और नॉलेज गेन करेंगे। परीक्षा के धीमे धीमे उन्हें नॉलेज बढ़ेगी उनकी। तो अभी फिलहाल जो परीक्षा जो होता है वो ये होता है कि मेडिकल के लिए नीट और इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए जेईई परीक्षा देनी होती है, और इन परीक्षाओं में मिले जो स्कोर हैं या जो कट ऑफ हैं

उनके बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलता है। और इन एंट्रेंस में एग्जाम बैठने के लिए आपको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि आपको 90-80 लाने की जरूरत नहीं होती है, आप केवल 60 या 70% मार्क्स लाकर भी इनमें बैठ सकते हैं। लेकिन अब इस सिस्टम में बदलाव किया जाने के बारे में बात चल रही है और हो सकता है कि आगे जाकर आपके जितने अच्छे बोर्ड्स में मार्क्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप नीट या जेई का एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो बच्चा लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करने की ना तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए कि अब आपको अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करनी है ताकि आप एक हाई स्कोर तो ला ही सकें और साथ ही अपने ड्रीम कोर्स में एडमिशन भी ले सकें।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए

0: के आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ रिचा आपके साथ। मतगणना मतदाता प्रगणन का पूर्ण डिजिटलीकरण वाला पहला राज्य मिजोरम बन गया है। आपको पता ही है कि आजकल SIR की प्रोसेस चल रही है ऑल ओवर द इंडिया, और ऐसे में आपसे पूछे जा रहे हैं कई सारे सवाल। ना केवल मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ सेंसस भी चल रहा है जिसमें आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और ऐसे में एक आम धारणा इस तरह की है कि इसमें आप गलत सूचना दे दें, कुछ भी कह दें, कोई नहीं है घर में, हम क्यों भरें ये। लेकिन ये एक ज़रूरी दस्तावेज है जिसका जानकारी अगर गवर्नमेंट के पास जाती है तो उससे सरकार अपनी प्लानिंग कर सकती है, आपके लिए योजनाएं बनाने में, आप तक लाभ पहुंचाने में। इसलिए इसे एक अपॉर्चुनिटी लीजिए, इसमें भागीदार बनिए, एक कोशिश कीजिए कि आप जो भी जानकारी उन फॉर्म्स में भरें, जब जनगणना वाले आपके घर के द्वार पर आएं, इन्फॉर्मेशन सही हो, करेक्ट हो। और उसके साथ ही वे बेचारे इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जब कभी वे आए तो आप उन्हें पानी तो पूछ ही सकते हैं इतनी गर्मी में। और हमारे भारत की सभ्यता भी तो यही कहती है ना, अतिथि देवो भव, घर पर आया हर एक व्यक्ति हमारा मेहमान है। और जरा सोच कर देखिए कि वो लोग जो सुबह से काम पे लगे होते हैं, पसीने में कैप लगाए हुए लगातार वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें एक पानी का गिलास बड़ी ही राहत देगा। और हमारा देश तो ऐसा है, हमारी सभ्यता तो ऐसी है कि हम अपने छत पर पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, अपने घर के बाहर गाय और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए फूड और खाना रखते हैं, अपने मेहमानों का सम्मान करते हैं, अपने घर के द्वार तक पहुंचने वाले हर एक व्यक्ति को हम ईश्वर की कृपा समझते हैं। तो जब कोई भी सरकारी अधिकारी आपके द्वार पर पहुंचे किसी जानकारी को लेने के लिए, तो उसे उपेक्षित ना करें, ये ना कहें हमारे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। उन्हें वेट ना करवाएं, उन्हें एक चेयर ऑफर करें और एटलीस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे में अगर नींबू पानी हो जाए तो बात ही क्या है, एक कप चाय का प्याला दे दें तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा ना मैंने। तो हम बात कर रहे थे SIR की। तो देखिए, मिजोरम ऐसा पहला राज्य बन गया है, एक ऐसे जो ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जहाँ पर डेवलपमेंट इन कंपैरिजन ऑफ जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पर कम पहुँचा है, लेकिन सभ्यता, लेकिन सिविक सेंस वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच गई है, क्योंकि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज भी यहाँ पर है। और जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी में भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी इससे बहुत कुछ सीखिए और अपनी सिविक सेंस को बढ़ाइए, है ना। सही कहा ना मैंने। तो आगे से आपको भी यही करना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इंजॉय कीजिए और रिचा के साथ बने रहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 102.6 MHz पर।

अभी हम बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट की. आपको पता है वहाँ की सबसे खास बात क्या है? द नेचर एंड द नेचुरल ब्यूटी. जब भी आप वहाँ जाएंगे ना, मेस्मराइज हो जाएंगे. इतनी ग्रीनरी, इतना खूबसूरत पहाड़. और यही तो वजह है कि हम जब ऐसे मेट्रो सिटीज में कंक्रीट जंगल में रहते हैं ना, तो एक समय के बाद लगने लगता है कि अब कहीं ग्रीनरी में जाना है, कहीं नेचर के पास जाना है. और नेचर इज़, कहते हैं ना, नेचर जो है वो हमारी माँ है. और जब हम थक जाते हैं तो अपनी माँ के पास एक बार फिर से लौटना चाहते हैं. यही वजह है कि जैसे ही वीकेंड होता है, सभी दिल्ली वाले गाड़ी उठा के चल पड़ते हैं पहाड़ों की तरफ, सुकून की तलाश में. हालांकि इससे बहुत परेशानी होती है पहाड़ वालों को, जैम में फंसना पड़ता है और पहाड़ डिस्ट्रॉय भी इस वजह से हो रहे हैं. लेकिन कितना अच्छा हो कि हमें दिल्ली में एक मौका मिले अपने लिए एक छोटा सा गार्डन सेटअप करने का. क्योंकि कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां आपके घर के आसपास पार्क तो हैं लेकिन वो मेंटेन्ड नहीं है. आपके पास जगह तो है लेकिन प्लांट्स कहाँ से लाएं, ये बड़ा कंफ्यूजन है. आपको ग्रीन एरिया डेवलप तो करना है लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है ये भी नहीं पता. आपको प्लांट्स तो पसंद है लेकिन कौन कौन से प्लांट्स लें ये भी जानकारी नहीं है. तो बस अब सोचना आप बंद कर दीजिए. अगर आपके घर के आसपास कोई स्पेस है, आपके RW के पास कोई ऐसा पार्क है जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं लेकिन आपको प्लांट्स की ज़रूरत है, वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त. तो एक तरीका है, आपको करना है रजिस्ट्रेशन GPTA.eForest.delhi.gov.in. जी हाँ, यहाँ आकर आप रजिस्टर कर सकते हैं. ये दिल्ली गवर्नमेंट की ई फॉरेस्ट की वेबसाइट है और यहाँ पर आपको फ्री में प्लांट्स मिल सकते हैं. आप लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन के लिए आपको अपनी एक ID प्रूफ चाहिए होगा

उस आईडी प्रूफ के फोटोग्राफ को आपको अपलोड करना होगा और उसके बाद ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका एक प्रोफाइल बन जाता है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि आप ये प्लांट जो चूज कर रहे हैं वो अपने एनजीओ के लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं, कमर्शियल कर रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए कर रहे हैं या फिर अपने घर के आसपास के लिए कर रहे हैं। तो अब बताइए कि आपकी कैटेगरी क्या है और उसके बाद फिर आप अपने प्लांट्स चूज कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि दिल्ली में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए ग्रीन ई ड्राइव को लॉन्च किया गया है, ग्रीन ड्राइव पोर्टल लॉन्च किया गया है और इससे आप अपने लिए फ्री प्लांट्स मंगा सकते हैं। एक छोटा सा गार्डन आप भी अपने टेरेस पे, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा नेचर का अपने यहां भी ला सकते हैं। कितनी खूबसूरत सी बात है ना ये। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर कीजिए और जल्दी से इन प्लांट्स को अपने घर ले आइए।

जी हाँ, आप बिल्कुल कमाल हैं और ऐसी ही फैंटास्टिक रही है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी तो आपको मिल ही रही है, साथ ही बहुत सारे इंटरटेनमेंट भी आप तक पहुंच रहा है। समय हो गया है कि आपसे इजाजत लूं, क्योंकि नेहा लेकर आ गई हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो आज उनके पिटारे में कौन कौन से पुराने गाने हैं गोल्डन एरा के, और कौन कौन सा फ्रेश म्यूजिक वो लेकर आई हैं, उसकी खुशबू लीजिए, इंजॉय कीजिए और बने रहिए FM रेनबो के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: ये बिल्कुल सही बात है कि सुबह के 9 बज जाते हैं और हम आपके लिए लेकर आते हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने। और जब हम दो जमाने के गाने मिलकर सुनते हैं, जहां पर नए गाने भी हैं और गोल्डन एरा के गाने भी हम सुन रहे हैं, तो फिर देखिए मजा कई गुना बढ़ जाता है संगीत का। और आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ नेहा, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार, ते सत श्री अकाल। कार्यक्रम का आगाज हो रहा है उदित नारायण और अलका याग्निक की मधुर आवाजों में इस गीत के साथ, जो ये कहता है कि मुझे तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगता है।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
0: पता का चाय गजब का स्वाद।

सुबह के 9:14 हो चुके हैं और एफएम रेनबो दिल्ली पर दिल के तराने गाने नए पुराने कार्यक्रम में नए जमाने के गाने अभी आपने सुने जो रोमांस और प्यार से बहुत ज्यादा लबालब थे, भरे हुए थे। और अब आपको लिए चलते हैं जरा पुराने गानों की गलियों में। और यहाँ एक ऐसा गाना मैंने आपके लिए निकाला है किशोर कुमार की मधुर आवाज में। आपने जब जब ये गाना सुना और देखा होगा खास करके, तो क्या आपने काउंट किया कि आखिर कितनी खिड़कियां इस गाने में खुलती और बंद होती है? अगर नहीं तो जब वक्त मिले ऐसा जरूर कीजिएगा। फिलहाल आप इस गाने की जो मेलोडी है उसे एंजॉय कीजिए।

क्या बात है, प्यार तो करे चाहे झूठा ही करे लेकिन प्यार तो करे। किशोर कुमार तो इस गाने को गा ही रहे थे लेकिन बीच में आपको कहीं हीरोइन भी गाती हुई सुनाई पड़ी ना, वो उषा खन्ना जी की आवाज थी। और अब जरा पुराने गानों की गलियों से बाहर निकल के नए जमाने में फिर से लौट कर आते हैं और अभिजीत की आवाज में आपको सुनवाते हैं ये एवरग्रीन गाना। और हाँ, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि अगला पुराना गाना कब आएगा तो 9:30 बजे आएगा। कहीं ना जाए, सुनते रहें दिल के तराने, गाने नए पुराने।

दूरियां तो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, ना आपके और हमारे बीच में, और ना ही हमारे और पुराने जमाने के बेहतरीन गीतों के बीच में। तो बस लीजिए, अब आपके लिए पेश हो रहा है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की बहुत मधुर आवाज़ों में। अच्छा, गैस कीजिए कौन सा गाना हो सकता है। बस डेफिनेटली इस बात का मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि जो गाना प्ले होगा वो आपका फेवरेट ज़रूर होगा। चलिए बिना किसी देरी के लेट्स हियर दिस वन। क्या बात है, ओहो, साथ गुनगुनाइएगा जरूर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: एक बार फिर से वक्त आ गया है पुराने जमाने के गाने सुनने का। और अभी मैं आपके लिए गाना जब सिलेक्ट कर रही थी तो मैंने सोचा लता मंगेशकर की आवाज़ के कुछ गाने आपके लिए मैं यहाँ पर निकाल के रखूँ, तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि भाई इतने गाने हैं और सारे ही मेरे फेवरेट हैं और आपके भी पसंदीदा गीत हैं, कौन सा रखूँ कौन सा ना रखूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने फिर जो कन्फ्यूजन थी उसको दूर करते हुए ये गाना आपके लिए चुना है। कम सुनने को मिलता है लेकिन जितना सुनते हैं यार कितना प्यारा गाना है, और मुझे है कि इसको गाना भी इतना आसान नहीं है। आप ऊंची आवाज में आराम से गा सकते हैं लेकिन ये गाना थोड़ा सा ना लो वॉइस में गाया है, लो नोट्स पे गाया है लता मंगेशकर जी ने। आकाशदीप फिल्म का इतना प्यारा सा गाना जरूर सुनिएगा गहराई के साथ, और साथ में कोशिश कीजिएगा गुनगुनाने की।

अखिल सचदेवा की आवाज में हम सफर फ्रॉम बद्रीनाथ की दुल्हनिया। भाई मुझे इनकी आवाज बहुत पसंद है और जो गाने इन्होंने गाए हैं मैं अक्सर सुनने की कोशिश करती हूँ, बड़ा मजा आता है। और मैं आशा करती हूँ कि आज दिल के तराने गाने नए पुराने में जो गाने हमने सुने चाहे वो किसी भी जमाने के हों आपको पसंद जरूर आए होंगे। और अब आपको बता दें कि आप अगले घंटे क्या सुनने वाले हैं, तो ठीक 10 बजे होंगे समाचार और उसके बाद आप सुनिएगा 10 से 11 के बीच में वेस्टर्न म्यूजिक का मैचलेस म्यूजिक आवर। पूजा आनंद इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी और साथ ही आज के फोन इन कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बता दूं, दोपहर 3 से 4 के बीच में रेडियो डॉक्टर का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे। आज का विषय रहेगा स्पेशल प्रोग्राम ऑन वर्ल्ड जूनोसिस डे। ये कुछ नई चीज है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए। हमारे आज के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आर टी शर्मा और डॉक्टर एस के रसानिया। तो ये दोनों हमारे एक्सपर्ट्स आपको अवगत कराएंगे कि क्या है जूनोसिस, किस तरह की तकलीफ है और किस तरीके से हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो कार्यक्रम है दिल के तराने गाने नए पुराने, इसका आखिरी गीत मैं आपके लिए प्ले कर रही हूं फ्रॉम द फिल्म जीरो। भाई जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, डिजिट है और लोग कई बार किसी को जीरो कह देते हैं तो अपने आप को बिल्कुल आप नेगेटिवली ना लें क्योंकि जीरो बहुत काम की चीज है। आपने कोई भी संख्या लिखी है वहां से अगर जीरो हटा दिया जाए तो वो संख्या मुझे लगता है ज्यादा काम की नहीं रहती है। तो चलिए आखिरी गाना आपके लिए प्ले करती हूँ, इट्स 9:55 बाय द रेनबो क्लॉक एंड दिस इज नेहा साइनिंग ऑफ। आप सभी का दिन बहुत ही अमेजिंग होना चाहिए जो कि ऑलरेडी यहां पर हो रहा है और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा आज के दिन को। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

गुड मॉर्निंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे 2 दिन की यात्रा पर आज शाम इंडोनेशिया पहुंचेंगे। भारत जिनीवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोची में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,342 हो गई है। 16,740 लोग घायल हैं और 17,000 के अधिक लोग विस्थापित रूप से गुमशुदा हो गए हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना बताई।

है। सिक्किम की पर्वतारोही शेरिंग चोटी ने यूरोप की 5,642 मीटर की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्स पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और खेलों में विंबलडन पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर ऑल इंग्लैंड क्लब में 106वीं सिंगल्स जीत के साथ रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड को तोड़ा। फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे ने 2-1 से हार के बाद नेमा जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की।

तुम्हें छोड़ के, यू आर अ गॉर्जियस ट्रैक. दैट वाज फ्रॉम द मूवी बसेरा एंड ऑफ कोर्स हेल्म्ड बाय आशा जी एंड किशोर कुमार. म्यूजिक वाज बाय आरडी बर्मन एंड फ्रॉम द 1981 गॉर्जियस ब्लॉकबस्टर मूवी बसेरा. A heart-wrenching Hindi drama about sacrifice and family duty, all about love, then love lost, and then comes back, and then it's a strange story, a very different story, a different

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां

0: गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: Well, you've been with me, Pooja Anand, only on this genre Joyride on the Matchless Music Hour. Thank you so much for all the messages that made the show so beautiful. All your requests, well, they were all honored. And if you enjoyed the show, then do give me a thumbs up. I'll be back with you at 12 noon with Play It Cool. Stay close, stay tuned.

प्रस्तुत है आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। वो 2 दिन की यात्रा पर आज शाम इंडोनेशिया पहुंचेंगे। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोची में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,342 हो गई है। 16,740 लोग घायल हैं और 17,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। ओपेक प्लस देशों ने अगस्त में 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन प्रतिदिन बढ़ाने की घोषणा की। प्रचंड तूफान बावी ने अमरीकी प्रशांत द्वीपों पर दी दस्तक। गुआम और उत्तरी मरियाना द्वीपों के लिए विनाशकारी तबाही की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई। सिक्किम की पर्वतारोही शेरिंग चौडेन ने यूरोप की 5,642 मीटर की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्स पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और खेलों में विम्बलडन पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर ऑल इंग्लैंड क्लब में 106वीं सिंगल्स जीत के साथ रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा। और फीफा वर्ल्ड कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

बॉलीवुड की चटपटी अटपटी मजेदार जायकेदार और थोड़ी सी मिर्चीदार खबरों के साथ बॉलीवुड रील्स में एक बार फिर आपके साथ हूं मैं आकृति खंडूरी और साथ ही इस घंटे बॉलीवुड के अपडेट्स सुनाऊंगी ही और बनने का मौका भी दूंगी आपको आज का बॉलीवुड सरताज सवाल। तो प्रोग्राम में शेयर की गई बातों को ध्यान से सुनिए, पूरे एक घंटे बहुत सी बातें होंगी और उन्हीं बातों में छुपा होगा हमारा आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल भी, जिसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868101

जी हाँ, बॉलीवुड रेस में सबसे पहले बात करते हैं आज उस स्टार की जिसका आज बर्थडे है। और अगर मैं बॉलीवुड के कुछ सितारों की बात करूं जिनके आते ही स्क्रीन पर माहौल एकदम से बदल जाता है, तो रणवीर सिंह उन्हीं में से एक हैं और आज उन्हीं का बर्थडे है। 6 जुलाई 1985 ये रणवीर का बर्थडे है। और रणवीर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बैंड बाजा बारात फिल्म के साथ 2010 में एंट्री मारी थी, बिट्टू शर्मा का रोल किया था और उनको स्क्रीन पे देखते ही लगने लगा था कि हिंदी सिनेमा को, बॉलीवुड को एक नया लाइव वायर मिल गया है। लेकिन उसके बाद तो हर फिल्म में कुछ नया हुआ, कुछ अलग हुआ, कुछ धमाकेदार देखने को मिला। रामलीला का दीवानापन याद है ना आपको, या फिर बाजीराव मस्तानी की शान, पद्मावत में उन्होंने अपने रोल में अलग ही तरह से अपने आप को निभा लिया, और गली बॉय के सपने हो, सिम्बा की मस्ती हो, रणवीर ने हर किरदार में इतना जोश भर दिया कि हम जैसे ऑडियंस बस देखते ही रह गए। और ख़ास बात यह है कि जहां रणवीर हैं वहां एनर्जी जो है वो अपने आप डबल हो जाती है। अब एक्टिंग की बात हो, डांस की बात हो, फैशन की हो या फिर मस्ती की, जिस प्लेटफॉर्म में रणवीर हैं शिद्दत से छा जाते हैं। आज उनके बर्थडे के मौके पर बॉलीवुड ट्रेल्स की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हैप्पी बर्थडे रणवीर, ऐसे ही धमाल मचाते रहिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ हूं मैं आकृति। और बॉलीवुड की गलियों से अगली खबर हमें आ रही है, साउथ फिल्म पुष्पा के जरिए हिंदी ऑडियंस के बीच में भी अपनी पॉपुलैरिटी को जमाने वाली एक्ट्रेस श्रीलीला के अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में हिंदी डेब्यू के बारे में। और माना जा रहा था, पहले ये खबर आ रही थी कि वो कार्तिक आर्यन के साथ किसी फिल्म में अपनी हिंदी डेब्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल ये प्लान जो है वो चेंज हो गया है। और खबर ये आ रही है कि अब वो इब्राहिम अली खान यानी कि सैफ अली खान के बेटे के साथ अपनी बॉलीवुड डेब्यू को कर सकती हैं। और ये भी खबर आ रही है कि ये फिल्म जो है दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है। फिल्म का नाम फाइनल हो गया है, फिल्म का नाम है दिलेर। और इस फिल्म को जो डायरेक्ट जो कर रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि कुणाल देशमुख जो हैं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, और मेडॉक फिल्म्स के बैनर के तले ये फिल्म जो है बन रही है। कार्तिक के साथ एक्चुअली उनकी एक फिल्म ऑलरेडी बन चुकी थी, लेकिन फिर समहाउ ये रिलीज़ नहीं हो पाई, तो अब फाइनली इब्राहिम अली खान के साथ श्रीलीला की ये फिल्म दिवाली के मौके पर इस साल रिलीज़ होगी। बॉलीवुड में उनका डेब्यू, हिंदी डेब्यू।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बॉलीवुड रील्स में आप सुन रहे बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स, जिसे 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं आप, या फिर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, न्यूज ऑन एयर ऐप है ना आपके पास, या फिर वो वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जिससे जुड़े रह सकते हैं आप आकाशवाणी रेनबो से। और फिलहाल बॉलीवुड की अपडेट्स में अगली अपडेट हम तक आ रही है धमाल फिल्म के बारे में, जो कॉमेडी फ्रेंचाइजी है आपको पता ही होगा, और अपने चौथे पार्ट के साथ बॉलीवुड के सिल्वर स्क्रीन पर लौट रही है। अजय देवगन है, अरशद वारसी हैं, हमेशा की तरह रितेश देशमुख और जावेद जाफरी एक बार फिर से हम सबको हंसाने के लिए तैयार हैं। और इस बार एक नया नाम भी धमाल 4 में जुड़ा है और वो है रवि किशन का। और फिलहाल 10 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म के बारे में कहा गया है, एक बार फिर से एंटरटेनमेंट का, कॉमेडी का धमाल जो है वो इस फिल्म में होने वाला है। और रवि किशन पहली बार एक समुद्री डाकुओं के सरदार की किरदार में आ रहे हैं। ट्रेलर जो दिखाई दे रहा था उसमें बहुत ही एंटरटेनिंग उनका ये कैरेक्टर जो है वो नज़र आ रहा था। 10 जुलाई की इंतज़ार होगा धमाल 4 सिल्वर स्क्रीन पर, धमाल करती है या नहीं।

बॉलीवुड रील सुन रहे हैं आप, आपके साथ हूँ मैं आकृति। और फिलहाल बॉलीवुड की जो दूसरी अपडेट आपको बताने वाली हूँ वो है सेलेना जेटली के बारे में, जो 15 साल के लंबे ब्रेक के बाद एक्टिंग में एक बार फिर से वापसी करने वाली हैं। और सेलेना नेशनल अवार्ड जीतने वाले फिल्म मेकर राम कमल मुखर्जी की आने वाली बायोपिक में सिस्टर निवेदिता का कैरेक्टर निभाएंगी, ऐसा उन्होंने सेलेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया है। इस फिल्म को अरित्र दास और सरबानी मुखर्जी ने प्रोड्यूस किया है और इतिहास में असाधारण महिलाओं में से एक सिस्टर निवेदिता का किरदार जो है सेलेना निभाने वाली हैं। वैसे सेलेना के बारे में बात करें तो हिंदी सिनेमा में जो है उन्होंने 2003 में एंट्री मारी थी और थ्रिलर फिल्म जानशीन से उन्होंने अपने एक्टिंग के करियर की शुरुआत की थी। और उसके बाद 2005 में उनकी फिल्म नो एंट्री आई थी, हिट हुई थी। अपना सपना मनी मनी 2006 में, गोलमाल रिटर्न्स 2008 में और थैंक यू 2011 में आई थी। उनकी फिल्म अच्छी खासी चली थी और के अलावा उन्होंने मिस इंडिया का खिताब 2001 में जीता था। और मिस यूनिवर्स की अगर बात करें तो आपको याद होगा चौथे रनर अप भी वो रही थी। फिलहाल एक लंबे समय के बाद, 15 साल के बाद सेलेना जो है सिस्टर निवेदिता के किरदार के साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर से लौट रही हैं। हमारी तरफ से बेस्ट विशेज उन्हें।

और बॉलीवुड ट्रिल्स में अब मौका आ चुका है, हम आपको पूछते हैं आज का बॉलीवुड सरताज सवाल, जिसका आप सभी को इंतजार होगा, क्योंकि इसी सवाल का सही जवाब सबसे पहले हम तक पहुंच जाकर आप बन सकते हैं आज के बॉलीवुड सरताज। और व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमारे पूछे गए सवाल का सही जवाब देंगे वो है 9868107070। तो आज रणवीर सिंह का बर्थडे है, जी हाँ, 6 जुलाई 1985 को बॉर्न रणवीर सिंह, आज 41 साल के हो रहे हैं। तो क्यों ना आज उन्हीं से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछते हैं। रणवीर सिंह की बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू फिल्म का नाम बताइए। जी हाँ, हमें बताइए आप कि रणवीर सिंह की बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस फिल्म के साथ शुरुआत हुई थी। हिंट आपको ये दे देते हैं कि ये फिल्म जो है 2010 में रिलीज हुई थी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। बताइए हमें और बन जाइए आज का बॉलीवुड सरताज।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर या फिर न्यूज ऑन एयर ऐप या वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से। और बॉलीवुड ट्रेल्स में अब मौका आ चुका है जब हम आज का बॉलीवुड सरताज कौन बनने वाला है ये अनाउंस करने वाले हैं। हमने आपसे सवाल पूछा था कि रणवीर सिंह जिनका आज बर्थडे है उनकी बॉलीवुड की डेब्यू फिल्म का नाम क्या है। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। आप में से बहुत से लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है, लेकिन आज के प्रोग्राम में सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब बताकर बॉलीवुड सरताज बन रहे हैं कौन बताते हैं। जी हाँ, प्रवीण चौहान साहब खारगांव एमपी से, उन्होंने इस सवाल का सही जवाब हमें पहुंचाया है। 2010 में बैंड बाजा बारात फिल्म के साथ रणवीर सिंह ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। बहुत बहुत बधाई हो प्रवीण आपको। वैसे प्रवीण के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है, आप सभी को जरूर बताना चाहेंगे। उन सभी का नाम ये है, तरुण कोहली साहब सूरज कुंड मेरठ से, सलीम मलिक साहब का भी सही जवाब हम तक आया है, ऋषु कटारिया पवन कटारिया का गिदरबगा पंजाब से, पंकज अमरावती से, नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से हम तक सही जवाब पहुंचा रहे हैं, फुरकान साहब का, निकिता पारेकर का पुणे से ये सही जवाब हम तक पहुंचा रही हैं, सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से हमसे जुड़ी हुई हैं, धर्म भाटिया जी का भी सही जवाब हम तक आया है, उमेश कुमार साहब का ये सही जवाब पहुंचा रहे हैं, सुरजीत ग्रेटर नोएडा से हम तक पहुंचे हैं, कविता देवभूमि उत्तराखंड से सही जवाब के साथ जुड़े हैं, महेंद्र प्रताप सिंह राजपुर औरंगाबाद बिहार से हमने सुन रहे हैं प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, प्रमेद कुमार सिंह साहब, परमिंदर कुमार सिंह साहब, सुखविंदर साहब सुखालाल नगर भटिंडा से हम

जुड़े हैं आयुष शर्मा राजस्थान से, सही जवाब देने वाले हैं नारायण प्रधान साहब ओडिशा से, ये हमसे जुड़े हैं दानिश खतौली से, और ये सही जवाब हम तक आया है अरविंदर का दिल्ली से। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, लेकिन सबसे बड़ी बधाई हम दे रहे हैं किसे, प्रवीण चौहान साहब को खारगांव एमपी से आज का बॉलीवुड सरताज बनने के लिए।

और इसी के साथ इस घंटे के बॉलीवुड रील्स के साथ मुझे यानी आकृति को दीजिए विदा। कुछ ही मिनटों में आपके साथ होंगी पूजा आनंद प्लेट कूल लेके। एक बजे रेनबो हेल्पलाइन में मैं ही आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी। और आज रेनबो हेल्पलाइन में हम ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट होंगे श्री मनीष मल्होत्रा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और 2 बजे शालिनी खंडेलवाल के साथ रहेगा आशियाना प्रोग्राम में। और आज बात होगी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे श्री रविन्द्रनाथ प्रधान साहब।

0: That was, of course, Bruce Springsteen with Born to Run. And thank you so much for telling us that you've been tuned in and enjoying the show and loving the music. Well, this is Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours. You're messaging us on our WhatsApp number 9868107070. Well, what can we say? But the fact is, if you are anywhere close by and to the radio set and you are listening to us, then do tell us, what did you do this weekend and how would you spend it? Retreating into your shell or taking a sabbatical from the world, or simply going all out and spending the time with your friends, family, and laughing it out and living it to the right hilt? Well, whatever you do, one thing is for sure, we'll be there for you 24/7, waiting for your messages, waiting for your special songs. Is me right here right now. Let's take a short break. We'll be back in just a couple of seconds. Don't go anywhere. Remember, I've got loads more on the other side.
1: Mangal bhavan mangal hari dravahu sudash.
2: Shri Ram katha marmagya Dr. Kumar Vishwas ji ke saath Shri Ram charitmanas ki bhav ras sangeet yatra sampurna Shri Ram charitmanas सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर.
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है.
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो, जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं.
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या.
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए.
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए.
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए.
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है.
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए.
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं.
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: Gregory Peck was, McKenna's Gold or Lawrence of Arabia. Can I go on? There's so many movies in it. They'll be like, is this a music show? Have you tuned into a movie show? Well, whatever the fact is, movies is something epic, right? Okay, thank you for all the kind words. Thanks to the team at Akashwani Rainbow Western Music Broadcasting. Without this, it wouldn't have been possible for me to go through the entire process. It's a mentally exhausting journey, and now my research work is at final print and binding. Kudos to you, girl, D3, that's going for you. What can I say, but it's been all your hard work. Ooh, that is good, man. Very good. Congratulations, my dear. Super proud of you. A short trip to Chennai to meet friends for a day. Spent quality time with friends. Nice recharging weekend. This comes in from M. Rajkumar from Trichy, Tamil Nadu on app. Thank you so much, M. Rajkumar. And glad to know that you tuned in to Play It Cool too. Well, that's fun, huh? Traveling and all. Okay, Anoop Kumar from Jharkhand says, just stay at home and listen to music. I know, Anoop, that also happens. I remember there was a time I used to have this huge collection of ghazals, and nothing could stop me from listening to Jagjit Singh or Pankaj Udas and so many more, and Ghulam Ali Saab, of course, and it used to be a completely ethereal experience. But nowadays, it's all about having some fun. At the moment, let's have some fun by taking a short little break and coming back for your messages. Don't go anywhere. We still have loads more in store. This is Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours. I've spoken too much, so I need to take a break. We'll be back. You tuned in with me on Play It Cool. My name's Pooja Anand.
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त ये चाय बड़ी है मस्त
2: पता का चाय गजब का स्वाद
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
5: मैं माँ बनने वाली हूँ बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो
6: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है
5: क्या ये जांच उपलब्ध है
7: जी हाँ सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है
8: याद रखें HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है
7: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु स्वस्थ परिवार
8: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें
9: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक वही जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत ही अच्छे से निभाए, और इन्हीं में से एक है समय पर ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना। आज का रेनबो हेल्पलाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि सीखने के लिए भी है। अगर आप नौकरी करते हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है, आप फ्रीलांसर हैं या फिर आप पहली बार ITR भरने की सोच रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आप सभी के लिए है। अपने सवालों को, अपनी क्वेरीज को साथ रखिए, क्योंकि आने वाले एक घंटे में आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन में मैं आकृति इसी विषय पर बात करूंगी, और हमारे साथ हमारे बहुत ही खास एक्सपर्ट होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष मल्होत्रा साहब, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड हर सवालों का आपके जो हैं जवाब देंगे। और आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800111026 पर भी फोन कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टूडियो की लैंडलाइन नंबर पर दिल्ली के STD कोड लगाकर यानी कि 011 लगाकर डायल कीजिए 2342108 एंड 2342108। और प्रोग्राम में सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ हमारे अपने एक्सपर्ट आज के मनीष साहब का। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आकृति जी, शो में आमंत्रित करने के लिए।
1: और हमारे लिसनर्स के क्वेरीज जो हैं आनी शुरू होती हैं, उससे पहले बहुत ही बेसिक सवाल आपसे कर लेती हूँ कि ITR किसको भरना चाहिए?
2: ITR उन सभी को भरना चाहिए जो इनकम अर्न कर रहे हैं, और उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो है 250,000। अगर आप 250,000 से ज़्यादा सालाना किसी भी सोर्स से इनकम अर्न करते हैं तो आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है। इसके अलावा जिनकी 250,000 इनकम नहीं है लेकिन किसी कारण से TDS कट गया है, या रिफंड लेना चाहते हैं, या अपनी भागीदारी दिखाना चाहते हैं, तब भी वो फाइल कर सकते हैं।
1: ऑल राइट, सो ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित आज सवालों के जवाब देने के लिए मनीष मल्होत्रा साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे साथ रेनबो हेल्पलाइन के स्टूडियो में हैं। आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं 9868107070 पर। और मनीष, आपसे तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ITR फाइल करने के लिए कौन कौन से कॉमन फॉर्म्स होते हैं?
2: कॉमन फॉर्म अगर मैं बात करूँ, जो सैलरीड है, नॉन बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ITR 1 और ITR 2 फॉर्म्स हैं। इसके अलावा ITR 3 और ITR 4 फॉर्म्स जो हैं वो बिजनेस के लिए हैं, बिजनेस रिटर्न अगर गिनी की है तो।
1: जी जी, और फाइल करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हमें?
2: आपको आपके फॉर्म 16, आपका AIS, TIS जो आप इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं
1: जी।
2: आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सके, मिलान कर सके, आपका पैन इनकम टैक्स लॉगिन, क्योंकि ई फाइलिंग जो है वो मैंडेटरी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ऐसी कोई इनकम जो AIS या TIS में छूट गई है उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कोई सेल परचेज प्रॉपर्टी की है वो जानकारी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, वो सारी जानकारी आपको एकत्रित करनी है ITR फाइल करने से पहले।
1: जी, और ITR की लास्ट डेट क्या है?
2: ITR की लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, 31 जुलाई अगर आप सैलरीड हैं तो, और 31 अगस्त अगर आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है, बिजनेस से इनकम है।
1: ऑल राइट, तो चाहे आपकी सैलरीड इनकम हो या प्रिजम्पटिव इनकम हो, या फिर आप पेंशनर हैं या फिर आप फ्रीलांसर हैं, ITR तो आपको फाइल करना ही होगा। प्रोग्राम से जुड़े रहिए रेनबो हेल्पलाइन पर, आज ITR से रिलेटेड हर सवालों के जवाब आप तक पहुंचेंगे। मनीष मल्होत्रा साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे साथ हैं, और आपके सवाल हम तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और बार बार आपसे यही कहूंगी आज कि सही जानकारी, सही समय और सही फैसला, यही है हमारी फाइनेंशियल समझदारी की पहचान। रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं ITR के बारे में, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में। और इन

0: यार कौन भरेगा, कब भरेगा, क्यों भरेगा, कैसे भरेगा, ये सभी उलझनें अगर आपकी भी हैं तो हम तक अपने सवालों को ज़रूर पहुंचाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और मनीष मल्होत्रा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे साथ स्टूडियो में हैं और बहुत से सवाल हैं। एक सवाल हम तक आया है राहुल साहब का मेरठ से। मनीष ये कहते हैं कि इन्होंने जल्दबाजी में एक गलत ITR फॉर्म चुन लिया है, तो क्या इसे बाद में बदला जा सकता है?
1: देखिए ITR के अंदर धारा 139.5 है, 139.5, जिसमें आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। सपोज करिए आपने गलत फाइल कर दी और आपने असेसमेंट ईयर 26-27 की बात कर रहे हैं, तो मार्च 27 तक आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि फॉर्म ही गलत भर दिया है, फॉर्म अगर आपको चेंज करना है तो आपको रेक्टिफिकेशन मोड लेना होगा, क्योंकि आप सेम फॉर्म को रिवाइज कर सकते हैं। फॉर्म चेंज करना है तो आपको रिटर्न को रेक्टिफाई करना होगा, वो प्रोविजन भी उसके अंदर है। आप जाएंगे और रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
0: जी जी, कविता दिल्ली से कहती हैं कि इनकी कंपनी ने अभी तक इनको फॉर्म 16 नहीं दिया है और लास्ट डेट जो है अब इसी महीने है, तो मैं क्या करूँ?
1: कविता जी कंपनी से ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं मुझे लगता है। नहीं ठीक है, देखिए एक टैक्स पेयर का अवेयर होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और व्यक्ति का देश में जो काम कर रहे हैं। और 31 जुलाई है, ये स्वाभाविक है कि नज़दीक है डेट और कई सारे प्लान होते हैं या डिले नहीं करना चाहता कोई भी, तो रिटर्न टाइम से भरना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कंपनी ने नहीं दिया और उसके कई रीज़न कंपनी के पास हो सकते हैं। ऐसे में करना क्या है कि अगर आप श्योर है कितना TDS कटा है, आप इनकम टैक्स की साइट पर जाइए, फॉर्म 26AS और AIS चेक कर लीजिए। अगर TDS मैच हो रहा है तब भी आप क्लेम कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आएगी जब TDS जमा नहीं होगा या कोई डिफरेंस आ रहा है, उस केस में आपको कंपनी से बात करनी पड़ेगी। फिर भी मान लीजिए 31 जुलाई तक नहीं हो पाता, कंपनी नहीं कर पाती, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल कीजिए और जब चेंज होगा तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज आप रिवाइज का मौका भी खो देंगे।
0: ओके, और पूनम नोएडा से हम तक मैसेज भेज रही हैं कि इनका कहना है कि पहली बार ITR भर रही हूं और घबराहट भी हो रही है, तो आखिरी तारीख से पहले किन बातों को एक बार मैं फिर से जांच लूं?
1: पूनम जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप एक टैक्स पेयर बनने वाली हैं और टैक्स पेयर बनने की शुभकामनाएं तो आपकी बनती है, और साथ ही साथ शुभकामनाएं इसलिए भी क्योंकि आप देश के हित में देश निर्माण में सहयोग करना चाहती हैं। पहली बार आप भर रही हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल फॉर्म्स हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, ई फॉर्म्स हैं। आप incometaxindia.gov.in पे जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे या किसी और सर्च इंजन पे सर्च करेंगे इनकम टैक्स फाइलिंग, आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए, किसी सॉफ्टवेयर या उस पे नहीं जाइए। सिंपल फॉर्म्स हैं, आप अपना स्टेटस उसमें चेक करिए, AIS चेक करिए, TIS चेक करिए, जो ज़रूरी दस्तावेज है वो अपने पास रखिए और सही जानकारी आप उसमें भरिए। ईजी है, आप ईजिली भर पाएंगे।
0: ओके, और अतुल का धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हम तक मैसेज आया है, ये कहते हैं आई हैव फाइल्ड इन ITR 1 सैलरीड ऑन 18th पे और 30-45 दिन हो गए का साइकिल कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टिल इट्स शोइंग ITR प्रोसेसिंग ऑन पोर्टल, तो हाउ मेनी डेज विल इट फर्दर टेक टू प्रोसेस?
1: नया जो पोर्टल है वो जल्दी, अतुल जी जल्दी हो जाना चाहिए, प्रोसेस जल्दी हो जाना चाहिए। कुछ केसेस में हमने देखा है विद इन 24 आवर्स रिफंड भी आ गए प्रोसेसिंग के बाद।
0: अच्छा।
1: लेकिन ये एक साइकिल है, आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना दायित्व निभा दिया, अब आप वेट कीजिए, बहुत जल्द उम्मीद है कि रिटर्न प्रोसेस हो जाएंगी। ऑलरेडी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये सॉफ्टवेयर वाइज है और आपके वार्ड वाइज है, किसी वार्ड में ज़्यादा लोड होगा तो वहाँ पर डिले हो रहा होगा, जनरली 30-40 दिन 50 दिन में ये प्रोसेस हो जाती है।
0: जी जी, और मनीष एक सवाल मेरा है कि ITR फाइल में एक कोई नया एक्ट आया है, ये क्या है?
1: बहुत अच्छा किया आकृति जी आपने सवाल पूछ लिया, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है और इस एक्ट की खासियत भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम जानते हैं जो चला आ रहा था, अब ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक नया एक्ट आ गया है, इसमें सिंप्लीफिकेशन है, इसमें सेक्शंस को कम कर दिया गया है, जो 819 के करीब सेक्शंस हुआ करते थे उसे घटाकर 536 सेक्शंस कर दिए गए हैं, सिंप्लीफाई कर दिया है। सबसे बड़ा एक एग्जांपल देता हूँ, अभी तक हम ये कन्फ्यूजन रहते थे, अगर मैंने कहा कि 26-27 की ITR फाइल कर दो तो कन्फ्यूजन ये थी कि असेसमेंट ईयर की बात हो रही है या फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, तो ये मेजर चेंज है, इसको हटा के सिंपल टैक्स ईयर एक नया टर्म दे दिया गया है, नए फॉर्म्स लाए गए हैं, जो 26 फॉर्म की हम बात कर रहे हैं या फॉर्म 16 की हम बात कर रहे हैं उनके नाम चेंज हुए हैं और उनको सिंप्लीफाई कर दिया है। जैसे 26AS अब फॉर्म नंबर 168 हो चुका है, फॉर्म नंबर 16 जो हमें मिला करता था उसे फॉर्म नंबर 130 कहते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्म में एक बता रहा हूँ, अभी तक आप फॉर्म 15G और 15H बैंक में दिया करते थे जिनकी FD पे TDS कट रहा है,

0: या इंटरेस्ट पे टीडीएस कट रहा है, वो बैंक को फॉर्म 15G और 15H दिया करते थे, लेकिन इस वर्ष से आपको 15GH नहीं देना, फॉर्म नंबर 121 देना है, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट 25 के अकॉर्डिंग है और ये एक्ट लागू है 1 अप्रैल 2026 से होने वाली सभी ट्रांजेक्शन पे।
1: ओके, सो इनकम टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल आज जरूर उनके जवाब जान सकते हैं। मनीष मल्होत्रा साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रेनबो हेल्पलाइन के स्टूडियो में आज हमारे साथ पूरे 2 बजे तक हैं। आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी।

0: कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि आज की कमाई कल की सुरक्षा है। जी हाँ, कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी उस कमाई का रिकॉर्ड रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और इसी काम को आसान करता है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है ITR से रिलेटेड। कोई भी आपके सवाल जो हैं हम तक पहुंच सकते हैं, पहुंच भी रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और हमारे आज के खास एक्सपर्ट मनीष मल्होत्रा साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। फिलहाल रोहित का ये मैसेज हम तक आया है गाजियाबाद से, और ये कहते हैं कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। इनफैक्ट इन्होंने पिछले साल जो है नई नौकरी ज्वाइन की है, बीच में ही कंपनी बदली है। तो मनीष ये कहते हैं कि ITR भरते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा?
4: देखिए, ये प्रॉब्लम देखी है मैंने अक्सर। मान लीजिए 12 लाख की टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट है और एक एम्प्लॉयर के पास वो जॉब कर रहा है और ड्यूरिंग द ईयर वो जॉब छोड़ देता है। एम्प्लॉयर ने TDS डिडक्ट नहीं किया। नई जगह पे आप जाते हैं, आप रिपोर्ट करना भूल जाते हैं पिछली सैलरी, या आप रिपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयर का जो विभाग है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, वो उसे कंसिडर करना भूल जाता है। तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन उस अकॉर्डिंग नहीं बनती जो बननी चाहिए। शायद रोहित जी का यही प्रश्न है। मिड में इन्होंने जॉब चेंज की है। अगर दूसरी कंपनी ने फॉर्म 16 में आपकी पिछली इनकम कंसीडर कर ली है, टेक उसमें ले लिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। अगर नहीं लिया तो दोनों फॉर्म 16 को आप कंबाइन करके भी भर सकते हैं। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि फॉर्म 16 फाइनल नहीं है। फाइनल वो है जो आप रिटर्न में डाल रहे हैं। अगर कोई इनकम वहाँ छूट गई है तो आपके पास मौका है वो सारी इनकम लेने का, वो सारी डिटेल्स डालने का जो पहले मिस हो चुकी हैं। इसी को रिटर्न कहते हैं। ये आप खुद साइन करते हैं, जो फॉर्म 16 है वो आपके एम्प्लॉयर ने साइन किया है।
3: जी जी। नेहा का दिल्ली से मैसेज आया है और ये कहती हैं कि ये ट्यूशन लेती हैं और इनकी जो सैलरी होती है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो क्या फिर भी इनको ITR भरने का कोई फ़ायदा है?
4: देखिए, ट्यूशन आप चाहे होम ट्यूशन लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, या किसी भी मोड से लेते हैं, ये एक बिजनेस और प्रोफेशन में कंसीडर किया जाता है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 44ADA। अगर क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आपको अपनी कुल रिसीट का 50% जो है आपको कंसीडर करना ही होगा अगर आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में जाना चाहते हैं। तो अब टैक्स फाइलिंग की लिमिट जो आपने डिसाइड करनी है, अगर आपकी इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 2,50,000 से ज़्यादा हो रही है तो आपको फाइल करना है और आपको ITR का जो फॉर्म लेना है ITR 4 लेना है। अगर आपकी इनकम उससे कम है, टैक्सेबल इनकम, तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बिजनेस के केस में, प्रिजम्प्टिव के केस में, ये सिंपल फॉर्म है ITR 4, आप उसको भरें और प्रेफर करें, आप उसमें सारी जानकारी दे दें, 44ADA में आप उसको फाइल कर सकते हैं।
3: जी जी। और एक और सवाल है राकेश यादव साहब का दिल्ली से, और ये कहते हैं कि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ और मेरी आमदनी हर महीने अलग अलग रहती है, तो क्या मेरे लिए भी ITR भरना ज़रूरी है?
4: जी राकेश जी, ITR उन सभी लोगों को भरनी है जिनकी रिसीट जो है, जो टैक्सेबल इनकम जो है, वो 2,50,000 से ज़्यादा है। अब वो किसी भी सोर्स से हो, किसी भी मोड में हो, किसी भी टेन्योर में हो, आप एक महीने में भी अर्न कर सकते हैं, एक साल में भी अर्न कर सकते हैं। इसीलिए हमने टैक्स ईयर जो नया कॉन्सेप्ट है, और पहले जो प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आता था जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 को ख़त्म हुआ है, उस पूरे साल की आपको इनकम लेनी है, चाहे वो एक महीने में आई। कई बार होता है ना, सीजनल बिजनेस होते हैं, 2 महीने काम नहीं है, बाकी महीने काम है, तो आपको साल भर की इनकम को लेना है। अगर वो टैक्स लिमिट्स के दायरे से ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब साथ में एक चीज़ क्लियर कर दूँ, शायद हो सकता है किसी को कंफ्यूजन आ रही हो कि 12 लाख तक तो टैक्स नहीं था, मैं 2.5 लाख की बात क्यों कर रहा हूँ। 2.5 लाख रिटर्न फाइलिंग की लिमिट है, लेकिन आपको टैक्स में जो रिबेट मिल रही है 87A के अंदर, वो 12 लाख तक पे मिल रही है। 12 लाख तक की अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए फाइल जरूर कीजिए, जो आपका दायित्व है, और राकेश जी ने जो प्रश्न किया, क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग में है, तो इनके लिए जो डेट है वो है 31 अगस्त, ना कि 31 जुलाई इस साल से।
3: ओके, एक और मैसेज हम तक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, और इनका कहना है कि लॉयर्स इन दिल्ली डोंट गिव द इनवॉइस फॉर देयर फी, हाउ दे गेट ट्रैक्ड, हाउ मच डिड दे अर्न ड्यूरिंग द होल ईयर एंड हाउ मच दे आर सपोज टू पे टैक्स। तो कुछ कहेंगे?

0: पेमेंट से रिलेटेड सिंगल पर्सन से आप लेते हैं तो वो टैक्स के रडार में आ जाता है और वो टैक्स चोरी माना जाता है। तो सर्विस देने वाले को भी बचना चाहिए और जो सर्विस ले रहे हैं उनको भी बचना चाहिए इन चीज़ों से। तो आप अगर बैंक से पेमेंट करेंगे तो फिर आपकी हेडेक नहीं है, इनवाइस नहीं दे रहे, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा उस सर्विस प्रोवाइडर को आप बदलिए।
1: बिल्कुल सही सलाह दी है, जो भी करना है कानून के दायरे में करना है। ये सवाल आया है तनुज वाशने साहब का, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। इससे मिलता जुलता जवाब इसे आप थोड़ी देर पहले दे चुके हैं। तो एक तो इनका सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई टैक्स पेयर जिसका किसी भी साल में टैक्स नहीं बनता या जमा नहीं होता तो क्या उनको ITR फाइल करना चाहिए या नहीं?
0: देखिए ITR टैक्स मैंडेटरी, मैंने जैसे बताया 2.5 लाख की लिमिट से ज़्यादा पे आपको सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल करना होता है, लेकिन उसके बाद भी कई कारण होते हैं जो लोग टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं। टैक्स बनने से नहीं, वो इसलिए फाइल करना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं कि जितना भी वो अर्न किया फाइल कर लें। कुछ केसेस में रिफंड बनता है तब भी वो फाइल करना चाहते हैं। कई बार हम कार लोन या बिजनेस लोन अप्लाई करते हैं, मुद्रा कार्ड अप्लाई करते हैं, तो बैंक जनरली हमसे ITR की कॉपी मांगता है, तो उस वजह से भी आप ITR फाइल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पास एक डेटाबेस होगा, आप अपनी इनकम को शो कर पाएंगे। टैक्स नहीं लगना वो टैक्स स्लैब्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। साथ ही आप शायद
1: एक और सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, इन्होंने कहा है कि एक बार ITR फाइल कर दी तो क्या हर बार रिटर्न भरना अनिवार्य है?
0: हर असेसमेंट ईयर अलग है, जो आगे से टैक्स ईयर के नाम से जाना जाएगा। जिस साल आपकी इनकम है आप उसी साल फाइल करें अगर आप चाहते हैं। देखिए, एक इसमें दिक्कत क्या होती है, लोग डरते क्यों हैं, जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल वाजिब है। डरते इसलिए हैं क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, वो ऐसा तो नहीं कि एकदम उनकी रिटर्न इनकम खत्म हो जाएगी या सेल डाउन हो जाएगी जब तक बिजनेस शट डाउन ना किया हो। तो इस वजह से स्क्रूटनी में आने के चांसेस हो जाते हैं अगर वेरिएशन जो है पिछली बार के टर्नओवर से 20% से ज़्यादा आ जाता है तो। लेकिन उसमें आप अगर जेन्युइन है और आपका वास्तव में इनकम नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये डरना सिर्फ टैक्स एवेडर को है।
1: ओके, और पैंथर तोमर साहब ने किशनगंज दिल्ली से सवाल पूछा है। यूं तो आप बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर ये जानना चाहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है और इसमें से सबसे बेहतर का चुनाव कैसे किया जाए।
0: देखिए, आप दोनों कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन इस वर्ष से 90% से ज़्यादा रिटर्न्स जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ वो न्यू टैक्स रिजीम में ही भरी जा रही हैं। उसका फ़ायदा भी हो रहा है क्योंकि जो पहले 7 लाख की डिडक्शन होती थी, 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब वो 12 लाख की छूट आ गई है। और आप ATC और बाकी डिडक्शंस को मिला भी लेंगे तब भी वो 4 लाख का जो 7 और 5 लाख का जो गैप है वो कवर नहीं कर पाती। तो न्यू रिजीम में पिछले बजट में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, ओल्ड रिजीम में, माफ़ कीजिए, न्यू रिजिम में आपको बेनिफिट मिलेगा, 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप कंपेयर भी करेंगे, आपको एक ही कंडीशन में फ़ायदा हो सकता है ओल्ड रिजिम में, अगर आपके पास हाउसिंग लोन है, आपके पास ATC की 1.5 लाख की लिमिट पूरी हो रही है, तब भी आप कैलकुलेट करके देखिए आप, या फिर आपके पास सेट ऑफ लॉसेज जो है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, उस केस में ही आपको वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है ओल्ड रिजिम में, अदरवाइज आपको न्यू स्कीम में ही जाना चाहिए। आप दोनों को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही ये बता दूं कि ओल्ड रिजीम जो है अब वो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिजीम नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर हैं या आप टैक्स लास्ट टाइम आपने कुछ और ऑप्ट नहीं किया था तो डिफ़ॉल्ट जो रिजीम है वो न्यू है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं और आप बिजनेस करते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 10। तो आप उस फॉर्म को भर के, 10IEA है फॉर्म, उसको आप भरेंगे तो आप रिजीम चेंज कर सकते हैं।
1: जी, थैंक यू वेरी मच। और इनकम टैक्स रिटर्न्स रिलेटेड, चाहे छोटे सवाल हैं या बड़े सवाल, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आज रेनबो हेल्पलाइन में इसी विषय पर बात हो रही है और हमारे एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं और आपके सवाल लगातार हम तक पहुंच रहे हैं 9868107070 पर।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आकृति खंडूरी और कह रहे आपसे यही हूं मैं कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की महीना आ चुका है 31 जुलाई है सैलरी लोगों के लिए और बिजनेस लोगों के लिए अगस्त का आखिरी दिन है और हमेशा टाल जाते हैं ना आप सोचते हैं क्या इस बार मैं टाइम से ज़रूर फाइल करूंगा लेकिन फिर देरी हो ही जाती है लेकिन देर ना कीजिए क्योंकि यही हमारी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग एंड स्मार्ट प्लानिंग दोनों का आईना है बिल्कुल मिरर इमेज है रेनबो हेल्पलाइन में इसीलिए हम बात कर रहे हैं महीने के पहले हफ्ते में ही इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने एक्सपर्ट मनीष मल्होत्रा साहब को जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर आपके सवाल हम तक आ रहे हैं। ये सवाल आया है अभिषेक जैन साहब का नोएडा से और इनका कहना है कि मैंने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो अब ये जानना चाहते हैं मनीष कि क्या इसकी जानकारी भी मुझे आईटीआर में देनी होगी।
1: जी, आईटीआर में इनकम के 5 सोर्स हैं और ये सोर्स भी उनमें से एक है। आप कहीं से भी आय अर्न करें आप बच नहीं सकते, आपको रिपोर्ट करना है। आपने म्यूचुअल फंड की बात की क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई समय से म्यूचुअल फंड सही है तो उसकी जानकारी देना भी सही है। और बता देता हूँ म्यूचुअल फंड या जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, मैं सबके लिए बता देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप सेल परचेज करते हैं और आपको गेन होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब आपने एक साल से ज्यादा रखा है तो 1,25,000 तक का गेन आपके लिए एग्जम्प्ट होता है, वो आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए। ये तो रही म्यूचुअल फंड वालों की बात। अब आते हैं शेयर मार्केट में जो इक्विटी में कुछ

0: तो शॉर्ट टर्म पे फ्लैट रेट पे टैक्स लगता है। और बात करूं फ्यूचर एंड ऑप्शन या जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, मतलब इंट्राडे सुबह शेयर लिया और मार्केट क्लोज होने से पहले पहले बेच दिया, इंट्राडे पूरी तरह से स्पेकुलेशन एक्टिविटी है, उसमें इनकम पे सीधा सीधा आपको स्पेकुलेशन के हिसाब से टैक्स लगता है, उसे बिजनेस नहीं माना जाता, उसे नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो ध्यान रखिए वो स्पेकुलेशन एक्टिविटी नहीं है, वो आपका एक नॉर्मल बिजनेस की तरह है, उसमें भी आपको बुक्स बनानी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको ITR फाइल करनी होगी जो ITR 3 है। आपसे बुक्स मांगी जा सकती है, आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप करते हैं, आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं या म्यूचुअल फंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी सही जानकारी ITR में ज़रूर दें, अदरवाइज आपको टैक्स के नोटिस आ सकते हैं।
1: ओके और विकास चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि मैंने होम लोन लिया हुआ है तो क्या ITR भरते हुए मुझे कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा?
0: अगर आप ओल्ड

0: जा सकती है। आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें, फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप करते हैं, आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं या म्यूचुअल फंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी सही जानकारी ITR में ज़रूर दें, अदरवाइज आपको टैक्स के नोटिस आ सकते हैं।
1: ओके और विकास चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि मैंने होम लोन लिया हुआ है, तो क्या ITR भरते हुए मुझे कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा?
0: अगर आप ओल्ड

0: तो वहां बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर मैं समराइज करूं तो, और ओल्ड स्कीम में आपको बेनिफिट मिलेगा, पहले की तरह ही वो मिलता रहेगा।
1: और एक है जी के गुप्ता साहब का मैसेज, ये कहते हैं मैं सीनियर सिटीजन हूं, मुझे पेंशन मिलती है, क्या मेरे लिए आईटीआर के नियम अलग हैं?
0: नहीं, नए एक्ट में और नए स्लैब में, निधि जी में नए एक्ट तो कहना गलत होगा,
1: हाँ।
0: नए एक्ट में भी कोई ज्यादा परिवर्तन किया नहीं गया। सीनियर सिटीजन, पहले एक टर्म होती थी सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, अलग अलग स्लैब हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है, कोई अलग बेनिफिट या कोई अलग फायदा नहीं है, सभी के लिए, देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो कवर हो जाती है, टैक्स पेयर्स का जो नंबर है वो कवर हो जाता है वो 12 लाख की लिमिट में, तो सभी के लिए 12 लाख की जो छूट है वो मान्य है, मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई छूट है नहीं।
1: ओके, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल, आप सब तरह के सवाल इनफैक्ट हमें पूछ सकते हैं। मनीष मल्होत्रा साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके हर सवाल का बहुत ही खूबी से जवाब दे रहे हैं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ जवाब दे रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और रेनबो हेल्पलाइन पर आज बात हो रही है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड हर सवालों की, हर मामलों की।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के नाम सुनते ही क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये तो मुश्किल है? अगर हाँ तो आपकी यही परेशानी आज दूर हो रही है क्योंकि आज हमारे एक्सपर्ट मनीष मल्होत्रा साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बहुत ही आसान शब्दों में आसान तरीके से हमें बता रहे हैं ITR फाइलिंग के बारे में और आपके सवाल हम तक पहुँच रहे हैं लगातार हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और फिलहाल ये सवाल हम तक आया है सुनीता जी का और इनका कहना है कि मेरी

0: बता रहे हैं आईटीआर फाइलिंग के बारे में और आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं लगातार हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और फिलहाल ये सवाल हम तक आया है सुनीता जी का, और इनका कहना है कि मेरे बच्चे विदेश से मुझे पैसा भेजते हैं, तो क्या इसे भी मुझे आईटीआर में दिखाना होगा? मनीष,
1: देखिए, अगर विदेश से पैसा बच्चे आपके भेज रहे हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने अपनी आईटीआर में वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है। दूसरी चीज़, आपको जो वो पैसा मिल रहा है एज अ मेडिकल एक्सपेंसेस मिल रहा है, लिविंग एक्सपेंसेस मिल रहा है, मेडिकल बिल्स के लिए मिल रहा है या ट्रैवल के लिए मिल रहा है, अगर वो है तो वो आपकी इनकम नहीं है। सब्जेक्ट टू देयर आर सर्टन लिमिट्स कि आप 4 लाख तक रिसीव कर सकते हैं साल में, अगर आपको एज एन इनकम मिल रहा है तो वो इनकम भी आपकी एग्जम्प्ट है, लेकिन वो इनकम रिपोर्ट होगी सेक्शन 56 में। ये गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव माना जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना है कि जो पैसा आ रहा है आपने उसको फर्दर एफडी में लगा दिया, बच्चों से पैसा आया आपने एफडी में लगा दिया, आपने रियल एस्टेट खरीद ली या किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कुछ भी किया, आप इनकम के ऊपर इनकम अर्न करेंगे वो एग्जम्प्ट नहीं है, वो आप ही की टैक्सेबल होगी। जो मूल जो इनकम, जो प्रिंसिपल इनकम जो आपने बच्चों से ली थी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी।
0: ओके। एक सवाल जो है बहुत बार सुनने में आता है मनीष, कि किसी की डेथ होने के केस में जो आईटीआर से संबंधित फंड्स हैं वो उनकी फैमिली वगैरह कैसे प्राप्त करें, इस केस में कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं।
1: नहीं, कई बार आपने सही कहा, कई बार सिर्फ रिफंड का इशू नहीं रहता, कई बार बिजनेस जहां कर रहे होते हैं बिजनेस ट्रांसफर करना होता है, बिजनेस की एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी होती है, तो गलती कर जाते हैं लोग, फाइल नहीं करते रिटर्न, या फाइल करते हैं तो जो डिसीज्ड है उन्हीं के अकाउंट से कर देते हैं जो गलत है, लीगली ठीक नहीं है, किसी और के अकाउंट का एक्सेस नहीं हो सकता। लॉ में इसके लिए प्रावधान है किसने फाइल करनी है और किसकी जिम्मेदारी बनती है। पहला तो एग्जीक्यूटर, जिसका विल में नाम है, अगर विल बनी हुई है तो, विल नहीं बनी हुई तो कोई भी एडल्ट चिल्ड्रन फाइल कर सकता है। अगर चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, डिस्प्यूट है, तो कोई भी लीगल हेयर का सर्टिफिकेट होल्ड कर रहा है या सर्वाइवल सर्टिफिकेट जो है उनमें से कोई एक मेंबर कर सकता है। करनी कैसे है फाइल, अब ये सबसे ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हम उनका लॉगिन तो कर ही नहीं सकते, तो फाइल कैसे करनी है। जो भी सर्वाइवल है, एग्जीक्यूटर है, जो क्लेम कर रहा है लीगल हेयर डिसीज्ड का, उसे उसके अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, वहाँ पे सर्विसेज टैब होता है, वहाँ पे क्लेम करना है कि मैं एक ऑथराइज पर्सन हूँ, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ। वहाँ पे आपको सारे सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ अपलोड करने हैं, आपको ग्रांट कर दी जाएगी परमिशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटर्न फाइलिंग की। यही लीगल तरीका है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है।
0: जी, एक सवाल हम तक आया है स्वाति का दिल्ली से। वो कहती हैं कि अगर किसी की दो जगह से इनकम आती हो, जैसे नौकरी हो और कहीं मकान किराए पे भी दिया हुआ हो, तो इसके लिए आईटीआर कैसे भरा जाता है?
1: आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डिफाइन है इनकम टैक्स के अंदर, जैसे हो गया सैलरी, आपका बिजनेस, आपका हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर सोर्स। जो किसी सोर्स में नहीं आता वो अदर सोर्स में आता है। सैलरी आपने बता दिया, बिजनेस अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है अगर आप मकान किराए पे देते हैं। उसके अलावा कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड से हो, किसी सेल परचेज से हो, ज्वेलरी सेल से हो, वो सारे आते हैं। तो इसका मतलब आपके कितने भी सोर्स होंगे सबको कंबाइन करके आपको आईटीआर में फाइल करना है। हाँ, यहाँ पे ये जरूर है, अगर सैलरी से आप दूसरी जगह जा रहे हैं, बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म जो है आईटीआर 1 नहीं आएगा, वो आईटीआर 3 हो जाएगा या आईटीआर 4 हो जाएगा अगर आप प्रिजम्प्टिव में है तो।
0: जी। और हर्षित मेरठ से कहते हैं कि अगर आईटीआर समय पर ना भर पाए तो फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या इसे लोन मिलने में भी कोई असर पड़ेगा?
1: देखिए, आईटीआर सिर्फ आप लोन लेने के लिए ना भरें, अगर नहीं भर पाए तो आपके पास लेट रिटर्न फाइल करने का भी टाइम है, जो लेट रिटर्न हम कहते हैं सेक्शन 139(4) के अंदर, वो भी मिस हो जाती है तो हमारे पास 4 साल तक का टाइम मिलता है आईटीआर यू फाइल करने का, आईटीआर अपडेटेड रिटर्न कहते हैं, वो तभी फाइल की जा सकती है, पेनल्टी के साथ फाइल हो सकती है, 5,000 तक की मैक्सिमम पेनल्टी है, जब आपका कुछ ड्यू बनता हो गवर्नमेंट के तरफ, आपका रिफंड बनता है तब आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप तब भी फाइल नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट के पास पावर है आपको नोटिस भेजने की, आपकी रिटर्न 142 सेक्शन के अंदर फाइल करवाने की। अच्छा। अगर वो फाइल कराते हैं तो ऑब्वियस है आपको कंसीलमेंट ऑफ इनकम भी माना जा सकता है, फैक्ट्स हिडन के लिए भी माना जा सकता है, तो बेटर है अगर आपको लगता है इनकम कोई छूट गई है, कोई आईटीआर फाइल होने से रह गई है, तो आप उसे फाइल कर लीजिए।
0: जी। श्रेया का दिल्ली से मैसेज आया है, ये कहती हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैंने हाल ही में एक नौकरी शुरू

0: की है, जॉब शुरू की है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ मनीष जी कि ये ITR हम खुद ऑनलाइन भर सकते हैं या किसी टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेना जरूरी होता है?
1: देखिए, ऑनलाइन भरना इजी है, सिंपल है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ इनकम ऐसी है जो आप नहीं समझ पा रहे क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं, तो अब बिल्कुल आप टैक्स कंसल्टेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। इनकम टैक्स की साइड में भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का डिटेल दिया हुआ है, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि आप एक युवा हैं, आप IT को ज़्यादा समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप खुद से भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी।
0: रीना कहती हैं कि ITR भरने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट संभाल के रखना चाहिए, कुछ रिसीट वगैरह होती है क्या?
1: ITR भरने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ITR-V मेल के माध्यम से भेजता है, आप लॉगिन करके भी निकाल सकते हैं। ITR-V जो है एक्नॉलेजमेंट होती है, उसके साथ एक ITR फॉर्म होता है जिसमें आपकी सारी जानकारी है, आप उसे संभाल लीजिए। 8 साल तक तो हमें अपने रिकॉर्ड संभाल के रखना ही चाहिए, जो लॉ भी कह रहा है, इनकम टैक्स एक्ट भी कहता है कि 8 साल 8 असेसमेंट ईयर तक आप संभाल के रखिए, तो बेटर है आप उसको संभाल के रख लीजिए।
0: ओके, और एक और सवाल आया, शायद इससे मिलता जुलता पहले भी आया था, कि मैंने ITR भर दिया है, उसका स्टेटस कैसे चेक करूं, दिखाई नहीं दे रहा मुझे कि ये जमा हुआ भी है या नहीं।
1: ITR आप लॉगिन करिए और उसमें जाइए इनकम टैक्स फॉर्म्स, वहाँ पे देखिए फाइल्ड रिटर्न्स का आपको कॉलम मिलेगा, असेसमेंट ईयर वाइज सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर वहाँ पे शो नहीं हो रही तो इसका मतलब रिटर्न फाइल नहीं हुई है। अगर उसके बाद भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट है और शो नहीं हो रही तो ये टेक्निकल एरर हो सकता है, ग्रीवांस को लिखे, वो सॉर्ट आउट इसको करेंगे।
0: ऑल राइट, सो आज बात हो रही है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं मनीष मल्होत्रा साहब, हमारे एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और अभी भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज बची रह गई हैं, यूँ तो हम डिटेल में बात कर रहे हैं आपके सवालों के माध्यम से, शायद बहुत से लोगों की जो डिलेमास हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो भी क्लियर हो रहे होंगे। तो फिलहाल कितने 10 मिनट अभी और हैं बाकी प्रोग्राम में, 9868107070 पर हमें अपना सवाल भेजिए और मनीष आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। One more time.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड सभी तरह के मामलों के बारे में। मनीष मल्होत्रा साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट,

0: हमारे साथ हैं और सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। 9868107070 आखिरी कट की तरफ बढ़ते, फिर भी कह रही हूँ अभी भी कुछ सवाल बचे हैं तो भेज दीजिए हमें। फिलहाल ये आया है डॉक्टर अमित गुप्ता का कानपुर से सवाल, और ये कहते हैं मैं अपना क्लिनिक चलाता हूँ और मेरे जो पेशेंट्स हैं वो मुझे अमूमन जो है या तो ऑनलाइन भुगतान करते हैं मनीष, या फिर मुझे वो कैश देते हैं, तो ITR भरते समय अब मैं इन सभी इनकम का हिसाब जो है कैसे दिखाऊं?
1: देखिए डॉक्टर साहब को प्रणाम। और एक और जानकारी, सिर्फ ITR भरना इनके लिए मैंडेटरी नहीं है, नए एक्ट में एक और प्रावधान आ गया है, इनको केस रजिस्टर भी मेंटेन करना है और 8 साल तक करना होगा। केस रजिस्टर में किससे कितना पैसा लिया, किस मोड से लिया, पेशेंट का नाम, ये डॉक्टर के पास होना चाहिए, जनरली वो रखते हैं, लेकिन अब इनकम टैक्स में इसको अनिवार्य कर दिया है। बाकी इन्होंने कहा कि कैश में भी रिसीट करते हैं और नॉन कैश में भी करते हैं, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी कि आप नॉन ये अदर देन डिजिटल मोड पे बिजनेस नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बुक्स और सेल्स रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। साथ ही अगर आप डॉक्टर हैं और नॉन ऑडिट केस में हैं, नॉन ऑडिट केस मतलब आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आप जो इन्हेंस होकर 75 लाख भी हो गई थी, तो आप टैक्स ऑडिट में नहीं आते। आप 50% तक अगर आप एग्जम्पशन लेते हैं, मतलब आप मान लीजिए 50 लाख आपने अर्न किया है, 50 लाख ग्रोस रिसीट है, और 50% 25 लाख तक अगर आप इनकम दिखाते हैं तो आप ऑडिट केस में नहीं आते, आपको बिजनेस प्रिजम्पटिव में आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग टैक्स भर सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल। और चलते चलते क्या कहना चाहेंगे मनीष, क्योंकि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और जाने का समय हो रहा है।
1: चलते चलते यही कहना चाहूंगा, ITR 1 और 2 वालों, सबसे पहले आपकी डेट है 31 जुलाई, उसके लिए लास्ट डेट की वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न फाइल कर दें। लेकिन अगर आप उसके बाद बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए 31 अगस्त डेट है, चेक कर लीजिए कि आपके सारे रिकॉर्ड मेंटेन है, सारी तैयारी आप कर लीजिए। अगर पैन नंबर नहीं है तो पैन नंबर को अभी अप्लाई कर दीजिए, एक दिन में पैन कार्ड आ जाता है, वो जरूरी दस्तावेज है आपको ITR फाइल करने के लिए, एक जरूरी डॉक्यूमेंट है।
0: जी जी, थैंक यू वेरी मच मनीष फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ मैं आकृति भी आपसे लेती हूँ विदा, और कहना बार बार फिर यही चाहूंगी कि ITR भरना एक कानूनी प्रक्रिया ही नहीं है, आपके जिम्मेदार नागरिक होने का एक पहचान भी है, एक निशानी भी है, तो ITR जरूर भरिए, समय से पहले भरिए। इसी के साथ मैं आकृति लेती हूँ विदा, नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आशियाना। दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ कई जगह की यात्राओं पर गए होंगे, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अहम रथ यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। आस्था, परम्परा और समरसता का ऐसा महापर्व जिसका इंतजार देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी यात्रा के आध्यात्मिक, सामाजिक और पारिवारिक महत्व पर, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री नीलाचल सेवा संघ के सेक्रेटरी रविन्द्रनाथ प्रधान, जो जगन्नाथ टेंपल हौज खास से जुड़े हुए हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में।
2: जय जगन्नाथ। मैं रवि प्रधान, जगन्नाथ मंदिर हौज खास से। तो हमारा जो ये रथ यात्रा 16 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, जगन्नाथ जी रथ यात्रा है दिल्ली के जो हौज खास से 79 से, मंदिर जो बना था 1960 से आरंभ हुआ था। कुछ विशेष व्यक्ति जो दुर्योधन प्रधान, भंवरवर प्रधान और कलाहंडी महाराजा पीके देव, तो उन्होंने प्रेरणा ली थी और स्टार्ट किया था। उनके साथ कुछ विशेष लोग जुड़े हुए थे उड़ीसा से, तो उन्होंने प्रेरणा करी और जगह लिया और ये महाप्रभु वहाँ से पुरी से आए और यह नॉर्थ इंडिया का प्रथम जो मंदिर है जो मतलब स्टार्ट हो गया। और ये प्रभु 67 में आ गए थे और 67 से वहाँ पे कुटिया में रहे और उसके बाद मंदिर बनना चालू हो गया 70 में, जो ग्राउंड फ्लोर बन के तैयार हो गया, तो जो उसमें भगवान जी जगन्नाथ जी को विराजमान कर दिया। तो लेकिन परंपरा है, जब तक गुंबज नहीं बन जाती है तब तक ये प्रभु का जो रिचुअल नहीं हो पाता। तो गुंबज जो है 1978 में बन के तैयार हो गया, तो तैयार हो जाने के बाद 79 में जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा हुआ। तो वहाँ से पुरी से जो जगन्नाथ पुरी है वो बहुत शिखरत्र है, तो वहाँ से प्रेरणा ली। तो उसके बाद 79 में उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा करा जाता है। तो प्रतिष्ठा करा जाता है तो रथ यात्रा की प्रारंभ होती है, कोई रिचुअल सब करनी पड़ती है।
1: जी तो जी, रविंद्रनाथ जी, जैसे कि आपने बताया जगन्नाथ टेंपल हौज खास के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में, कहीं ना कहीं ये जो रथ यात्रा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें बताती है कि ईश्वर किसी एक स्थान या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भक्त के हैं। और कुछ ऐसा ही संदेश हर मंदिर, हर रथ यात्रा से हम सभी को मिलता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रथ यात्रा का जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व हम मानते हैं, किस तरीके से ये परिवार और समाज को जोड़ने वाला पर्व है?
2: ने जो जगन्नाथ जी है रथ यात्रा 79 में, थोड़ा सा पीछे जाके 79 में तो इसका रिचुअल होता है। तो जगन्नाथ मंदिर जहाँ जहाँ बनता है, तो पहले जगन्नाथ जी का जब प्रतिष्ठा होता है तो रथ यात्रा और महाप्रसाद का व्यवस्था करी जाती है। तो ये 79 में शुरू हो गया। तो उसके बाद ये जो प्रभु है जगन्नाथ जो है ये जगत का नाथ है, खाली हमारा नहीं है। मतलब उड़ीसा में हम भाग्यवान हैं, उड़ीसा में प्रभु हमारे धरती पे विराजमान हैं। तो इसलिए ये उन्होंने क्या है कि छल रचा, वो जगत मतलब सृष्टि का नाथ है। तो उन्होंने प्रभु ने करा छल रचा है कि मेरा तो सब ब्रह्मांड मेरा है, तो मैं दर्शन नहीं दे पा रहा हूँ। जो हमारे परंपरा के हिसाब से कई लोग नहीं जा पाते हैं मंदिर के अंदर, तो प्रभु ने छल रचा है कि भाई ये मैं छल रचा मौसी के यहाँ जाऊँ और ये सबको दर्शन रथ के ऊपर दो। तो ओनली जो प्रभु है उन्होंने छल रच के ये उसका एक रिचुअल है, वो जगन्नाथ जी तिथि के अनुसार जो स्नान पूर्णिमा होता है उस दिन बाहर आते हैं और नहाते हैं, तो उसका एक परंपरा है। तो बाहर कैसे जाएं, तो उन्होंने क्या किया है कि उसके बाद उन्होंने बाहर गए। बाहर जाने के बाद मौसी के, जो मौसी के यहाँ जाते हैं, तो रथ के बैठ के जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा तीनों रथ में बैठते हैं, और सुदर्शन जी भी साथ होते हैं। तो वो जाके सारे कुछ ब्रह्मांड में कोई भी वो नहीं है, तो हर आदमी वहाँ पे दर्शन कर सकता है और रस्सी को छू सकता है, जो अंदर नहीं जा पाता वो बड़े दंड में, ये बड़े जो पुरी में जो बड़े दंड है, तो इसलिए वही परंपरा को रखते हुए तो वहाँ पे जाते हैं मौसी के यहाँ। तो मौसी के यहाँ तो 9 दिन बाद उन्होंने क्या करते हैं कि वापस आते हैं, तो उलट, उसको उलट रथ बोलते हैं। तो वहाँ 9 दिन बाद आने के बाद फिर जगन्नाथ मंदिर के पास आते हैं, तो वहाँ पे और भी रिचुअल, 3-4 दिन का रिचुअल होता है, जो मंदिर के आने से पहले उनका सारा रिचुअल होता है।
1: जी, तो रविंद्र जी, इन परंपराओं के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये जो परंपरा है, ये कहीं ना कहीं एक मौका देती है सभी समुदाय को प्रभु के दर्शन का, जिससे कि सभी को समान अवसर मिले उनके दर्शन का। तो फिलहाल हम हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं गीत, और उसके बाद इस रथ यात्रा के महत्व पर, आध्यात्म पर चर्चा जारी रहेगी।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान है। जब भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है तो लाखों लोग जाति, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक साथ जुड़ते हैं। यही संदेश परिवारों के लिए भी है, साथ चलने का, साथ निभाने का और एक दूसरे के प्रति सेवा और सम्मान का। हमारे साथ रविंद्रनाथ प्रधान जी, जो कि सेक्रेटरी हैं श्री नीलाचल सेवा संघ के बने हुए हैं। रविंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 16 जुलाई को जो विशेष आयोजन होने वाला है, उसके लिए क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही हैं?
1: जय जगन्नाथ। हमारा जो 16 तारीख को रथ या परंपरा के हिसाब से 16 तारीख को ये जो तिथि हम नहीं डिसाइड करते, ये परंपरा के हिसाब से तिथि डिसाइड होती है। जगन्नाथ जी का जो परंपरा है
0: जी,
1: वो इसी हिसाब से इस बारी जुलाई 16 तारीख को पड़ रही है। तो उसमें हमने उसका पहले जो स्नान पूर्णिमा है वो गया 29 को, तो उसमें अणसर में जगन्नाथ जी रहते हैं, अणसर में रहते हैं। तो उसके बाद 14 जो जगन्नाथ जी का जो परंपरा है, 14 को अणसर से उठ के जगन्नाथ जी सबको दर्शन देते हैं। उनका बोलते हैं नव जवन दर्शन, नो नया रूप उनका होगा,
0: नव यौवन दर्शन।
1: हाँ, नव जवन दर्शन। तो उसके बाद हमारा दो दिन बाद 14, 15, 16 को सारा रिचुअल सुबह से लेके चालू हो जाता है, और उनकी जो उठाने से लेके सारे भोग नीति सारा तैयार करके, कोई सारी तैयारी करनी पड़ती है
0: जी।
1: तो उसके बाद जगन्नाथ जी को क्या करते हैं कि राजा खुद छेरापौंडी करके, जो रिचुअल करके, तो उनको पौंडी के साथ, पौंडी उसमें लाखों लोग होते हैं और पुरी में तो कई लाख, 20 लाख लोग होते हैं, तो वो तो उसके साथ कलना नहीं कर सकते। लेकिन जो हौस खास मंदिर में इसका परंपरा 79 से 48 साल हो गए, उसको 5,000 आदमी से शुरू हुआ था, आज 2 लाख आदमी का समागम है। तो हर आदमी धीरे धीरे धीरे धीरे उड़ीसा के लोग होते थे, फिर मतलब और भी लोग, अब पिछले
0: जी रविंद्र जी, कहीं ना कहीं उत्तर भारत के लोगों को एक मौका मिला है रथ यात्रा के दर्शन करने का, क्योंकि कई बार इतना मुमकिन नहीं होता कि यहाँ से इतनी दूर जाया जाए। तो यहाँ दिल्ली में उत्तर भारत के लोगों के लिए एक मौका है कि वो जगन्नाथ टेंपल में जाकर रथ यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। और मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर कितने लोगों के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं, कि कितने लोग, क्योंकि कई बार प्रभु के दर्शन के लिए लोग दौड़े चले आते हैं और श्रद्धालुओं का हुजूम लग जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर कितने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है?
1: अभी इसके लिए सारे हमारे जो वॉलंटियर है, हमारा ये 2-3 महीने से, 3 महीने से पहले तैयारी शुरू हो जाती है। वॉलंटियर करीब 700 वॉलंटियर काम करते हैं, तो इसमें पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक, पुलिस में ट्रैफिक और पुलिस सारा इन्वॉल्वमेंट होता है और सारा लोग सहयोग करते हैं, और उसमें NDMC, MCD सारा करके, सारा चीज सभी लोग सहयोग करते हैं। तो साफ सफाई का व्यवस्था होती है, और उनमें मिनिमम जैसे 2 लाख लोग कंटिन्यूस होते हैं, 40,000 कॉन्स्टेंट, 30,000 से 40,000 लोग होते हैं। उसके लिए हमारे पास पुलिस प्रशासन भी होता है और हमारे वॉलंटियर, स्पेशली हमारे वॉलंटियर को ट्रेनिंग दी जाती है, और सबके लिए फिर वो लोग सुचारू रूप से रथ को चलाएं, और रथ जो है फिर उसके बाद उनके ऊपर खाने पीने का जो बदा, पानी का व्यवस्था, टॉयलेट व्यवस्था, सारा साफ सफाई का व्यवस्था, सारी चीजें हम अरेंजमेंट करते हैं और करते आ रहे हैं। और बाकी प्रभु सब हमेशा सहयोग, प्रभु भी प्रभु के पास समर्पण कर देते हैं, तो उससे हमारे को आस्था के साथ बहुत सहयोग मिलता है।
0: जी और बिल्कुल, 48 वर्षों से इस रथ यात्रा का आयोजन यहाँ दिल्ली में हो रहा है हौज खास में, और उसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो 16 जुलाई को विशेष आयोजन होने वाला है, तो क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान वहाँ पर देखने को मिलेंगे?
1: नहीं बिल्कुल मिलेंगे, यहाँ से जो रथ यात्रा चलती है उसमें सारा मतलब रथ तो बीच में होता है
0: जी।
1: उसके बाद सारा जो मतलब हमारा जैसे अब तो नॉर्थ इंडिया जो आपने बोला है उत्तर भारत भी जुड़ने लग गया
0: जी।
1: तो जैसे नगाड़े के साथ और भी कई है, लेकिन उड़ीसा से परंपरा के उड़ीसा का जो छऊ नृत्य है मतलब कुछ विशेष जो शंख वाले होते हैं, शंख वाले हैं
0: जी।
1: जो घंटा बजाने वाले जो घंट बजाते हैं तो वो भी उड़ीसा से स्पेशली जो पुरी में बजाते हैं, तो उसका कुछ ग्रुप हमको हम भी कोशिश करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कैसे आप हैं वो भी करते हैं। सारा सांस्कृतिक कार्य रथ के आगे आगे चलती है तो उनके लिए रथ के आगे पानी का व्यवस्था, मेडिकल सुविधा, सारा मेडिकल सुविधा तो सारा चीज करी जाती है। और यहाँ से जो और भी कोई भी है खाने पीने का, सारा रास्ते भर करीब नियर अबाउट 1 किलोमीटर रास्ता तय करते हैं यहाँ से जो जगन्नाथ मंदिर से निकल के ये इसबसराय ऑल इंडिया मेडिकल साइंस तक जाते हैं। तो
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस दौरान गर्मी हो या फिर जैसा कि मौसम बार बार अपने रंग बदल रहा है, बारिश भी हो रही है, तो इन मौसम की इस बदलते हुए इसको देखते हुए भी कुछ विशेष इंतजाम किए जा रहे होंगे।
1: नहीं बिल्कुल करे जा रहे हैं, तो जैसे धूप धूप के लिए सारा पानी का व्यवस्था जगह जगह जगह जगह स्टॉल पानी का हर चीज का व्यवस्था करी गई है पूरा 1 किलोमीटर जो ये सब मतलब ये सब सराय होते हुए। और लोगों के भी आस्था है, वो लोग भी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारे नियम के बलि के अंदर सारा हम थोड़ा सा उनको बोलते हैं कि ये चीज़ हमारा वॉलंटियर जाके उनके साथ लगे रहते हैं तो सब व्यवस्था होती है। फिर जब वापस आते हैं, वापस आके यहाँ पे मौसी का घर है नहीं तो दिल्ली है, दिल्ली में तो है, फिर वहाँ से वापस जब आते हैं मंदिर पे ही आते हैं तो उस बीच अगर बारिश हो जाती है, लेकिन लोग इतना प्रभु के समर्पित हैं उनको वो एक मान ले वो प्रभु को कहते हैं कि भाई प्रभु ने बारिश कर दिया तो आशीर्वाद दे दिया, तो उसमें झूमते हुए बारिश में उनको कोई लोग छतरी लेके भी आते हैं, किसी ने जैकेट भी लेके आते हैं जैसे रेन कोट लेके आते हैं, लेकिन उससे वो फर्क नहीं पड़ता, वो छतरी उतरी कुछ नहीं है उसमें, लोग मतलब जय जगन्नाथ उच्चारण करके, बल्कि बारिश आ गया तो वो सोचते हैं कि जगन्नाथ जी ने हमारे ऊपर मतलब इंद्र देवता को भेज दिया है कि आशीर्वाद।

0: दिया
1: जी
0: जी, तो इसलिए हम ऐसे ही आके मंदिर पे रुक जाता है रथ, तो फिर उसके बाद सारे रथ के ऊपर दर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी ये है कि जो रस्सी को खींचना है, इसमें ये कोई मोटर बाइकल नहीं है, कुछ नहीं है इसमें कोई, ये पूरा लकड़ी का रथ है, तो इसमें पहिया होते हैं, 10 पहिया है, तो उसमें क्या है कि उसको सब ब्रेक, मतलब उसमें पीछे कुछ लोग होते हैं आगे भी होते हैं, तो जो वो है तो उसमें आगे वाला जब खींचते हैं तो रस्सी कैसे खींचते हैं, और ये प्रभु की लीला है, वो ब्रेक भी अपने आप लग जाता है प्रभु का जब बोलते हैं, तो ये आस्था से जुड़ा हुआ है
1: जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो रथ यात्रा है वो सामूहिकता का संदेश भी देती है, क्योंकि रथ को खींचने में हर वर्ग और हर उम्र के लोग शामिल होते हैं, और ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के दरबार में सभी लोग समान है। और परिवार जब मिलकर इस पर्व को मनाते हैं ना, तो नई पीढ़ी तक हमारी परंपराएं और संस्कार भी सहज रूप से पहुंचते हैं। जी रविंद्र जी, आपके साथ हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक
0: जी।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना। और आज आशियाना में बात हो रही है आस्था, परंपरा और परिवार को एक सूत्र में पिरोने वाले महापर्व रथ यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ

0: एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि समाज को साथ लेकर चलने का संदेश भी है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि कैसे ये यात्रा परिवारों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ती है और इसकी परंपराएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। श्री नीलाचल सेवा संघ के सेक्रेटरी रविन्द्रनाथ प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविन्द्र जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि वर्षों से आप जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जगन्नाथ टेम्पल हौज खास में, तो आप हमें ये समझाइए कि किस तरीके से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को और युवाओं को इस परंपरा से जोड़ सकते हैं और परिवारों को इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए।
1: ये जगन्नाथ, ये जो हौज खास मंदिर नीलाचल सेवा संघ का ये प्रयास है, कैसे नेक्स्ट यंग जनरेशन को, यंग जनरेशन देखो जी, उड़ीसा का तो बच्चा भी और बूढ़े भी, जब बच्चा पैदा होता है तो जय जगन्नाथ तो उसके कान में बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रयास किया है, जो कि कर रहे हैं, जो जगन्नाथ जी सबको ब्लेस है, जो फैमिली है, फैमिली भी जुड़े और उनको बच्चे को भी आस्था के साथ जुड़े, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो उसके लिए हमने यहाँ पे हिंदी में किताब जो हौज खास मंदिर किताब भी बनाया है तो उसमें

0: इतना मोटी किताब है, तो उसके लिए हमने अभी ये रथ यात्रा में हिंदी और इंग्लिश में
1: जी
0: इंग्लिश में हमने किताब लिखी है स्कंद पुराण के ऊपर। उसमें हमने वो किताब इसी डिमांड के ऊपर कि बच्चे कैसे जुड़े हैं,
1: बिल्कुल,
0: और लोग हैं, और जो इतना बड़ा किताब नहीं पढ़ते सारांग से कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने फैमिली को जोड़ने के लिए पूरी फैमिली को, तो स्कंद ये जो छोटी सी किताब है ये लॉन्च होने जा रही है, और ये हमारा रथ यात्रा के दिन हो जाएगा। जो भी चाहिए वो ले सकता है मंदिर से, हम बाकी उसमें अनाउंस भी करें कैसे मिले, और उसमें फिर हम प्रयास करेंगे उसमें जैसे बच्चे लोग आज नेट में उसमें जैसे वो है उसमें कैसे
1: डिजिटल इंडिया के माध्यम से किस तरीके से उस किताब को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए।
0: और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा जगन्नाथ जी सबकी आस्था बनाए। वो उसमें वो ब्रह्मांड को देखते, वो चखा आखी है, तो ब्रह्मांड को तो ऐसे ही सबको यंग जनरेशन को अगर आपने आपके धर्म में जन्म दिया है तो आपको हमारे को जोड़े रखना, आप उसी का मैं प्रभु के साथ मैं अभी जैसे मेरे फादर ने वहाँ पे किया था तो मैं जुड़ा हूँ, मेरे बच्चे जुड़े हैं, तो ऐसे ही हम भी चाहते हैं पूरा जो देश है और ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में अभी लंदन में भी रथ यात्रा हो रहा है, यूएसए भी हो रहा है, उसको जोड़ सके हैं, तो इसलिए हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अनुरोध क्या करेंगे प्रभु को देंगे कि ज्ञान दे तो ऐसा करे कि मिराकल करे कि सारे बच्चे जुड़े और आस्था के साथ जुड़े, जगन्नाथ जी से जुड़े, सारे प्रभु के साथ जुड़े, तो ये हमारी प्रेरणा है
1: जी। रविंद्र जी
0: जुड़े
1: जी।
0: रखना और सभी उसी दिन आए जैसे वहाँ पे हमने सारी व्यवस्था करी है, तो बच्चों को लेके आए रस्सी छुए, और रस्सी का मतलब महत्व है, रस्सी का छूने से पूरे वर्ल्ड से लोग आता है पुरी में, तो यहाँ पे मतलब पुरी में नहीं जा सकते तो दिल्ली हौस खास मंदिर में आके जुड़ सकता है और दर्शन कर सकता है।
1: बिल्कुल रविंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे जो देश के पर्व हैं उनकी झलक ना सिर्फ हमारे देश में देखने को नहीं मिल

0: जुड़ सकता है और दर्शन कर सकता है।
1: बिल्कुल रविंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे जो देश के पर्व हैं उनकी झलक ना सिर्फ हमारे देश में देखने को नहीं मिलती बल्कि दूसरे देश में भी वो उत्सव पूरे जोश उमंग के साथ मनाए जाते हैं। और भारत में त्यौहार सिर्फ उत्सव ही नहीं होता है बल्कि वो जीवन जीने की सीख भी देता है। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ऐसा ही एक महापर्व है जो भक्ति के साथ साथ समानता, सेवा और सामूहिकता का संदेश देता है। और इसी वजह से कहीं न कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी को इस परंपरा का निर्वहन करना है और साथ ही साथ इसमें जुड़ना है, जिसके लिए बहुत एक विशेष मौका मिलने वाला है 16 जुलाई को, जब जगन्नाथ टेंपल हौज खास में रथ यात्रा का, जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होने वाला है, जिसमें हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे सभी देशवासियों को जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और इस विशेष आयोजन के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए।
0: धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
1: तो आप सुन रहे थे श्री नीलाचल सेवा संघ के सेक्रेटरी रविंद्रनाथ प्रधान जी को, जिन्होंने स्टूडियो में आकर हमें इस विशेष आयोजन की, जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। और फिलहाल आकाशवाणी रेनबो पर समय हो गया है NCERT के स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम उमंग का।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
0: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और रामदुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
0: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप,

0: है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है?
0: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहले हम लोग करते हैं।

कि किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर

0: बताना चाहेंगे।
1: जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है, दूसरा विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं, एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
1: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे

0: डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी।

0: किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
1: मनोबल
0: बढ़ता है
1: जी,
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना। ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल
0: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है। जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक

0: विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है,
1: जी
0: उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
1: जी
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना
1: हाँ,
0: है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
1: जी उसी को
0: इसके अलावा
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे

0: नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और NCERT के वेबसाइट पर YouTube में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ

0: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस के रसानिया जी, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि विश्व जूनोसिस दिवस क्या है और इसे 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है
0: जी।
1: आज विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पीछे इतिहास ये है कि लुई पाश्चर, जिन्होंने 1885 में रेबीज वैक्सीन की सफलता की याद में ये दिवस शुरू किया गया था, उन्होंने पहली बार रेबीज वैक्सीन एक बच्चे को लगाई थी जिसको रेबीज डॉग ने काटा था और उसका सफल परीक्षण किया था। इसका उद्देश्य हर साल मनाने का यह है कि लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जन जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम के उपाय के बारे में चर्चा करना, इसका उद्देश्य है
0: जी। बहुत ज़्यादा विस्तार से आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हम श्रोताओं से लगातार कह रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इसको गौर से सुने। आपका भी कोई सवाल है तो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेरा अगला जो सवाल है आपसे वो ये है कि जूनेटिक रोग क्या होते हैं और इनका मनुष्यों और जानवरों से क्या संबंध है?
1: देखिए, जूनेटिक रोग वे संक्रामक रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। देखा जाए तो लगभग 60% रोग जो हैं मनुष्यों में, जो आज की डेट में हो रहे हैं, वो जानवरों से होते हैं। और जो नई नई बीमारियां जो पैदा हो रही हैं, 75% बीमारियां जो हैं ये कहीं ना कहीं जानवरों द्वारा फैलाई जा रही हैं। और इसका कारण बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, परजीवी हो सकता है, फंगस हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 60% संक्रामक रोग जूनेटिक रोग होते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, आगे की चर्चा इसके बाद।

0: सुधम संगीत से प्रेम हो, पशु पक्षियों से प्रेम हो, ये बहुत ज़रूरी है और हमने बहुत ही प्यारा सा अभी गीत सुना, लेकिन जो मुद्दा है, जो विषय है, वो है कि हमें सुरक्षित रहना भी है, हमें जानवरों की सुरक्षा भी करनी है, पशु पक्षियों की सुरक्षा भी करनी है, लेकिन खुद को सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है। इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर आरती शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है कि पालतू पशुओं से भारत में सबसे आम जूनोटिक रोग कौन कौन से हैं जिनसे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं?
1: देखिए, हम लोग पेट के साथ ज़्यादा रिलेटेड हैं, बिकॉज इसमें डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इवन कैटल्स हैं, डेयरी फार्म है, पिगरी हैं, तो ये जो कि इन कांटेक्ट रहते हैं ह्यूमन के साथ, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा मेरे मन में, जो सबके लोगों के, इवन ए लेमैन के मन में सबसे पहले ध्यान यही आता है कि रेबीज डिजीज़ ऐसी है जो डॉग से या एनिमल से ह्यूमन को होती है, तो उसकी प्रिवेंशन भी होती है, लेकिन अगर वो उसके सिम्टम्स आ जाएं तो वो 100% फेटल डिजीज़ होती है। तो इसलिए हम लोग लोगों को अवेयर करते रहते हैं, ना कि डराते हैं कि आप डॉग से दूर रहें, बट अवेयर रहेंगे तो आप रेगुलर वैक्सीनेशन करवाएंगे और उसको अपने डॉक्टर के साथ बात करेंगे, उसके कोई ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं तो आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उसकी ओपिनियन ले सकते हैं। तो इसलिए रेबीज, आई मीन डॉग से आप ऐसे डरे नहीं कि हर डॉग इज़ नॉट ए रेबीज डॉग, दे आर नॉट बॉर्न विद दिस डिजीज, लेकिन अगर वो उसको एनवायरमेंट से या किसी और वाइल्ड एनिमल से रेबीज डॉग ने या रेबीज एनिमल ने उसको काटा है, तो उसको रेबीज अगर हो गई है तो वो रेबीज, अगर वो रेबीज डॉग अगर आपको काटेगा तभी रेबीज होती है। ऐसे हर डॉग बाइट एक रेबीज बाइट नहीं होती। और एक बड़ी मिथ है कि अगर जैसे विलेज में या ऐसे रिमोट एरियाज में जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, अगर डॉग ने काटा है तो लोग वहाँ मिर्च लगा देते हैं या हल्दी लगा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर ओपन वुंड को आपने मिर्च या हल्दी से बंद कर दिया तो वो वायरस अगर है तो वो मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के एब्सेंस में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और इन्वेड कर सकता है इन द बॉडी, वो डेंजरस है, वो नहीं करें। सबसे पहले अगर किसी भी एनिमल ने आपको बाइट किया, उस एरिया को आप 15 मिनट्स के लिए रनिंग वाटर में सोप के साथ क्लीन करते रहें और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करें। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो दे विल गिव द एंटी रेबीज बूस्टर्स और इम्यूनोग्लोबुलिन जो डॉक्टर उस टाइम पे उचित समझेगा।
0: जी, ये सिर्फ डॉग्स के मामले में है या जैसे बंदर काट लेता है, बिल्ली भी काट लेती है, उसकी वजह से भी समस्या हो सकती है?
1: लेकिन अगर वो रेबिड है तो ही, अदरवाइज ऐसे सिंपल बाइट तो वी ट्रीटेड एज ए ओपन वुंड ओनली, बट प्रिकॉशनरी अगर हिस्ट्री नहीं है, एनिमल इज नॉट वैक्सीनेटेड, तो प्रिकॉशनरी इवन मेडिकल डॉक्टर्स दे एडवाइज टू टेक प्रोफाइलेक्टिक डोजेस लाइक 0 day, 3rd day, 7th day, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द वुंड। तो इसलिए कोई भी बाइट को आप सीरियसली नहीं ले, हमें सीरियसली लें और उसको अच्छी तरह वॉश करें और अपने डॉक्टर से बात करें।
0: मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कहीं बाइट हो गई है तो आप निश्चिंत हो जाएं कि अरे थोड़ा सा है, खरोच लगा है या कुछ है, बहुत अवेयर रहें।
1: एनिमल से बहुत डिजीजेस कम्युनिकेबल होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 70% डिजीजेज ऐसी हैं जो एनिमल से ह्यूमन को होती हैं, तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ रेबीज है, लेकिन अगर उसका आपने क्लीनिंग अच्छी नहीं, हाइजीन नहीं किया, जहां आपके पेट्स हैं, यूरिन है, अगर वो इन्फेक्टेड है लेप्टोस्पायरा से, तो इवन ह्यूमन कैन गेट लेप्टोस्पायरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि फेटल हो सकती है लेटर ऑन। ऐसे ही एक स्केबीज इन्फेक्शन है जो स्किन डिजीजेज होती हैं, अगर आपके पेट को है तो आपको भी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है आपके पेट में कोई भी एबनॉर्मल चीज है तो इमीडिएटली आपने वेटरनेरियन से बात करें, तो उसको सेफ रखें और आप, मुझे लगता है आप भी उससे सेफ रहेंगे।
0: जी, डॉक्टर एस के रसानिया जी, आपके पास आना चाहूंगी। जूनोटिक बीमारियां कैसे फैलती हैं और इनके प्रमुख संक्रमण के रास्ते कौन कौन से माने जाते हैं?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, बीमारियां फैलने के बहुत तरीके हैं जो बीमारी पेट ये जानवरों से फैल सकती है। एक तो यदि कोई व्यक्ति सीधे संपर्क में आए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो संक्रमित जानवर

0: को छूने से, उसको पालने से, उसको काटने या खरोंचने से, या उस जानवर के सलाइवा, खून या पेशाब या बलगम के संपर्क में आने से हो सकती है। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो सकता है कि जैसे उन जगहों पर जहां आप जानवर रहते हैं, जैसे कि दूषित मिट्टी, एक्वेरियम का पानी, पालतू जानवरों के बर्तन, मुर्गियों के दड़बे, उनमें जाने से हो सकती है। तीसरा हो सकता है कि जो इंसेक्ट बाइट, कीटों के काटने से, जैसे कि कोई टिक्स या फ्ली हुए या जू हुई, उसे काटने से भी कई बार संक्रमित जानवरों को काटे और वो यदि मनुष्य को काट लेगा तो उसमें भी रोग हो सकता है। या दूषित भोजन के द्वारा, जैसे कच्चा या अधपका मांस खाया, बिना उबला मांस खाया, या इन्फेक्टेड दूध पिया उस जानवर का, या ऐसा भोजन खाने से जो कि जानवर के मल से दूषित है, उससे भी ये बीमारियां फैल सकती हैं। तीसरा एक और मुख्य कारण है दूषित पानी द्वारा, जैसे ऐसे पानी को पीने से उसके संपर्क में आने से, जिसमें संक्रमित जानवर का यूरिन या उसका मल यदि मिला हुआ है तो वो यदि ले लेगा तो उसमें हो जाएगा। तो कई प्रकार के जूनेटिक बीमारियां उसको कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कुछ वायरल बीमारियां हैं, कुछ बैक्टीरियल बीमारियां, कुछ पैरासिटिक या परजीवी बीमारियां, कुछ फंगल बीमारियां, तो अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे मगर मुख्यतः जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, रेबीज है, इबोला वायरस है, फ्लू कोविड-19 है, फ्लू है, या सोलमोनेला है, प्लेग है, एंथ्रेक्स है,
1: कोविड-19 भी
0: जी उसी सीरीज में, क्योंकि कोविड-19 किस टाइम चमगादड़ से ये मनुष्य में, चमगादड़ के जो फीकल मैटर था उससे ये आया, तो कहीं ये सब उससे, ये सब उससे रिलेटेड है।
1: जी डॉक्टर साहब, वन हेल्थ अवधारणा क्या है और जूनोटिक रोगों की रोकथाम में इसकी क्या भूमिका है?
0: देखिए, वन हेल्थ जो है वो उसको तीन कंपोनेंट इसमें वन हेल्थ में है। एक है ह्यूमन हेल्थ यानी मनुष्य का स्वास्थ्य, दूसरा है एनवायरमेंट हेल्थ यानी कि वातावरण का स्वास्थ्य, तीसरा है एनिमल हेल्थ यानी कि पशुओं का स्वास्थ्य। यदि जैसा मैंने आपको बताया कि 60% या 75% बीमारियां मनुष्य के अंदर जो हो रही हैं आज के डेट में, कहीं ना कहीं उसमें एनिमल इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं इन तीनों का इंटरेक्शन, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ, तीनों का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। उसके ऊपर अगर एक साथ मिलकर काम किया जाए तो उसका इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो वन हेल्थ अप्रोच है। ये 2022 में एक कंसेप्ट हिंदुस्तान में आया था कि इसको लेके इस पे कार्य हुआ था, ताकि विभिन्न मंत्रालय, लगभग 13-14 मंत्रालय या विभिन्न विभाग हैं जिसमें मिलकर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो उस अप्रोच के माध्यम से इसमें काम हो रहा है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें अभी आपसे जानने को हैं और लगातार हम इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। श्रोताओं को भी बता दें कि अगर इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स है 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। फिलहाल यहां ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के रसानिया जी, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, और डॉक्टर आर टी शर्मा जी, वेटरिनरी डॉक्टर न्यू दिल्ली। और आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही अहम विषय पर कि आप कैसे, अगर जानवरों के आसपास हैं, पशु पक्षियों के आसपास हैं, तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आपका भी है कोई सवाल तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। बहरहाल हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। ये है देवदत्त परसौलिया जी का, प्रताप विहार गाजियाबाद से। इन्होंने लिखा है कि नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इन्होंने धन्यवाद किया है, लेकिन देवदत्त जी अगर आप अपना कोई सवाल करते तो और भी अच्छा लगता। बहरहाल डॉक्टर साहब, आर टी शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। मेरा सवाल ये है कि ह्यूमन से एनिमल को भी क्या कोई रोग हो सकता है?
2: हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज मैं अपने वॉइसलेस जो क्रिएचर है उनके लिए बैठा हूँ, क्योंकि हम लोगों को कल्प्रिट बनाया जाता है एनिमल्स को, कि 70% डिजीजेस इंसान को जानवर से होती है। पर मैं जब बोलता हूँ कि जो कल्प्रिट हैं अभी ह्यूमन भी हैं, उन्होंने फॉरेस्ट खत्म कर दिए, जंगल खत्म कर दिए, वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी आपने, उनको कोई न फ्रूट के ट्री लगाए न कुछ लिया। तो वो वाइल्ड लाइफ जब आपके अर्बन एरिया में आएंगी तो वो डिजीजेस तो फैलाएंगी, पर इसका जो कल्प्रिट है मुझे लगता है ह्यूमन खुद है। तो इसलिए हमें अपना फॉरेस्ट एनवायरनमेंट ये पूरा क्लीन रखना चाहिए, और उसका उन जानवरों के लिए भी जगह देना चाहिए, बिकॉज दिस अर्थ बिलोंग्स टू देम आल्सो। और बहुत सी ऐसी डिजीजे हैं जो ह्यूमन से हमारे पेट में होती हैं, जैसे एक फ्लू है, नॉर्मल वायरल इन्फ्लुएंजा जो होता है, जो इंसान जैसे सोर थ्रोट होता है, फिर किसी को खांसी होती है। तो अगर कोई पेट जिसकी इम्यूनिटी लो है, जो बहुत क्लोज इंटरेक्टिव में रहता है अपने पेट, अपने ओनर के साथ या उनके साथ सोते हैं, तो हमने पाया कि उनमें भी इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, और वो उनके भी सोर थ्रोट होते हैं, खांसी करने लग जाते हैं, वो 8-10 दो इससे सेल्फ लिमिटिंग, लेकिन डिजीज तो है। अगर किसी को और कोई अंडरलाइंग डिजीज है हमारे पेट को, तो इट कैन बिकम ए वेरी सीरियस इन्फेक्शन। तो आप ध्यान रखें, कब जैसे कोरोना है, अगर कोविड में भी हमारे पेट्स को बहुत एक्सपोजर हुआ था और बहुत केसेस आए थे, तो ऐसे में ह्यूमन से एनिमल को भी डिजीज होती है, इसको रिवर्स जूनियोसिस बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमारे पास अनुज जी का मैसेज आया हुआ है, दिल्ली से ही लिख रहे हैं कि क्या बर्ड्स से भी इन्फेक्शन हो सकता है?
2: या बर्ड जैसे पिजन्स हैं, इनका जो लाइक शिट है उससे भी आप कोक्सीडियोसिस एक इन्फेक्शन हो सकती है। तो फ्लॉक में रहते हैं तो एनी फंगल इन्फेक्शन कैन बिकम ए सीरियस इन्फेक्शन इन द लंग्स। अगर किसी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी लो है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे है कि वन हेल्थ मिशन जूनोटिक रोगों और महामारी के रोगों में कैसे मदद करता है रोकथाम के लिए?
3: देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये जो वन हेल्थ मिशन है, इसमें क्या है कि इसमें कई सारी एक्टिविटीज

0: करी जाएगी इसमें। तो इसमें रेबीड रेबीज हुआ, बर्ड फ्लू हुआ, निपा जैसी जो बीमारियां हैं, तो शुरुआत में इनको जैसे केरल में निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ था, तुरंत उसमें रैपिड एक्शन हुआ और काफी हद तक बहुत जल्दी ही उसको कंट्रोल में कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होती है इसमें कहीं ना कहीं बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत लाभदायक, बहुत सहयोगी देती है।
1: जी, हमारे कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कौन है और उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, अनुराधा जी नमस्कार, बहुत बहुत आपको।
1: जी सर नमस्कार, अपना शुभ नाम
2: और
1: बताएं।
2: दोनों विशेषज्ञों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि नमन।
1: जी
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे डॉग्स हैं, वो पालतू जो डॉग होते हैं घर पे, उनके बाल उड़ते रहते हैं सर, यदि खाद्य सामग्री के माध्यम से कभी पेट में चला जाए
1: जी,
2: तो क्या उससे भी कोई मतलब बीमारी हो सकती है?
3: हाँ सर, बिल्कुल हो सकती है। आप अगर पेट रखा है तो उसका ग्रूमिंग और हाइजीन ये तो रखना एक ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर एक्सीडेंटली इनहेल करते हैं, या कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग है जिसको अस्थमा है, या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जैसे कैट है उसके हेयर भी दैट कैन कॉज एग्रीवेट द अस्थमेटिक कंडीशन। सो अगर आप पेट को अच्छे क्लीन रखें तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग जिनको अस्थमा है या एलर्जी है पेट से, तो उनको ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इंजेक्शन से कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, बट अगर बहुत ज़्यादा आप इनहेल डाइजेस्ट कर लेते हैं या खा लेते हैं तो ऑब्वियसली दैट कैन लीड टू एनी ब्लॉकेज इन द इंटेस्टाइन, बट ऐसा होता नहीं, मैंने देखा नहीं ऐसा।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज आया हुआ है कृष्णा साहू जी का, रायपुर छत्तीसगढ़ से, लिख रही हैं कि मेरा प्रश्न है कि रात को जो खाना बच जाता है उसे इनका जो बच्चा है वो दे आता है एनिमल्स को, तो ये पूछना चाहती हैं कि क्या कहीं उससे जैसे बासा खाना है तो उससे कहीं एनिमल्स को खतरा हो सकता है और उसके बाद एनिमल्स से इंसान को भी हो सकता है?
3: देखिए, वो अब बहुत अच्छा जेस्चर है उनका, वो माइट बी एनिमल लवर, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो ज़्यादा स्टेल फूड नहीं हो, बोन्स नहीं दें, ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं हो, जो कि हमारे एनिमल्स को स्पेशली डॉग्स को, तो वो एनी सॉल्ट शुगर स्पाइसेस हम लाइक अवॉइड करना चाहते हैं, तो बोन्स देते हैं। किसी किसी डॉग्स को कभी कभी बोन मिलती है तो जस्ट स्वॉलो इट, दैट कैन कॉज एनी ऑब्स्ट्रक्शन और इंडाइजेशन। तो ये ध्यान अगर रखें आप, तो आई थिंक इट्स ए गुड थिंग दैट वेस्ट जो है एटलीस्ट किसी के काम लगता है, और उसको अगर हाइजीन और फ्रेश खाना दें तो ज़्यादा बेटर।
1: जी डॉक्टर रसानिया जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। आम नागरिक पशुपालक वन हेल्थ मिशन में अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है?
0: देखिए, हर किसी का सहयोग इसमें आवश्यक है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे कोई पशु पालने वाला हो, चाहे किसान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच इस वन हेल्थ मिशन में चाहिए। तो उसमें क्या है, जो पशुपाल जो अपने कोई पशुपालक हैं या पालतू जानवर जो रखते हैं, उनका सबसे जरूरी कहा है कि वो अपने जितने भी जानवर हैं पालतू जानवर, उनका नियमित टीकाकरण कराएं। घर में यदि पशु पालते हैं तो, या कोई आपके मवेशी वगैरह हैं, तो कहीं ना कहीं स्वच्छता बनाए रखें अपने पालतू मवेशियों के लिए भी और खुद के लिए भी। यदि कोई भी असामान्य बीमारी पशु में होती है या पक्षी में होती है या आपके घर में कोई बीमारी ऐसी होती है तो उसको सूचना तुरंत दें। जागरूकता इस विषय में सभी को फैलाएं, सभी को इस विषय में जानकारी दें, और कहीं ना कहीं जैसा डॉक्टर साहब ने भी बोला कि कहीं ना कहीं हम जो वन काट रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जो पेड़ वेड़ सब काट रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कहीं जो एक रैपिड अर्बनाइजेशन, कहीं ना कहीं शहरीकरण जो हो रहा है, उसमें वो जो पशु जो जंगलों में रहते थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मनुष्य के संपर्क में आके वो बीमारियां जो कहीं जंगलों में रहती थी वो अब लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण में भी सभी का सहयोग बहुत जरूरी है, तो इस रूप में सभी लोग इसमें मदद कर सकते हैं।
1: जी, तो पर्यावरण भी सुरक्षित रखें, क्योंकि वजह हम खुद होते हैं अगर कोई समस्या पैदा होती है, तो क्योंकि चेन है हमारी जो बनी हुई, कहीं ना कहीं अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे लिए खुद वो मुसीबत सामने आ जाती है, ऐसा हम कोविड के टाइम पर देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आया हुआ है मैसेज, ये है दिल्ली से परिधि जी का, खास करके आप आर टी शर्मा सर से सवाल कर रही हैं कि मेरे घर में 5 वर्षों से बिल्ली है और कई सालों से ये उसकी देखभाल कर रही है, लेकिन इनका बताना है कि ना तो वो पिंजड़े में रहना पसंद करती है, ना ही उसको नहाना पसंद है, तो ऐसे में मतलब कैसे केयर की जाए इन जैसे एनिमल्स की, और क्या इससे कोई खतरा हो सकता है कि अगर ये साफ सुथरे ना रहें?
3: देखिए, सबसे पहले हाइजीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर द ह्यूमन बींग्स, लेकिन कैट आपने रखी है तो सबसे ज्यादा वो

0: उनको ग्रूमिंग ज़रूर करते रहें, शेडिंग होता है, वो कैट अपने आप को भी खुद साफ़ करती है, तो जब साफ़ करते हैं तो बहुत से हेयर वो अपने इंजेस्ट कर लेते हैं, जब वो खा जाते हैं तो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर वो खाना बंद करेंगे, फिर वो वॉमिट करने लगते हैं, किसी किसी टाइम तो हमें सर्जरी करना पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखें, आप रेगुलर ग्रूम अगर करते हैं और उसको रेगुलर वैक्सीनेशन अगर आप कराते हैं, और कैट को कभी भी केज में मत रखिए, दे आर इंडिपेंडेंट एनिमल, वैसे भी किसी एनिमल को केज में नहीं रखना चाहिए, दिस इज क्रुएल्टी टू द एनिमल। तो अगर आपने कैट रखा है और उसको स्टरलाइज करवा दीजिए तो घर से बाहर नहीं जाएगी, जैसे डॉग्स एक परमानेंट पेट इनसाइड द हाउस होते हैं, ऐसे कैट्स नहीं होती हैं, बिकॉज जब वो वेन एवर दे कम ऑन देयर साइकिल दे ट्राई टू रन अवे, थोड़ा वाइल्ड इंस्टिंक्ट रहता है। तो कैट को अगर आपने रखा है तो उसको स्टरलाइज करवा के रखें, न्यूटर कर दें, तो वो घर से बाहर नहीं जाती, और बाहर जाएंगी तो इन्फेक्शन नहीं लेके आएंगी। तो आई थिंक आप 5 साल से रखा है तो मुझे लगता है अगले 10 साल और आपके साथ रहने वाली।
1: जी आगे बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं सर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति सर, नाम बताएं अपना।
2: जी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम जी, क्या सवाल है आपका?
2: हाँ, मेरा कहना है कि हमारे भी ग्रामीण क्षेत्र में जब कुत्ता काटता है तो रेबीज इंजेक्शन लगाते हैं, तो कुछ लोग एक ही इंजेक्शन लगवाते हैं, बाकी के इंजेक्शन नहीं लगवाते।
1: जी
2: तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या हमें पूरे इंजेक्शन, एक इंजेक्शन से प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है, कृपया विस्तार से बताएं।
1: जी
3: जी गौतम जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका और सभी की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। पहली चीज तो ये कि जैसा डॉक्टर शर्मा ने पहले ही बताया था कि यदि कभी भी कोई भी जानवर, पालतू जानवर यदि वैक्सीनेटेड है तो कोई बात नहीं, यदि अनवैक्सीनेटेड जिसको टीकाकरण नहीं किया हुआ या कोई जंगली जानवर ने किसी को काटा है तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि उसको, हम लोग उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक में तो ये कि अगर उसको कहीं स्किन में जरा सा कहीं स्किन इंटैक्ट है, उसमें स्किन में कहीं कोई ज्यादा कुछ नहीं आया, चाट लिया कुत्ते ने या किसी ने भी, दूसरा है कि कहीं स्किन में कहीं ना कहीं वो खरोंच आ गई, और तीसरा कहीं उसने अच्छी तरह से नोच लिया है आपके मास्क को। तो तीनों में अलग अलग चीजें, अलग अलग तरह से इलाज है उसके अंदर। सबसे पहली चीज यदि कहीं ना कहीं अगर स्किन यदि छिल गई है या कहीं घाव आ गया है तो उसको 15 मिनट तक साबुन से और तेज रनिंग वाटर में पानी से उसको धोएं अच्छी तरह से, जैसे डॉक्टर ने बताया था। उसका फायदा क्या है कि क्योंकि जो कीटाणु होता है, रेबीज का कीटाणु जो होता है, उसके अंदर एक साबुन से यदि उसको करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इनएक्टिव हो जाता है।

0: है तो उसको 15 मिनट तक साबुन से और तेज रनिंग वाटर में पानी से उसको धोएं अच्छी तरह से, जैसे डॉक्टर ने बताया था। उसका फायदा क्या है कि क्योंकि जो कीटाणु होता है, रेबीज का कीटाणु जो होता है, उसके अंदर एक साबुन से यदि उसको करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं वो इनएक्टिव हो जाता है। तो 15 मिनट तक लगातार उसको धोएं अच्छी तरह से, और उसके बाद में यदि तुरंत कहीं पास के नजदीक का अस्पताल जहां पर टीकाकरण होता है तो टीकाकरण, टीके जिसमें दो तरह के लगते हैं, एक तरीका एक होता है जो कि खाल में लगाया जाता है, इंटरडर्मल इंजेक्शन बोलते हैं, एक होता है जिसको मास्क के अंदर लगाया जाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा डॉक्टर जो वहां पर आपके एंटी रेबीज क्लिनिक है वहां पर कौन सी तरह का लगाया जा रहा है। तो उसमें जो खाल के अंदर टीका लगाया तो 4 टीके लगते हैं, और जो मगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है वो 5 टीके लगते हैं। तो ये एक टीका कभी नहीं, वो डॉक्टर्स जो एंटी रेबीज क्लिनिक जो भी आपके नजदीक में है तो वहां जाके जो भी डॉक्टर वहां पर है, ये जो उस क्लिनिक में लोग हैं, तो वहां पे एक टीका कभी नहीं, एक टीके से कभी कुछ नहीं काम चलता। वो एक टीका यदि उसमें दो तरह का, एक तो होता है वैक्सीन, दूसरा होता है सीरम। सीरम ये तब लगाया जाता है जबकि खाल अगर छिल जाए और उसमें कहीं इन्फेक्शन होने के, वो ताकि उसके अंदर एंटीबॉडी रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं जो कि सीधे उस घाव में लगा दी जाती हैं,
1: जी
0: तो वो दोनों जरूरी हैं। तो इसलिए मगर कहीं ना कहीं आप रेबीज क्लिनिक, एंटी रेबीज क्लिनिक में जाकर जहाँ कुत्ता काटे का इलाज होता है वहां पर जाकर सरकारी उसमें जाके अपना इलाज कराएं। जी
1: डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। जोया जी का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास मैसेज आया हुआ है, लिख रहे हैं कि डॉग्स लवर जो होते हैं अक्सर बेड पर रखते हैं अपने डॉग्स को, साथ में सोते हैं उठते हैं और उनके आसपास हमेशा रहते हैं, साथ साथ कभी कभी मुंह भी चाट लेते हैं, तो इस तरीके की जो आदत है क्या कहीं ना कहीं मुसीबत का विषय है?
2: देखिए, डॉग के सलाइवा में अगर कितना भी वो हाइजीनिक आप रखें तो थोड़ा इन्फेक्शन तो रहता है, जैसे साल्मोनेला या स्यूडोमोनस ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं। अगर वो आपने उसने लिक कर लिया तो आपने ध्यान नहीं दिया या वॉश नहीं किया तो वो एक इन्फेक्शन दे सकते हैं। बट थोड़ा डिस्करेज करें, अगर इफ़ इज़ लिकिंग योर फेस एंड तो जस्ट गो एंड वॉश। वो एक अफेक्शन का जेस्चर तो ज़रूर है, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप यू हैव टू बी केयरफुल, जस्ट वॉश इट विद द गुड सोप आफ्टर दिस जेस्चर।
1: जी आलोका जी का नोएडा से सवाल है, इन्होंने लिखा है इनके पास रैबिट है और उसकी देखभाल ये कैसे करें कि कहीं कोई दिक्कत उनको ना आए?
2: देखिए, रैबिट हमेशा पेयर में रखना चाहिए क्योंकि वो खुश रहते हैं। अगर आपने रखा है वो इतनी इंटरेक्शन नहीं है तो वो ज़्यादा खाते रहते हैं और मोटे हो जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं। तो अगर आप उसको पेयर में रखेंगे तो खेलेंगे, उसको कभी केज में मत रखिए, घर में खेलने दीजिए। और ऐसी कोई भी पेस्ट इंसेक्टिसाइड कोई स्प्रे ना करें घर में जहाँ रहते हैं, उनको अच्छा खाना खिलाएं तो वो भी रेसिप्रोक्रेट करते हैं, दे ऑल्सो वो गिव अनकंडीशनल लव टू यू, वो आपको एक अच्छा कंपेनियन भी रहते हैं। और उसका ध्यान अगर अच्छा खाना खा रहा है और अपने वेटनरी डॉक्टर को बीच बीच में दिखाते रहें फॉर एनी स्किन प्रॉब्लम और एनी डेफिशिएंसी, तो आई थिंक दे लिव लॉन्गर।
0: मगर मैं एक चीज उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अधिकतर जैसे जो पालतू रैबिट हुआ है, कुछ भी हुआ, कैट भी हुआ, एक चीज बहुत मैंने अधिकतर घरों में देखा है, वो जगह जगह पॉटी कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं सफाई का ध्यान जरूर रखें।
2: बिल्कुल,
0: जो भी वो कहीं इस तरह कुछ भी अगर अपना मल मूत्र विसर्जन कर रहे हैं कहीं जगह पे ना करें, अगर करते हैं तो
2: जनरली कैट के लिए वी रिकमेंड कैट लिटर बॉक्स होता है, तो वो कैट इतनी ट्रेंड हो जाते हैं कि वहीं जाके करते हैं।
0: रैबिट,
2: इवन रैबिट भी अगर उनको एक ऐसा जगह बना दें, आप उसी ऐसे मैट हैं उसमें उसका यूरिन जहां लाइक न्यूज़पेपर बिछा दें तो अगर वो सोक कर लेता है थोड़ी देर बाद वो हील जस्ट गो देयर एंड हील पास टूल देयर। तो ऐसे रैबिट्स भी ट्रेंड, इवन द बर्ड्स दे गेट ट्रेंड, उनके लिए ऐसी ऐसी जगह बनाई हुई है, नीचे वो पॉट रख देते हैं, वो वहीं जाके अपनी ड्रॉपिंग करते हैं।
0: तो ट्रेनिंग की भी आवश्यकता,
2: ट्रेनिंग की भी
0: ट्रेनिंग की आवश्यकता,
2: हाइजीन तो मेंटेन करना ही।
1: मनीषा जी का हमारे पास मैसेज आया हुआ है रांची से, ये लिख रही हैं कि ये 75 ईयर्स ओल्ड हैं और बता रही हैं कि इनके पास एक बिल्ली है और इनको बुखार हुआ, उसके बाद उसको फीवर हो गया है, तो ये चाहती हैं कि उसको कैसे बचाया जाए।

0: यही है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, हाइजीन मेंटेन करके रखें, और कैट को जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो देते रहें, जो उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप रहे, तो ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ जल्दी होगी नहीं। बट जो वायरस है कई बार म्यूटेट कर जाता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो हमने समस्याओं का समाधान जान लिया। अब मैं जानना चाहूंगी कि पशु चिकित्सकों का वन हेल्थ में क्या योगदान हो सकता है?
0: देखिए, बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे मेडिकोज हैं, दे हैव देयर ओन इशू, पर वेटनेरियंस दे नो वेरी क्लोज टू द एनिमल्स विच डिजीज दे आर स्प्रेडिंग, और कहाँ ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कोई बीमारी फैल रही है, तो उसमें

0: अगर हम लोग काम करें तो मुझे लगता है बहुत जल्दी एक डिजीज को हम कंट्रोल कर
1: कंट्रोल
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं। जी हाँ, हमारे कॉलर लाइन पर हैं, जान लेते हैं कौन है और आपका सवाल क्या है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हेलो, नमस्कार सर, डॉक्टर सर, आपको भी, आपको भी।
1: जी
0: नमस्कार
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार।
1: नाम बताएं अपना।
2: मेरा नाम राजेंद्र है सर। मेरे को एक बार ये स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था उसको हाथ पे। तो पहले तो कई हॉस्पिटल गए, वो बोले ये इंजेक्शन हमारे पास नहीं होता, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ही मिलेगा। तो
1: जी
2: फिर वो क्या क्या नहीं, तो वो फिर जो अभी जुगल किशोर जी जो सफदरजंग के बड़े हैं, उन्होंने बोला है जो काटा हुआ डॉग का उसको टांके नहीं लगाने। तो मैं राम मनोहर लोहिया गया तो उन्होंने टांके लगा दिए थे इसमें। तो वो जुगल किशोर जी भी आए थे एक बार आपके शो में।
1: जी, तो क्या जानना क्या चाहते हैं, मतलब ये जो टांके आपको लगाए गए हैं वो हार्मफुल तो नहीं है, ये जानना चाहते हैं आप।
2: हाँ, ये वहाँ तो उस पर कभी कभी हो जाता है, वो कहते हो ये इसका कोई एंटी इंजेक्शन इन्फेक्शन इंजेक्शन आता है, महंगा है वो, पड़े आपको।
1: जी
0: देखिए, वो अगर बाइट बहुत ज्यादा है और ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो कई बार डॉक्टर्स वहां रिकमेंड करते हैं, पर 99.9% उसको बंद नहीं करना चाहिए, जो भी रेबिड या कोई भी डॉग बाइट है, बिकॉज उसको 2 या 3 4 दिन के लिए खुला रखना है। और उसको आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 15 मिनट सोप से क्लीन करते रहें, रनिंग वाटर में करें, और इम्यूनोग्लोबुलिन आते हैं जो थोड़ा आपको बोला होगा एक्सपेंसिव है, वो जहाँ जख्म होता है उसके अंदर वो वैक्सीन लगाते हैं। एक नॉर्मल वैक्सीन लगाते हैं 0 डे 3rd डे 7th या 4 या 5 इंजेक्शन, वो डॉक्टर का डिस्क्रिशन होता है, वो बाइट कहाँ पे है और कितना डीप है वो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं। लेकिन स्टिच नहीं लगाना चाहिए, मे बी उस टाइम डॉक्टर साहब ने देखा होगा और ब्लीडिंग नहीं रुक रहा हो तो इसलिए स्टिच लगाया होगा।
1: जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप भी। अच्छा
0: प्लीज।
1: सर, आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं, सभी समझ पा रहे हैं कि आज हम अपने भी सुरक्षा के लिए बातें कर रहे हैं। पशु पक्षियों से प्रेम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी भी सुरक्षा ज़रूरी है। और कैसे अवेयर आप रह सकते हैं अपने बारे में, इस बारे में हमारे दो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, पशु पक्षी पालकों और किसानों को जूनोटिक रोगों से बचाव के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए।
3: जैसा मैंने बताया कि नियमित टीकाकरण बहुत
1: जी
3: जरूरी है पशुओं के लिए भी, आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें पूरी तरह से, लोगों को जागरूक बनाएं, यदि कहीं भी पशुओं में कोई भी बीमारी यदि आपको लग रहा है, असाधारण बीमारी हो रही है जो कि आपको लग रहा है कि जो उनको पहले कभी नहीं होती थी, या मनुष्य में भी कोई ऐसी बीमारी हो जो कि लग रहा है कि पहले कभी नहीं हुई थी, या ऐसे कोई नई लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत नजदीक के अस्पताल में जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो आजकल नई नई बीमारी हो रही है तो उसमें तुरंत इसका निदान हो सके, ये आपको थोड़ा अपने तरफ से कोशिश करनी है।
1: जी, हमें खुद जागरूक रहना होगा, ये डॉक्टर साहब लगातार हमें बता रहे हैं। फिलहाल अब यहाँ रुकते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए, बाकी बातें इसके बाद।

श्रोताओ, वर्ल्ड जूनोसिस डे पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर है 0112342 1080 और 0112342 1082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं जो कि लगातार आपके आ रहे हैं 9868107070 पर। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि सरकार द्वारा जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए कौन कौन

0: हैं वो रखें, एग्जॉटिक एनिमल्स रख सकते हैं, पर जो हमारे इंडियन पैरट्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू कीप एज ए पेट, तो वो इलीगल है, वो नहीं आप रखें। बाकी आपने जो और एग्जॉटिक एनिमल बर्ड्स रखे हैं तो उनका जो केजेस हैं उनको अच्छी तरह क्लीन करते रहें, उनकी ड्रॉपिंग्स के लिए आजकल नए नए केज आए हैं, वो नीचे ट्रे होता है वो नीचे गिर जाती हैं, उसको आप क्लीन करते रहें। बाकी जितना हाइजीन रखेंगे और आपकी इम्यूनिटी बेटर है तो ऐसी कोई इन्फेक्शन नहीं होती ज़्यादा। और तो आई
1: जी
0: थिंक कीप ऑन लविंग योर बर्ड्स।
1: जी डॉक्टर साहब, जूनेटिक रोगों के बारे में आम जनता में कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, क्योंकि सही अगर कोई मशवरा दे तो ठीक है, अदरवाइज कुछ
0: भ्रांतियां तो बहुत है
1: भ्रांतियां
0: हमारे एक्चुअली हमारा कल्चर ऐसा है कि वी आर वेरी क्लोज टू द एनिमल, हम तो उनकी पूजा भी करते हैं। तो भ्रांत को बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो वो उसको ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो
1: ओ
0: वो
1: माय
0: लगता
1: गॉड।
0: है भाई मेरे कोई अपशगुन हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता कभी भी। वो एनिमल है, वो जगह उसको भी वो बिलोंग करता है, वो भी कहाँ रोम कर सकता है। लेकिन अगर आपको आपको ऐसे बिल्ली को रास्ता काट गई तो बहुत से लोग क्या करते हैं उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं विदाउट एनी रीजन। तो एक ये अंधविश्वास है, उसको आप दूर रखें। और कभी डॉग आपको स्क्रैच कर ले तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि इससे रेबीज हो जाएगी, वैसा रेबीज नहीं होती। और अब कौआ बोलने लगे तो बोले घर में कोई गेस्ट आने वाला है, तो बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं एनिमल्स के साथ, बिकॉज हम हमारा सोसाइटी ऐसी है, वी लव एनिमल्स एंड वी शुड कीप ऑन लविंग अप आर एनिमल्स ऑन आउटसाइड एंड इनसाइड द हाउस।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, सवाल सिर्फ लिखा है सर, जो डॉग के काटने से रेबीज होता है

0: जानवरों से प्यार करें लेकिन
1: बिल्कुल
0: सावधानी बरतें।
1: जी
0: तो पालतू जानवरों को जो अगर ये आपके पास में है तो उनका टीकाकरण अवश्य कराएं, स्वच्छता रखें जानवरों के पास भी अपने आसपास भी, किसी भी असामान्य बीमारी की सूचना अवश्य दें, जागरूकता स्कूलों गांवों सोशल मीडिया के जरिए फैलाएं जितना हो सके। जो भी यदि दूध पिए तो उसको हमेशा उबाल कर पिए, कच्चा मांस नहीं खाएं पुराना मांस नहीं खाएं, तो ये सब चीजों थोड़ा ध्यान रखें कि थोड़ा सफाई का सब चीजें ध्यान रखें
2: लेकिन इंसान

प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की आज गुवाहाटी में बैठक शुरू। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस संबंध में ओडिशा सरकार ने भी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 लोग घायल हुए हैं। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक विदाई समारोह के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आपका फेवरेट प्रोग्राम अल्फा जैन। और खास सोमवार के दिन अल्फा जैन में हम लेकर आते हैं यूथ स्पीक्स, यानी कि आप में से युवाओं में से मिलता है किसी खास को मौका यहाँ पर आने का और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर बात करने का। तो आज ये मौका मिला है माधवी तिवारी को। माधवी हमारे साथ स्टूडियो में है और आज वो किस मुद्दे को लेकर आई है, चलिए उनसे ही जानते हैं। माधवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में। आप ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और आपको यहाँ पर आने का मौका मिला है, तो कैसा महसूस कर रही हैं और किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं?
2: धन्यवाद मैम, FM रेनबो पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज मैं जनरेशन जी के बारे में बात करना चाहती हूँ और उनको लेके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं वो दूर करना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल माधवी, कहीं ना कहीं अलग अलग जनरेशन के लोगों को एक दूसरे से कुछ समस्या तो होती है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है और ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला हमारी बात समझ ही नहीं रहा है। तो युवाओं को भी अगर ऐसा लगता है तो भाई आपकी बात यहाँ आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से माधवी पहुँचा रही है और माधवी इस मुद्दे को लेकर करने वाली है ढेर सारी बातें। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक प्यारे से गीत के साथ।

नमस्कार दोस्तों, एफएम रेनबो के यूथ स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं जो डाइनिंग टेबल पे बहस बन जाता है, ऑफिस में भी छिड़ जाता है और सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड ही कर जाता है। और हाँ, हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे तो खैर रोज का किस्सा है। ये आजकल के बच्चे, सुना है ना कभी ना कभी, फैशन हो, डेटिंग हो, करियर के चॉइसेस हो या मीम्स में, हम जेंजी हमेशा किसी ना किसी स्कैनर के नीचे रहते हैं। तो सच में क्या हम इतने अलग हैं? क्या वाकई हम कम लॉयल हैं, ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट हैं, या फिर हम सिर्फ एक जनरेशन है जो एक तेजी से बदलती दुनिया के साथ खुद को ढाल रही है। अगले कुछ मिनटों में चलिए हमारी दुनिया में झांकते हैं, स्टीरियोटाइप से नहीं बल्कि समझ से। यह है यूथ स्पीक्स और आज का विषय है जेंजी, ट्रेंडी, मिसअंडरस्टूड या बस डिफरेंट।

0: तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो जेन जी है वो अपने हक की बात करती है कि हमारा हक लोग समझ नहीं रहे हैं, हमारे मन की बात को लोग समझ नहीं रहे हैं। और इसीलिए माधवी तिवारी आज हैं यहाँ रेनबो के स्टूडियो में और लेकर आई हैं जेन जी के दिल की बात। तो माधवी, ये जेन जी आखिर क्या जनरेशन है? किस साल से किस साल के बीच तक की जनरेशन को जेन जी कहा जा रहा है?
1: दोस्तों, जब बात होती है जेन जी की तो बात हो रही होती है हम जैसे लोगों की जो 90s के आखिरी से लेकर 2010 के शुरुआती सालों में पैदा हुए हों। हम पहली जनरेशन है जो पूरी तरह डिजिटल दुनिया में पली बढ़ी। जरा सोचिए

0: बूमर्स का वो दौर जब इंटरनेट पैक महंगा हुआ करता था, फोटो सोच समझ कर खींचनी पड़ती थी क्योंकि फिल्म रोल में लिमिटेड जगह होती थी और रास्ता पूछने के लिए अजनबियों से बात करनी पड़ती थी। और अब बात करते समय हम यानी जेंजी की, हम बड़े हुए स्मार्टफोन से गूगल मैप्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल पेमेंट्स और सोशल मीडिया के साथ। हमारे लिए टेक्नोलॉजी कोई टूल नहीं है, ये एक एनवायरमेंट है, एक माहौल है जिसमें हम सांस लेते हैं। जैसे पहले की जनरेशन ने टेलीविजन, टेलीफोन और कंप्यूटर के साथ खुद को ढाल लिया था, वैसे ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल नेटवर्किंग और इंस्टेंट कनेक्टिविटी को अपना लिया है।
1: बिल्कुल माधवी, इतनी तेजी से बदलती हुई दुनिया में ढलना आसान तो नहीं है, लेकिन जेन जी इस काम को बखूबी कर पा रही है। लेकिन इस नई जनरेशन का दिल क्या चाहता है, इसीलिए माधवी आई है यहाँ पर नई जनरेशन की, जेन जी की मन की बात लेकर।

0: चाहता है।
1: दोस्तों, हर जनरेशन का दिल कुछ अलग ही चाहता है और उसको ये भी लगता है कि जो दूसरी जनरेशन है वो कुछ गलत कर रही है। बात करूं अगर पहले की जनरेशन की, तो वो एक ऐसी दुनिया में पली बढ़ी है जहां पर स्टेबिलिटी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। एक जॉब, एक कंपनी, एक शहर और एक रूटीन, और सक्सेस का मतलब कंसिस्टेंसी।

0: है हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां करियर तेजी से बदलते हैं, इंडस्ट्रीज रातों रात उभर आती है और स्किल्स सालों में ही पुराने पड़ जाते हैं। पहले के लोग के बारे में जॉब बदलना शायद बेचैनी की निशानी लगे, जबकि हमारे लिए वही बदलाव ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। पहले के लोगों को एक एक रुपया बचाना पड़ता था, वही हम शायद एक्सपीरियंस, कोर्सेज, ट्रैवल और पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल माधवी, लेकिन ये कह सकते हैं कि दोनों जनरेशन में से कोई भी गलत नहीं है, बस दोनों के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग हैं और उनकी परवरिश भी अलग-अलग माहौल में हुई है, और शायद इसीलिए ये बहस हर दूसरे घर में चल रही है, डाइनिंग टेबल पर, फोन पर, और कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, लेकिन गलत कोई भी नहीं है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा ये कम्युनिकेशन, हमारा ये मुद्दा जारी रहेगा और ये चर्चा भी रहेगी जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

दोस्तों, अब बात करते हैं लेवल्स की। हमें अक्सर कहा जाता है लेजी, ओवर सेंसिटिव, अटेंशन सीकिंग, फोन एडिक्टेड और शायद सबसे कॉमन लेवल नॉट लॉयल। चाहे रिश्ते हों, जॉब्स हों, दोस्ती हो या कमिटमेंट्स, लोगों को लगता है हम कहीं टिकते नहीं। पर एक सवाल पूछूं, क्या सच में यह हमारी प्रॉब्लम है या एक इंसानी फितरत जो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से भी बहुत पहले मौजूद थी? आप ही सोचिए जरा।

0: बिल्कुल दोस्तों, ये नई जनरेशन में जिगरा तो बहुत है, क्यों माधवी?
1: यस मैम, सच कहूँ तो लोग अक्सर पुराने जमाने की बात ऐसे करते हैं जैसे तब सब कुछ परफेक्ट था, पर इतिहास कुछ और ही कहानी बताता है। दोस्तियाँ तब भी टूटती थी, रिश्ते तब भी खत्म होते थे, लोग तब भी करियर बदलते थे, लव ट्रायंगल्स डेटिंग ऐप से पहले भी होते थे, हार्ट ब्रेक सोशल मीडिया से पहले भी होता था, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट स्मार्टफोन से पहले भी होते थे। फर्क बस इतना है, पहले ये किस्से मोहल्ले तक सीमित रहते थे, आज ये ऑनलाइन ट्रेंड कर जाते हैं।
0: बिल्कुल माधवी, क्योंकि ना सोशल मीडिया ने चमत्कार किया है। ये किसी इंसानी व्यवहार से पैदा हुआ रिएक्शन नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया ने उसे विजिबल बना दिया है। सोशल मीडिया पे लोग अपनी पूरी कहानी, अपना पूरी दिनचर्या ही शेयर करने लगे हैं, और इसीलिए जब आजकल किसी का रिश्ता टूटता है, किसी का रिश्ता बनता है, तो सब कुछ पूरी दुनिया को पता चल जाता है इंटरनेट के ज़रिए। जबकि 30 साल पहले अगर वही चीज़ होती तो शायद सिर्फ आस पड़ोस को ही पता चलता था। तो व्यवहार तो नया नहीं है, लेकिन हाँ, अब सब कुछ बाहर आ जाता है, सबको पता लग जाता है। तो फिलहाल ये नई और पुरानी जनरेशन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया

वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

बिल्कुल दोस्तों, ये नई जनरेशन उड़ना चाहती है चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो है जो हम भूल जाते हैं, वो ये कि जो ये नई जनरेशन है ना,

0: ये सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही, जॉब नहीं कर रही, रिश्तों से ही नहीं जूझ रही है, बल्कि एक अनदेखा मुकाबला भी है जिससे ये हर रोज गुजर रहे हैं, और वो है कॉन्स्टेंट कंपेरिजन।
1: बिल्कुल मैम, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई घर खरीद रहा है, कोई बहुत फेमस हो रहा है। ज़रा सोचिए।
0: क्या सोचना है माधवी? यही कि ये जो सारे काम करने के बाद इसको सोशल मीडिया पे डालते हैं तो कहीं ना कहीं हर कोई बस कंपेयर कर रहा है युवाओं को, और इस कंपैरिजन से ये जनरेशन हर रोज़ गुजर रही है, लेकिन फिर भी इनका जो हौसला है वो बरकरार है। क्यों माधवी?
1: बिल्कुल मैम, और फिर भी हम सीखते हैं, ढलते हैं, बनाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये असल में एक तरह की हिम्मत है?
0: बिल्कुल माधवी, कहीं ना कहीं ये हिम्मत ही है, क्योंकि जब माता पिता अपने बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं किसी और के साथ तो उनका मनोबल टूटने लगता है, उनका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन चाहे कितना भी कंपैरिजन क्यों ना हो, आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना है, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, कुछ ना कुछ खासियत है, और उसी खासियत को आगे बढ़ाना है और एक नए आसमां पर उड़ते चले जाना है।

0: भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो
2: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ स्पीक्स और यूथ स्पीक्स में बात हो रही है जेन जी की। जी हाँ दोस्तों, इस बदलते हुए दौर में जेन जी बेहद खास है और उसको खास क्या बनाता है ये बता रहे हैं माधवी तिवारी। तो माधवी, क्या ऐसा बदलाव है जो जेन जी लेकर आई है?
3: मैम, हम जेन जी कुछ जबरदस्त बदलाव लेकर आए हैं। हम मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करते हैं, हम अनहेल्दी ट्रेडिशंस पर सवाल उठाते हैं, हम वर्क लाइफ बैलेंस को वैल्यू देते हैं, हम ऑनलाइन नई नई स्किल्स सीखते हैं, हम अपने बेडरूम से बिजनेस खड़े कर देते हैं, हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, हम उससे क्रिएट भी करते हैं।
2: बिल्कुल माधवी, जब हाथ में स्मार्टफोन हो तो वो स्मार्टफोन हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्लासरूम बन जाता है, कभी कभी वो न्यूज़ रूम की तरह भी काम करता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बन जाता है या फिर एक डिज़ाइन एजेंसी की तरह भी काम करता है, और कभी कभी तो लोग अपना स्टार्टअप ही इस फ़ोन के बलबूते खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल कमाल की बात है ना, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है इसने बहुत सारी चीज़ों को आसान बनाया है और ये जो नए स्किल हैं वो सीखे हैं नई जनरेशन ने, जेन जी ने, और इसी के बलबूते वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है।

हैं नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन के बीच होने वाले टकराव की, उनकी खासियतों की, और ये मुद्दा जो हर जगह डिबेट का विषय बना हुआ है, इस पर हो रही है आज आपके अपने यूथ स्पीक्स में बेहद ही खास चर्चा।

समय हो गया है 4:52 और यू स्पीक्स में माधवी तिवारी है आपके साथ और साथ ही साथ मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे शालिनी और हम बात कर रहे हैं।

0: तो दोस्तों समय हो गया है हमारे जाने का, लेकिन जाने से पहले हम ये बात भी कर ही लेते हैं कि आखिर ये नई जनरेशन को पुरानी जनरेशन से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आखिर ऐसा क्या है माधवी जो ये पुरानी जनरेशन से सीखा जा सकता है, बताओ माधवी।
1: मैम, पुरानी जनरेशन भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, डिजिटल अडैप्टेबिलिटी और नए आइडियाज़ के लिए खुलापन सिखाती हैं, और पुराने आउटडेटेड सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत भी तो देती हैं, क्योंकि प्रोग्रेस तभी होगा जब एक्सपीरियंस इनोवेशन से मिलेगा।
0: बिल्कुल माधवी, और कहीं ना कहीं एक दूसरी जनरेशन से हमें सीखने की ज़रूरत है। जहां पुरानी लोगों के पास एक्सपीरियंस है और उससे सीखने की ज़रूरत है, वहीं नए लोगों के पास नए स्किल्स हैं और कहीं ना कहीं कुछ नया करने की हसरत है, नया जोश है, नई उमंग है। इसीलिए चाहे जनरेशन कोई भी हो, लेकिन उनके अपने स्ट्रगल्स हैं, तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ भी है, अपनी अपनी अलग कहानियाँ हैं। इसीलिए साथ मिलकर चलने में ही है।

लाई तो माधवी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और नई जनरेशन के बारे में उनकी समस्याओं से रूबरू कराने के लिए। और कहीं ना कहीं हमें भी ये जान के अच्छा लगा कि नई जनरेशन भी हमसे कुछ सीख सकती है और ये बात वो मानती है। तो फिलहाल मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे शालिनी और माधवी तिवारी को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स।

पेश है अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत का एक्ट ईस्ट नीति और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। ब्रिक्स देशों में मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की आज गुवाहाटी में बैठक शुरू। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने आयोजित किया। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस संबंध में उड़ीसा सरकार ने भी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। समृद्ध राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यूक्रेन की राजधानी की पर आज सुबह रूस ने प्लास्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खमनाई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक विदाई समारोह के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश।

देश के लिए रेड अलर्ट। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। तो ये तो थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन। और आपको दिल्ली एनसीआर की सभी तमाम जानकारियां लेकर हम आते हैं सिटी लाइट्स में। और जो मैं अब आपको जानकारी देने वाला हूं वो है दिल्ली एनसीआर में मानसून की रफ्तार। जी हां, दिल्ली एनसीआर में मानसून की रफ्तार बढ़ गई है और मानसून जो है दिल्ली में आने को है। और कई जगह हल्का फुल्का कल जो हुई बारिश भी हुई है और मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो आपका इंतज़ार खत्म हुआ और अब मानसून आने को है। तो मानसून आ रहा है तो भाई बारिश भी होगी और फिर चाय का लुत्फ़ लेंगे और मौसम का भी मज़ा लेंगे। तो क्यों ना एक गाना सुना जाए, इंजॉय किया जाए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को। आकाशवाणी एफएम रेडबो प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। और अगली जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो है दिल्ली जल बोर्ड ने जो जानकारी हमें दी है। जी हाँ, दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी के कई इलाकों में आज यानी कि 6 जुलाई को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहने की सूचना जारी की है और मरम्मत और पाइपलाइन जोड़ने के कार्य के कारण 6 और 7 जुलाई 2026 को दिल्ली के 75 से अधिक इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सोनिया विहार प्लांट और नई ग्रेटर कैलाश मेन पाइपलाइन के रखरखाव के कारण कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बंद या कम दबाव में रहेगी। और प्रभावित क्षेत्रों की जो सूची है एरिया वाइज वो है साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, साकेत, मालवीय नगर, शेख सराय, हौस खास, ग्रीन पार्क, चिराग दिल्ली, पंचशील पार्क, वसंत कुंज, मेहरौली, छत्रपुर, कालकाजी, सीआर पार्क, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर, सरिता विहार, जसोला, बदरपुर, आश्रम, सराय कालेखा, ओखला, जाकिर नगर और पटाला हाउस। सेंट्रल और लुटियंस दिल्ली है इसमें, उसमें जो इलाके आते हैं वो है गोल्फ लिंक, भारतीय नगर, भारती नगर, लोधी स्टेट, खान मार्केट, पृथ्वीराज रोड, शाहजहां रोड। और ईस्ट दिल्ली में कैलाश नगर, गांधी नगर, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, पटपटगंज, सिद्धार्थ, इनक्लेव और आसपास के इलाके। और बोर्ड ने नागरिकों से पर्याप्त पानी स्टोर करने और सावधानीपूर्वक उपयोग करने की अपील की है। तो अगर आपका भी इस एरिया में घर है, इन इलाकों में अगर आप रहते हैं तो आपको पानी की जो है थोड़ी किल्लत का सामना करना पड़ेगा और पड़ सकता है, तो आप पानी को बड़े ही सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें। फिलहाल आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे? अगर आप हमें ट्रैफिक अपडेट्स भेज सकते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त ट्रैफिक मूवमेंट कैसा है, आप जहां पर जा रहे हैं या रास्ते में कैसा अभी ट्रैफिक है, तो आप हमें अपडेट भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। फिलहाल एक हमारे पास अपडेट आई है, वो भेजा है हमें इंद्रपाल सिंह ने, जो बता रहे हैं कि गोल्फ रोड सेक्टर 54 गुरुग्राम में अगर आप हैं और उधर से अगर आप MG रोड की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक अभी स्लो है, तो आपको थोड़ा सा ट्रैफिक जो मूवमेंट है वो स्लो मिलेगा अगर आप गुरुग्राम में सेक्टर 54

गोल्फ कोर्स रोड से टूवर्ड्स एमजी रोड जा रहे हैं। और इसी तरह की आप भी हमें जानकारी भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। अपने नाम और अपनी जगह के साथ आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ट्रैफिक अपडेट्स। कुछ ही देर में हम शेयर करेंगे ट्रैफिक अपडेट्स आपके साथ ओनली ऑन 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, और दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमें ट्रैफिक अपडेट्स के साथ भेजकर। आप अपना नाम और अपनी जगह का नाम हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और इस वक्त दिल्ली में अगर आप कहीं जा रहे हैं, ऑफिस से निकले हैं, या फिर ऑफिस घर से ऑफिस, क्योंकि कईयों की नाइट शिफ्ट भी होती है, घर से ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, और आपके इलाके में ट्रैफिक कैसा है, जहां आप जा रहे हैं ट्रैफिक स्मूथ है, ट्रैफिक जाम है, या आप ट्रैफिक में फंसे हैं, तो वो आप तमाम जानकारियां हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। अपना नाम और जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। और कुछ तमाम जानकारियां हमारे पास ट्रैफिक अपडेट्स के माध्यम से हम तक पहुंची हैं, और हम आपको ट्रैफिक अपडेट्स भी देना चाहेंगे। इस वक्त ट्रैफिक अपडेट्स ये है कि इस वक्त मैं आपको बता दूं कि स्वामी नारायण मार्ग जो है वो बंद है। सड़क निर्माण कार्य के कारण यह मार्ग 4 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक पूरी तरह से बंद रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस खंड पर किसी भी प्रकार की जो वाहन की आवाजाही पर रोक लगाई हुई है। आज़ादपुर मंडी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जल निकासी की खुदाई के काम के चलते आज़ादपुर मंडी और उसके आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। और अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा

और अगर आप बदरपुर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे गरुड़ा ने हमें ये मैसेज भेजा है कि वहाँ पर अगर आप मथुरा रोड की तरफ से बदरपुर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल सकता है, ट्रैफिक जैम। और एक और हमारी लिसनर हैं जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है, ये भेजा है कमल बिष्ट ने दिलशाद कॉलोनी से। ये लिख रहे हैं कि दिलशाद कॉलोनी और दिलशाद गार्डन के बीच में काफ़ी ट्रैफिक है और भयंकर जाम लगा हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दी अपडेट। और ये कमल बिष्ट हैं जिन्होंने दिलशाद कॉलोनी दिल्ली से हमारे साथ ये जानकारी शेयर की है। और दोस्त, अगर आप भी हमारे साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। और लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से प्रीत विहार की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको हैवी ट्रैफिक मिलेगा। ये स्तुति जैन ने हमें ट्रैफिक भेजा है, ट्रैफिक अपडेट। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। फिलहाल आपको हम बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस से जोड़ने का काम जो है वो चल रहा है, और जिसे अक्टूबर तक प्रयागराज का जो अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा ऐसी उम्मीद है, और प्रयागराज का ये सफ़र जो है आसान हो जाएगा। और आपको एक और ब्यूटीफुल ट्रैक सुनवाते हैं और उसके बाद तमाम और जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम सिटी राइट्स चल रहा है।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमें ट्रैफिक अपडेट्स के माध्यम से, क्योंकि आप हमें ट्रैफिक अपडेट्स भेज सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, तो आप हमें ट्रैफिक अपडेट्स भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868107070। और फिलहाल आपके लिए मैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहा हूं और इस ब्रेक के बाद आपसे फिर जुड़ता हूं।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में हम आपको दिल्ली एंड और प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में हम आपको जानकारी देते हैं दिल्ली और एनसीआर में अभी इस समय क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं। तो मैं आपको इवेंट्स के बारे में भी बता दूं कि 17 टॉय बिज इंटरनेशनल B2B प्रदर्शनी चल रही है इस वक्त, जो कि 4 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक चलेगी। भारत मंडपम नई दिल्ली में चल रही है, और टॉय बिज इंटरनेशनल की B2B प्रदर्शनी भारत के 400 से अधिक प्रमुख खिलौना ब्रांड और खिलौना एवं खेल निर्माताओं के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के समान अपने उत्पाद प्रस्तुत करने का एक बहुत ही अच्छा जो माध्यम है, जहां पर ये प्रदर्शनी चल रही है, एक ऐसा मंच है जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यहां पे उत्पाद जो है मेड इन इंडिया है। और इसके मुख्य जो आकर्षण है वो है कि इस प्रदर्शनी में मेड इन इंडिया खिलौने हैं, नवीनतम गेमिंग उत्पाद हैं, विज्ञान और तकनीक खिलौने शामिल हैं जो बच्चों के संज्ञात्मक विकास में मदद करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसकी

एंट्री बिल्कुल फ्री है, ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये प्रदर्शनी चल रही है भारत मंडपम में, और जैसे मैंने बताया कि 4 जुलाई से 7 जुलाई तक है। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो यहाँ पर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि गेट, और वहाँ से गेट नंबर 10 जो है भारत मंडपम का सबसे नज़दीक है। और अगर एंट्री फ्री है तो आपको एक और बात मैं आपको बता दूं कि प्री रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, और अगर आप आ रहे हैं तो एंट्री फ्री है लेकिन आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवा कर ही आना पड़ेगा, उसकी कोई फीस नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि जो चिल्ड्रंस हैं 16 ईयर्स से नीचे, 16 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनका प्रवेश प्रतिबंधित है, और जो आम विजिटर अगर आते हैं तो वो गेट नंबर 4 से आ सकते हैं वॉक इन करके। और मेट्रो से, जैसे मैंने आपको बताया कि मेट्रो से अगर आप आ रहे हैं तो गेट नंबर 10 से आप आ सकते हैं, जो कि सुविधाजनक भी है। और मुख्य रूप से ये एग्जीबिशन है जहां व्यापारी, निर्माता और रिटेलर्स शामिल हैं। और यहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गेट नंबर 4 और गेट नंबर 10 से आप आ सकते हैं, वहाँ पे पेड पार्किंग है जहाँ पे अपनी गाड़ी को आप पार्क करके यहाँ पर आ सकते हैं। और गेट नंबर 10 पर शटल सर्विस भी उपलब्ध है, और वहाँ से आप शटल सर्विस का भी उपयोग कर यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि 7 जुलाई तक चल रहा है ये। तो आकाशवाणी FM रेनबो पे हम ये तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। और ट्रैफिक अपडेट्स अगर आप कुछ देना चाहते हैं हमें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। फिलहाल आपके लिए ये ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर धवन। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर्वेश, सुरेश, बाबूलाल और सुषमा जो नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अक्षरधाम से अगर आप नोएडा की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर आपको ट्रैफिक स्मूथ मिलेगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये जानकारी दी। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप भी हमारे साथ ट्रैफिक अपडेट्स शेयर कर सकते हैं और हमारा नंबर है 9868107070 और जिसमें आप अगर ट्रैफिक अपडेट्स हमें भेजेंगे अपने नाम और शहर के नाम के साथ तो हो सकता है कि औरों को ये जानकारी मिले और वो भी अपडेट्स हो जाएं कि अगर वो उस तरफ जा रहे हैं और अगर वहाँ पर ट्रैफिक जाम है तो वो उस रास्ते को अवॉइड कर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूसरों का समय भी बचा सकती है। थैंक यू सो मच। और दोस्तों अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम की अगर हम आपको जानकारी दें तो मौसम इस वक्त जो है वो अधिकतम तापमान जो है वो 35 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। और भारतीय मौसम विभाग ने शहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसके तहत आज रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है।

0: जी हाँ, अगर सिग्नल आपको मिले, ट्रैफिक सिग्नल मिले तो रुकिएगा ज़रूर ट्रैफिक सिग्नल पे। अगर रेड ट्रैफिक सिग्नल है, ग्रीन पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रैफिक सिग्नल जंप करेंगे तो भाई चालान हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस गाने से इतना इंस्पायर मत होइएगा कि आप कहें कि मैं जंप जंप जंप बोल रहे हैं तो भाई जंप कर जाएं। नहीं, जंप मत करिएगा, क्योंकि जंप करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे और आपका चालान कट जाएगा। तो हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, जहाँ पर भी हो। अगर आपको ट्रैफिक लाइट रेड मिलती है तो आप रुकें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा और तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स।
1: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
2: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में,
1: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
2: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
1: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
2: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: ये आकाशवाणी एफएम रेनबो 102।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। जी हाँ, सिटी और लाइट्स, क्योंकि लाइट्स थोड़ी देर में ऑन हो जाएंगी जैसे अंधेरा होगा। और मेरा भी अभी कुछ ही देर में आपसे विदा लेने का समय नज़दीक आ रहा है इस प्रोग्राम से। और मैं आपको बता दूं कि अगला प्रोग्राम जो है एम्ब्रिन लेकर आएंगी मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेज मसाला मिक्स में आज का जो टॉपिक है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि ये सरप्राइज है, क्योंकि वो एम्ब्रिन ही आपको बताएंगी कि आज क्या मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं। और उस मैसेज जब आप करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, तो वो मैसेज के साथ तड़का लगाकर सॉन्ग्स का आप तक पहुंचाएंगे और आप क्या खूब चटकारे लेकर उसको सुनेंगे प्रोग्राम को, तो भाई मज़ा आ जाएगा। और आपको बता दें कि वैसे तो हम रेनबो में हर एक घंटे के बाद कुछ नया प्रोग्राम लेकर आते हैं आपके लिए, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का पूरा डोज, फुल डोज आपको पूरे 24 घंटे मिलता है। और आप भी इतनी शिद्दत से हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी लगता है कि हमारे जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच। और फिलहाल आपको एक और गीत सुनवाता हूँ और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा एम्ब्रिन के साथ प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में। और समय आगे तो बढ़े।

0: ही रहा है, तो चलते हैं एक और गीत सुनते हैं।
1: जवान पीछे से गाना गाएगा।

दोस्तों अब मेरा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। मैं चलते चलते इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो। अब वीर दमन को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा एक नए सफर पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।

नमस्कार, पूरे छह बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच गए हैं। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की। ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की आज गुवाहाटी में बैठक शुरू। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने आयोजित किया। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस की वापसी के लिए बैंक खाता वितरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामिनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में दो दिवसीय सार्वजनिक विदाई समारोह के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया कि सूडान में पिछले 6 महीनों से जारी युद्ध में 300 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं, जिनमें से अधिकतर ड्रोन हमलों के शिकार हुए हैं। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। और ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 FM रेनबो दिल से दिल तक प्रोग्राम। जी हाँ, कौन सा बताया तो है अभी, मैसेज मसाला मिक्स। जी हाँ, एम्ब्रीन आ गई है और बातें होनी है खूब सारी। जैसा कि बताया ना, पता है इस वाले प्रोग्राम में क्या होता है, खूब सारे मैसेज करते हैं, अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, कुछ डिस्कशंस भी कर लेते हैं, कई कई राय हमें, कई कई मशवरे हमें ऐसे पता चल जाते हैं कि जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है, लेकिन जब बातें पता चलती हैं ना अपने दोस्तों से कि अच्छा वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, ये ऐसे हो जाता है, ये वैसे हो जाता है, 50 चीज़ें जो हमारे दिमाग में कई बार नहीं होती हैं वो आ जाती हैं। तो यही तो होता है बात करने का फ़ायदा, जब तक बातें नहीं करेंगे, जब तक दिल से दिल मतलब कैसे मिलेंगे, तो बातें करनी है, दिल से दिल मिलाने हैं इसलिए, ताकि राय जो है ना एक कायम हो जाए। फिलहाल एम्ब्रीन आज क्या पूछने वाली कुछ नहीं हो, मैं तो आपसे डिस्कस करती हूँ, बताओ भाई आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। अब फिलहाल दो दिल नहीं, यहाँ बहुत सारे दिल मिल रहे हैं। यहाँ तो मैं गाना प्ले कर रही हूँ क्योंकि गाने में दो दिल मिल रहे हैं, लेकिन वैसे मैं बताऊँ बहुत सारे दिल मिल रहे हैं। बस करना क्या है आपको, 9868107070 पर मैसेज भेजना है, और मैसेज भेज के पहले तो अपना बताना है हालचाल, ताकि मेरे इस दिल को तसल्ली मिल जाए। तो बस बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक के साथ।

क्या हो रहा है चुपके चुपके, क्या हो रहा है गुपचुप गुपचुप, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बता दो ना, सोचो मत, क्योंकि ये जो वक्त है ना, इसमें हम अपनी बातों को बताते हैं, हम अपने दिन भर जो भी कुछ बातें ऐसी रही होती हैं जिसका दिल करता है और हम बता नहीं पाते हैं, तो ये

जो है ना 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर जो आती है, ठीक है, तो उस पर ये बताती हैं कि ये बताती हैं और ये कोशिश करती हैं कि आपकी जितनी बातें हैं उनको मैं सुनूं और कोशिश करें कि हम अपना दिल एक दूसरे को बातें बताकर सुनाकर उसको कुछ हल्का कर लें। आप सुन रही हैं आकाशवाणी एफएम रेन वो दिल से दिल तक प्रोग्राम, आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स। और दोस्तों बताओ, आज बहुत मैं सिंपल सी एक बात पूछ रही हूँ जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, नज़रअंदाज। मुझे ये बताओ आप सब लोग कि कौन कौन आप में से, लंच तो सब करते हैं, डिनर भी सब करते हैं, शाम का स्नैक्स भी सब करते हैं, ब्रेकफास्ट भी सब करते हैं, सब करते हैं ना ब्रेकफास्ट तो सब करते हैं, लेकिन सुबह का जो टाइम होता है हम लोगों के पास बड़ा शॉर्ट टाइम, जिसे कहते हैं ना भागा दौड़ी वाला, वो हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और ये करना वो करना, ऑफिस जाना है उसके लिए पैक करना, लंच पैक करना, मतलब 50 चीज़ें होती हैं। तो आप में से इन सब चीज़ों के होते हैं क्योंकि टाइम कम होता है और काम भी सारे करने होते हैं, तो कौन कौन ब्रेकफास्ट करके जाता है और कौन कौन ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता है, तो ज़रा बिल्कुल ऑनेस्टली बताइएगा। इसलिए कि जब आप ऑनेस्टली बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं, और जो ये बताएगा जी ब्रेकफास्ट करके जाते हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बताएं मुझे कि ब्रेकफास्ट करके कौन जाता है कौन नहीं जाता है। 9868107070 पर एम्ब्रीन आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रही है। मैं भी बताऊंगी कि मैं ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकलती हूँ या नहीं निकलती हूँ, बता दूंगी पक्का, बिल्कुल सही सही बताऊंगी मैं भी। तो आपको भी जो कुछ कहना हो मुझे तो आप कह सकते हैं आराम से, कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्त ऐसे ही होते हैं ना, दोस्ती में तो सब एक दूसरे को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। और वेल मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं मेरे पास, भगवान दास का आ चुका है, कहते हैं कि बिल्कुल सही हूँ मैं, बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। सरफराज आलम का भी आ चुका है, ये भी बिल्कुल बढ़िया है, कह रहे हैं आपके क्या हालचाल है, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। दानिश का भी मैसेज आ चुका है, सब बता रहे हैं कि हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं। और रंजीत कुमार का भी मैसेज आ चुका है, कह रहे हैं कि अभी बस गाने सुनो एफएम रेनबो पर, आपका चैनल लगाया, आहा मेरा चैनल आकाशवाणी एफएम रेनबो में, जब आप ये कहते हैं ना कि अपना चैनल लगा लिया है तो फिर वो लगता है कि परिवार है, कि अपना चैनल लगा दिया है ना। नरेंद्र सोनी का भी मैसेज आ चुका है, गुड इवनिंग जी, एनर्जेटिक ओके हम कोशिश करते हैं कि आपके मैसेज जो होते हैं ना वो इतने एनर्जेटिक, और जब आप इतने एनर्जेटिक तरीके से भेजते हैं मैसेज कि बस यहाँ मैंने पूछा हालचाल और आपने बताया, तो मेरे अंदर ना एनर्जी अपने आप आ जाती है, सच बता रही हूँ मैं। कमल का भी मैसेज आ चुका है, आनंद कहाँ से, दिलशाद कॉलोनी से, कहते हैं कि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। ओहो दिल्ली में रहते हैं, स्वागत है, मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ अच्छा, कहने बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और पंकज का भी मैसेज आ चुका है, ये भी फर्स्ट क्लास हैं। भुवनेश का भी मैसेज आ चुका है शोक विहार से, बिल्कुल वेल वेल वेल हैं, और सबके मैसेज आ रहे हैं। चलिए तो ये तो हो गया हालचाल का, मैंने मैसेज पूछा हालचाल के लिए बारे में मैंने आपसे पूछा, तो अब आपको बताना है क्या जो मैंने पूछा है, जल्दी से इंतज़ार करिए एम्ब्रेन, क्योंकि वैसे इंतज़ार का मज़ा भी एक अपना ही एक अलग मज़ा होता है, लेकिन क्या करें ये जो टाइम है ना ये नहीं रुकता किसी के लिए। देखिए ना कितनी जल्दी 6:16 और पूरे 7 सेकंड हो गए हैं, तो दो दिल तो मिल गए हैं और यहाँ बहुत सारे दिल मिल गए। अब मेरा दिल कर रहा है हमें जब से ना क्या मोहब्बत हो गई, जब से आप सबसे जुड़े हैं ऐसा ये मोहब्बत हो गई, ऐसा दिल हो गया है कि बस क्या बताएं। तो फिलहाल गाने के जरिए बता देते हैं, कहीं मत जाएं, बने रहें आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक के साथ।

6:23 और पूरे 58 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक का प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और इतने सारे मैसेज, इतने सारा मसाला, इतना उसमें मुझे मिक्स कुछ नहीं करना पड़ेगा। मिक्स तो मैं ये देख रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में कितना जो है मिस चल रहा है और कितना मिक्स चल रहा है। ये आया है मैसेज आंशी शर्मा का। आंशी, कैसी हो आप? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कहते हैं कि मैं तो अक्सर जो है ब्रेकफास्ट करके ही जो है जाती हूँ, कभी कभी देर हो जाती है, कभी कभी देर हो जाती है तो फिर नहीं करके जा पाती हूँ। आंशी, कभी कभी की तो बात चलो समझ में आती है कि कभी कभी आप ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती, कुछ देर हो रही है या कभी देर से आँख खुलती है, समझ में आता है। लेकिन ये अच्छा लगा कि आप ब्रेकफास्ट करके जाती हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रकाश शिंदे का मैसेज है, इन्होंने तो पूरी एक कविता ही लिख दी। चाय और नाश्ते की खूबसूरत जुगलबंदी, सुबह की धूप और हाथ में चाय का प्याला हो, प्लेट में सजा आपका पसंदीदा नाश्ता निराला हो, आय हाय, मेज पर सजी हैं खुशियाँ, महक रही है ताज़ी चाय, आओ मिलकर करें, नया दिन हमें बुलाए। ये तो बहुत अच्छी, इन्होंने एक पोयम लिख दिया है। लेकिन प्रकाश शिंदे, ये तो बताइए, ये तो सब इतना अच्छा नाश्ते की आपने शुरुआत कर दी कि उसकी खुशबू हो और इसकी खुशबू हो और ये नाश्ता और वो नाश्ता हो। आप नाश्ता करके जब भी अपने काम के लिए निकलते हैं सुबह, तो नाश्ता करके निकलते हैं या बिना नाश्ते के निकल जाते हैं? मैंने कई मैसेज ये भी आए हैं कि जिन्होंने देर से ट्यून किया है। तो आज किस हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि कौन कौन जब अपने घर से निकलता है सुबह में बिना नाश्ते के निकलता है और कौन नाश्ता करके निकलता है। आज का सवाल जो है ना, आज की जो बात है वो ये है। और ये मैसेज है, गुड इवनिंग जी, ये अच्छा आनंद विहार रेलवे कॉलोनी से मैसेज है किशन और नीलम का, स्वाति का, किशु का। अच्छा, मैंने टॉपिक बता दिया है क्योंकि इन्होंने टॉपिक नहीं सुनवाए थे। देर से क्यों ट्यून किया ये बताइए, और बारिश हो रही है क्या ये भी बताइए मुझे कि वहाँ बारिश हो रही है या नहीं, क्योंकि आपने लिखा है झमझम बारिश हो रही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हो रही है। खैर कोई बात नहीं है, ऐसे ही मौसम चल रहा है दिल्ली की, किसी जगह पे बारिश हो रही है, किसी जगह पे बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा हुआ हुआ है। और ये मैसेज किसका आया है, ये मैसेज है, गुड इवनिंग जी, इम्तियाज़ का मैसेज है। इम्तियाज़ कहते हैं कि हमारे घर में जो है ब्रेकफास्ट भरी, अच्छा ब्रेकफास्ट जो है वो हैवी होता है, भारी करते हैं, और उसके बाद जो है फिर जो है हल्का शुरू हो जाता है। रात में तो बहुत कम से कम खाना खाते हैं और ब्रेकफास्ट जो है वो हम करके निकलते हैं। क्या बात है, क्या बात है इम्तियाज़, अच्छी बात है। और ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, सभी कहते हैं, क्योंकि अगर हैवी करके निकलोगे और दिन में अगर हल्का रखोगे और रात में थोड़ा और हल्का रखोगे तो ये गुड हेल्थ की निशानी होती है, अच्छी बात है। और किसका मैसेज आ गया, ये मैसेज है रजनी शर्मा का, इन्होंने कहा है कि सबका टाइम, मतलब सुबह का जो टाइम होता है बहुत बहुत भगदड़ वाला होता है, बर्डन होता है, बहुत कुछ, किसी के स्कूल का नाश्ता पैक करना है, किसी के ऑफिस के लिए नाश्ता पैक करना है, कभी कभी तो बेटू जो है ना वो गुस्सा हो जाता है और वो बिना जो है नाश्ता किए चला जाता है। ओ नो नो नो नो रजनी शर्मा मतलब बिना नाश्ते के समझाया जा सकता है, क्योंकि जब स्कूल बच्चे जाते हैं कई बार बहुत झुंझलाहट आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करें, काम भी सुबह में इतने सारे होते हैं ना, उसको मैनेज तो करना ही होता है, तो कभी कभी चलता है, लेकिन स्कूल में बच्चा जा रहा है तो आप तो उसको मना भी सकती हैं बहुत अच्छे से। और ये आया है मैसेज सेक्टर 10 नोएडा से, ये मैसेज है सर्वेश, सुरेश और बाबूलाल और सुषमा का, कह रहे हैं कि हम आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो आपने पूछा है नाश्ते पर कि हम नाश्ता करते हैं या

0: अच्छे से जो है दिन भी गुजरता है, और जो इन्होंने कहा है तो ये भी बात सही है। बस कुल मिलाकर हमें नाश्ता करके निकलना है, खाली पेट नहीं निकलना है। बहुत मैसेज अभी आ रहे हैं, कुछ अभी देखिए आए ना रजनी का कि बच्चा कई बार बुरा मान जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं, ऐसे कभी कभी तो चलता है। लेकिन रोजाना जो है अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह बहुत सारे लोग कहते हैं भूख ही नहीं लग रही है, भूख ही नहीं लग रही है, होता है। लेकिन उसका भी मैं एक तरीका बता दूंगी, बता रही हूँ तरीका, भाई हम लोग यहाँ पे डिस्कस ही तो करते हैं, क्या पता वो तरीका काम आ जाए। वेल, आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी एम्ब्रीन, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक के साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसे देते हैं। इस बार
2: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में,
1: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
2: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
1: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
2: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

6:36 और पूरे 22 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम। आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स। गुड्डू का मैसेज आ चुका है मध्य प्रदेश से, कहते हैं कि मैं खुद ही ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ओए होए, खुद ही ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और फिर जो है सबके लिए भी बनाता हूँ, सब करते हैं ब्रेकफास्ट। आ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। खुद बनाते हैं, खुद करते हैं और जो है घर वाले भी इंजॉय करते हैं उस ब्रेकफास्ट को, बहुत अच्छी बात है। तो इट मीन्स आप ब्रेकफास्ट करके ही अपने काम के लिए निकलते हैं। ये मैसेज आया है, किसका नाम ने लिखा, नाम ने लिखा क्या, सुबह को एक कप चाय गरम गरम पीता हूँ और दही जलेबी खाकर घर से निकलता हूँ डेली। आदिल का मैसेज है, आदिल कमर का, डेली दही जलेबी खाकर निकलते हो, ये और बता दो कि डेली दही और जलेबी खाकर निकलते हो या नाश्ता कुछ डिफरेंट होता है। ये तो अच्छा लगा कि चलिए नाश्ता करके निकलते हैं, ये और बता दो मुझे। अगला मैसेज है ये, जब हम घर से कहीं निकलते हैं तो ब्रेकफास्ट करके ही निकलते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो करके निकलता है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। शाहिद किसका, सज्जाद सदफ का मैसेज है बिहार से। अच्छी बात, देखिए सब कितने अच्छी मतलब बातें मेरे फ्रेंड्स करते हैं, सब कुछ पता है लेकिन फिर भी कभी कभी जो है ना कहते हैं अरे टाइम नहीं मिला इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। गौरव का मैसेज है, गौरव आपको सारी बातें बहुत अच्छी लगी, आप कह रहे हो आज का टॉपिक भी बहुत बढ़िया, लेकिन अपनी राय अपनी बात तो बताई नहीं कि जब तुम ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो या काम के लिए निकलते हो कहीं भी, तो ब्रेकफास्ट करके निकलते हो गौरव या नहीं निकलते, जल्दी से जवाब दो, फटाफट इंतजार करिए एम्ब्रीन। और मुंबई में तो इसमें झमाझम बारिश हो रही है, ऐसा प्रकाश शिंदे कह रहे हैं, कह रहे हो मैं भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाता हूँ जी। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप भाग रहे हैं और बता रहे, अरे मैं भी जो है ना ब्रेकफास्ट करके जाता हूँ, समझ गई मैं भी, चलिए खैर अच्छी बात है। और इन्होंने लिखा है कि मैं एक टीचर हूँ और अब मेरा सुबह का जो टाइम है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ तो मैं नाश्ते के साथ साथ खाना भी बनाती हूँ, सारे काम एक साथ करती हूँ। किसका मैसेज है, अच्छा दीपा का मैसेज है, और लिखती है कि शो सुनते सुनते, अब देखिए ना अभी भी शो सुनते सुनते मैं रात के खाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ और रात का खाना बना रही हूँ। क्या बात है, रेडियो सुनकर, और मेरी कोशिश भी ये है दीपा के मैं गाने ऐसे प्ले करूँ कि जिनको सुनकर खूब मज़ा आए, और जो हमारी ये बातें चल रही हैं लग रहा है ना बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल मतलब मैं तसव्वुर कर रही हूँ कि मेरे सामने हो और हम दोनों बातें कर रहे हैं और तुम ये बता रही हो कि मेरा खाना ना जो है ना सब रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि मतलब बनाती हूँ, एफएम रेनबो चलता रहता है और ये रेनबो चलता है, मैं अपना यहाँ पर जो है गाने इंजॉय करती हूँ, अपने आरजी को इंजॉय करती हूँ, 102.6 तो मेरा फेवरेट ही है, उसको तो मैं इंजॉय करती हूँ, हर तरह के गानों को मैं इंजॉय करती रहती हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। देखिए काम का पता ही नहीं चलता है, काम भी हो रहा है साथ में एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, यूं ही ना बात मजा गया वही सुनकर। और ये मैसेज किसका है, ये है नाम प्रेरणा शर्मा का मैसेज है, लिखा है ओ माय गॉड क्यों क्यों क्यों ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करती हैं और पैक करके ले जाती हैं और ऑफिस में करती हैं, फिर मुझे लग रहा है यही होगा कि सुबह सुबह भूख नहीं लगती या सुबह सुबह बहुत काम है। ये तो प्रेरणा तुम्हें बताना पड़ेगा, इन दो में से क्या चीज़ है कि बिजी बहुत बहुत टाइम जल्दी निकलता है या फिर देर से उठती हो या फिर भूख नहीं लगती है, इस बात का भी तुमसे जवाब चाहिए प्रेरणा, ठीक है। 9868107070 पर जिन से मैंने कुछ अलग से सवाल पूछे जरा फटाफट बताएं ताकि मुझे पता चल जाए, तो कहीं मत जाएं, बने रहे हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, गुड इवनिंग जी, इन्होंने लाइट ब्रेकफास्ट के बारे में लिखा है लेकिन नाम नहीं लिखा है। साहिल तो नाम नहीं है आपका, बता दीजिए क्योंकि मेरे शो में आपका नाम नहीं आया, कोशिश की है जानने की तो जान गई हूँ, दिल से दिल तक की बातें हैं ना, दिल से दिल तक, तो बताओ साहिल के, हाँ हाँ मैं साहिल ही हूँ, बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करने वाला, इंतज़ार कर रही हूँ। सच में सवेरे का समय भागम भाग वाला होता है लेकिन मेरे घर में जितनी जो मेरी लेडीज़ हैं मतलब बहनें हैं या जो भी हैं मेरी बड़ी, वो सब मिलकर जो है वो काम करती हैं, बच्चे भी तैयार हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाता है, इसलिए ऑफिस जाने से पहले सब अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर कर लेते हैं। रंजीत कुमार का मैसेज है, बहुत अच्छी बात है कि घर में जितनी लेडीज़ें मिलकर काम कर रही हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है और ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, और जो जो ऑफिस के लिए जा रहे हैं या स्कूल के लिए जा रहे हैं अपने काम के लिए निकल रहे हैं वो सब ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं, बहुत मज़ेदार बात। तो मुझे और भी मैसेज का इंतज़ार है, मैं भी बताऊंगी क्योंकि पूछा है, आप भी तो बताइए, बता देंगे, अभी आपके साथ ही हैं, अभी तो 6:41 हुए हैं, पूरे 10 सेकंड हो गए, कहीं नहीं जा रहे, आपके साथ हैं। तो ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। एम ब्रेन को और प्रोग्राम आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स, और बहुत सारे जो मैसेज हैं वो आ गए हैं, और सबका कहना यही है ज्यादातर कि हम तो ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, भले ही ना करके निकलते हो। नहीं नहीं नहीं, निकलते होंगे। कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, बहुत आ गया है कि एम ब्रेन आप बताइए। कई बार मेरे साथ भी हो जाता है कि बहुत जल्दबाजी होती है और देर हो रही होती है, या आँख मेरी कई बार देर में खुल जाती है, तो बस ये होता है कि बस जल्दी जल्दी निकलो, नाश्ता पैक किया, ब्रेकफास्ट पैक किया और ऑफिस में कर लेंगे। लेकिन गलत बात, कभी कभी, लेकिन मैंने देखिए सब मैसेज आए हैं, किसी ने, मेरे फ्रेंड्स ने ये भी बोला है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को देर हो गई है तो हम लोग जो है ब्रेकफास्ट ऑफिस में कर लेते हैं, या जो स्कूल बच्चे जाते हैं वो अपने लंच ब्रेक में जो है वहीं से कैंटीन से लंच, ब्रेकफास्ट या लंच जो भी है वो ले लेते हैं। तो ये कभी कभी, ये कभी कभी वाला जो आया है ना, तो ये कभी कभी किसी के साथ भी हो सकता है, तो वो मेरे साथ भी हो गया, लेकिन कभी कभी, लेकिन अक्सर जो है

ब्रेकफास्ट करके निकलना चाहिए और निकलती भी हूँ। दानिश को भी मैसेज आ चुका है और दानिश कह रहे हैं कि मुझे वैसे जो आपने लिखा है वो इतना मिला हुआ है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दानिश दोबारा से मैसेज भेजो, फटाफट इंतज़ार कर रही हूँ मैं। और ये मैसेज आया है, सुबह का नाश्ता ज़रूर करते हैं, और ये मैसेज किसका है, नाम है, अच्छा हाँ ये है अनीता मुक्ति का है और सिमरन का है। इन्होंने लिखा कि हम नाश्ता जो है ना वो ज़रूर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम तो, अनिल शर्मा का मैसेज है, सरिता विहार से कह रहे हैं कि हम तो रिटायर्ड बुजुर्ग हैं। अच्छा क्या बात है, इसके लिए इसलिए हम ब्रेकफास्ट जो है घर पर बिल्कुल तय समय पर करते हैं, जितने बजे का है हमें उतने बजे ब्रेकफास्ट चाहिए। ये तो खैर अच्छी बात है कि ब्रेकफास्ट जो है वक्त पर करते हैं, भले ही आप घर पर हैं, घर में भी आपकी कई शेड्यूल्स कई बिजीनेस होती हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट अपने टाइम पे करना ये बहुत अच्छी बात है। और ब्रेकफास्ट के बिना तो कुछ नहीं होता, घर से बाहर निकलने से पहले कुछ खाना ज़रूरी है। ये भेरूलाल बोल रहे हैं ऐसा, अच्छी बात कही आपने, बहुत ज़रूरी है ब्रेकफास्ट करके निकलना। और ये मैसेज किसका है, आर्यन का मैसेज है, हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे गाने प्ले हो रहे हैं, बस क्या चाहिए, यही चाहिए कि जब हम बातें करें अपने दिल को जो है ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे खोल के रखें एक दूसरे के सामने कि बस मज़ा आ जाए। दोस्ती जो है, दोस्ती में यही अच्छा लगता है कि एक दूसरे से ना हम लोग बिल्कुल खुलकर बात करें। जब खुलकर बात करते हैं तो अपने दिल के जितने गम होते हैं ना, तकलीफें होती हैं ना, वो भी सब निकल जाती हैं। वो जब सब निकल जाती हैं तो दिल जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और अपने दिल को फ्रेश रखना ना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग तो हर हर टाइम सोचता रहता है ये ऐसे करना है, कैसे करना है, वैसे करना है, जैसे करना है, ओ माई गॉड कैसे कैसे करना है। लेकिन दिल जो है ना, उसका सुकून मिलना, दिल को सुकून मिलना, उसको इत्मीनान आना, वो बेइंतहा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ, क्योंकि ये वाला गाना मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। फटाफट मुझे और मैसेज करिए जल्दी से 9868107070 पर, एम ब्रेन इंतजार करिए, सुनते रहे आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 MHz पर, दिल से दिल तक।

6:55 और पूरे 12 सेकंड हो गए हैं। देखिए ना वक्त कैसे गुजर जाता है। ऐसे ही तो होता है, वक्त का काम है जल्दी जल्दी चलना और हमारा काम है वक्त के साथ चलना। तो फिलहाल अमरीन को दीजिए इजाज़त क्योंकि शालू स्टूडियो में आ चुकी हैं अपना शो लेकर। ठीक है, तो फिर अभी थोड़ी देर के बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, नाश्ता कर ज़रूर चलिए, मतलब निकलिए अपने घर से, क्योंकि वो बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। और हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ, अपना तो ख्याल रखते हैं, अपने आसपास का, अपने पड़ोसियों का भी खास ख्याल रखिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर।

फुटबॉल के महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्ड कप जो कि यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में खेला जा रहा है में कल दो शानदार मैच खेले गए। पहला मैच 5 बार विश्व विजेता ब्राजील और नॉर्वे के बीच खेला गया। नॉर्वे ने शानदार फुटबॉल खेलते हुए ब्राजील को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया। अर्लिंग हालैंड ने 79 और 90th मिनट में गोल मारकर नॉर्वे को 2-0 की बढ़त दिलाई थी। ब्राजील को 100th मिनट में पेनल्टी मिली जिसको नेमार ने खूबसूरती से गोल मारकर मैच 2-1 पर ले आए, परंतु समय नहीं बचा और नॉर्वे ने ये मैच अपने नाम कर लिया। फर्स्ट हाफ में ब्राजील को एक और पेनल्टी मिली थी लेकिन ब्रूनो गिमराइज गोल नहीं कर पाए। इस जीत के साथ नॉर्वे अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा है और नॉर्वे के लिए ये बहुत गर्व की बात है। जहां तक ब्राजील की बात करें तो काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा और 1990 के बाद ये पहली बार है जब ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। इस हार के साथ ब्राजील का नॉर्वे के अगेंस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड और खराब हुआ। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि नॉर्वे ऐसा अकेला देश है जिसके साथ ब्राजील कई बार खेला है लेकिन हरा नहीं पाया है। ब्राजील नॉर्वे से आज तक 5 मैच खेला है जिसमें से उन्होंने 2 मैच हार गए हैं और 3 बार मैच ड्रॉ रहा है।

चलिए अब बात करते हैं कल रात के दूसरे रोमांचक मैच की, जो कि मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच मेक्सिको सिटी में खेला गया। ये मैच शुरुआत से ही काफी तेजी और रोमांच भरा रहा। इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने 90 सेकंड में दो गोल मारकर इंग्लैंड को 2-0 की बढ़त दिलाई। जैसे ही इंग्लैंड को लगने लगा कि उनकी क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की होती दिख रही है, मेक्सिको के किनोनेस ने 42nd मिनट में हाफ टाइम से पहले गोल मारकर मैच 2-1 पर ले आए। सेकेंड हाफ में बस 9 ही मिनट बीते थे जब इस मैच में एक और दिलचस्प मोड़ लिया। 54th मिनट में इंग्लैंड के क्वांसा को एक हैवी टैकल के चलते रेड कार्ड दिखाया गया। इंग्लैंड के अब बस 10 प्लेयर फील्ड पर बचे थे और मेक्सिको को लगा कि यही मैच को बराबरी पर लाने का अच्छा मौका है, परंतु 60th मिनट में मेक्सिको के गोलकीपर ने इंग्लैंड के एंथनी गॉर्डन को पेनल्टी बॉक्स में गिरा दिया और इंग्लैंड को पेनल्टी मिल गई। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन आगे आए और एक शानदार पेनल्टी के साथ गोल मारकर इंग्लैंड को मैच में 3-1 की बढ़त दिलाई। जैसे ही ये लगने लगा कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा, मेक्सिको के राउल हिमेनेज ने 69th मिनट में पेनल्टी मारकर मैच को 3-2 पर ले आए। अगले 20 मिनट तक मेक्सिको कोशिश करता रहा लेकिन गोल नहीं कर सका। इस जीत के चलते इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और उसका अगला मुकाबला नॉर्वे के साथ 11 जुलाई को होगा।

मैचेस पर नजर डालें तो राउंड ऑफ 16 का सबसे बड़ा और दिलचस्प मुकाबला आज डैलस स्टेडियम में पोर्चुगल और स्पेन के बीच खेला जाएगा। स्पेन की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले फ्रांस और अर्जेंटीना के साथ स्पेन भी प्री टूर्नामेंट फेवरेट थे ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। स्पेन की टीम में फुटबॉल जगत के सुपरस्टार्स भरे हुए हैं और स्पेन ये जरूर चाहेगा कि इन बड़े मैचों में उनकी टीम के बड़े खिलाड़ी आगे आए और शानदार प्रदर्शन दिखाए। सारी नजरें स्पेन और बार्सिलोना के खेलने वाले चाइल्ड सेंसेशन लमीन यमाल पर होगी। सुपरस्टार्स की बात कर हो ही रही है तो पोर्चुगल कैसे पीछे रह सकता है। लोकप्रिय खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी CR7 पोर्चुगल की तरफ से खेलते नजर आएंगे। CR7 अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वर्ल्ड कप रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। पोर्चुगल में मैन यूनाइटेड के कप्तान और सुपरस्टार ब्रूनो फर्नांडेस और PSG के विटिनिया और जाओ नेवेस रोनाल्डो और पोर्चुगल को क्वार्टर फाइनल तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। स्पेन और पोर्चुगल आपस में 4 बार खेल चुके हैं जिसमें दोनों टीमें एक एक मैच जीते हैं और बाकी 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर आज रात इस मैच पर होगी तो देखते हैं क्वार्टर फाइनल में कौन अपनी जगह बनाता है।

0: आज खेले जाने वाले दूसरे मैच होस्ट नेशन यूएसए और बेल्जियम के बीच सिएटल में खेला जाएगा। यूएसए अच्छी फॉर्म में चल रहा है और ये मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्का करना चाहेगा। आज सुबह ही खबर आई है कि फीफा ने यूएसए के स्टार प्लेयर फ्लोरिन बोलोगुन के रेड कार्ड का सस्पेंशन पोस्टपोन कर दिया है, जिसका मतलब है कि वो आज इस मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे और ये मैच खेल सकते हैं। बेल्जियम की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और वो अपने सुपरस्टार्स केविन डी ब्रुइने, लियोनार्डो ट्रोसार्ड, लुकाकू जैसे प्लेयर से अच्छा प्रदर्शन की कामना करेंगे। इस मैच के विजेता स्पेन और पोर्चुगल के मैच के विजेता के साथ क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: Well, time to come back to the studio, come back to the world of music. Time to come back to, of course, the country carnival, where Shalu Fall, the late joinees, is saying once again, welcome, welcome, welcome.

0: लेते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: Right there, the messages are here and they're going back and forth. A while ago, Sumit wrote in from Noida and he said that he had that special, attachment with the male vocalists of their country genre. But he very graciously also wrote back to say that, of course, I can't negate the versatility of the female country crooners. And that is being a music lover in its true sense. Of course, we always have our favorites and there's some kind we always gravitate to. But when it comes to the entire, the process of appreciating the greatness of the greats, I think it is this open-mindedness and this readiness to accept different kinds of offerings that makes us truly music lovers. Isn't that so? So thank you for writing back. All right, Ravi has again written back and is wishing me a lovely, great weekend. Ravi ji, the week has just started, but yes, your other regard is very sweet. You say enjoy every moment of your life and always be grateful to the Lord above. Absolutely. And I'm going to use your good wishes for the coming weekend, which is still some days away. But in the meantime, I'm going to wish you a great weekend and also a great week. The week that has just started, it's only a Monday. And as the days are going to keep moving forward, we shall be with you. We who are Akashwani Rainbow. And talking about great female singers of the country genre, can we ever forget Dolly Parton? That's unpardonable. We can't.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: पूरे 8 बज चुके हैं, आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक सुन रहे हैं आप। एम्ब्रीन आपके पास आ गई और कहती है ना, एम्ब्रीन क्या कहती है हमेशा, वो यही कहती है कि जब तक जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। तो देखिए, गई और फिर वापस आ गई। यही तो है आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस, आपका प्यार कि जो खींच लेकर आता है मुझे यहाँ पर। क्या करें, ऐसे ही चलता है ये ज़माना, ऐसे ही चलता है। अगर इश्क ना हो तो कैसे चले। तो बस तैयार हो जाइए थोड़ा सा थी रखने के लिए, थोड़ा सा मस्ती करने के लिए मेरे साथ यानी एम्ब्रीन के साथ। फिलहाल ये वाला गाना बहुत टाइम हो गया है सुने हुए, सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। किस पर? आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक 8:15 और पूरे 10 सेकंड हो गए हैं। म्यूजिक मस्ती में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी एम्ब्रीन। आहा पिंगा, ये वाला जो गाना है श्रेया घोषाल की आवाज़ में कितना अच्छा लग रहा था ना। और लास्ट का जो धुन है ना, वाकई में अगर हम लोग आराम से बैठ के सुन भी रहे ना तो थिरकने का मन कर जाता है। तो बस कहीं मत जाए ना, हमारे साथ बने रहें, क्योंकि पूरे दिन की जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग और दिल में थकावट है उसको दूर करना है ना, तो दूर कैसे करें, म्यूज़िक एक बहुत बहुत बहुत अच्छा माध्यम है। तो बस म्यूज़िक सुनिए और म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा थिरकने का दिल करे थिरक लीजिए, कहीं मत जाए, बने रहें हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक के साथ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: 8:30 और पूरे 40 सेकंड हो गए हैं। म्यूजिक मस्ती सुन रहे हैं आप, एमरीन आपके साथ है। और देखिए ना, वक्त कैसे कैसे कैसे कैसे इतनी जल्दी जल्दी निकल जाता है। और अभी प्रोग्राम शुरू किया था और इतने ज़बरदस्त गाने प्ले हो रहे हैं, तो होता है ये कि मतलब थिरके जा रहे हैं। कई बार ये होता है कि अब बैठ जाएं, बैठ जाएं, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी बैठ जाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ इन गानों को जो अब मैं प्ले करने जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक पर म्यूजिक मस्ती। जी हाँ, म्यूजिक प्लस मस्ती। करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ दोस्तों, ये है आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक, और आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। और ये वाला गाना आहा, टुकुर टुकुर करने के साथ साथ आप थिरकना भी शुरू कर देंगे, मैं सच बता रही हूँ। तो बस एंजॉय करते हैं इस गाने को और सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिक मस्ती एम रेनबो।

चलिए भाई, अब मेरे तो घर जाने का टाइम आ गया क्योंकि रेशमा आ गई है प्रोग्राम लेकर अपना। तो बस उनके शो को एंजॉय कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए। एमरीन को दीजिए इजाज़त। हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें और अपने आसपास का खास ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार। कहा जाता है कि यादें कभी मुस्कुराती हैं, कभी आंखें नम कर जाती हैं, और इन्हीं यादों के साथ आज फिर हाजिर है हम कार्यक्रम आपकी याद आती रही के साथ। आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मीठे से गीत के साथ आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर।

आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। बेशक कुछ लम्हे वक्त की धूल में छिप जाते हैं, लेकिन दिल की किताब से कभी मिटते नहीं। कोई चेहरा, कोई आवाज, कोई खत, कोई बारिश, डायरी का कोई पन्ना मोड़ा हुआ, और कभी कभी कोई गीत भी। बस इतना ही काफी होता है यादों के दरवाजे फिर से खुल जाने के लिए। एक बार आप भी वो शेल्फ में रखी अपनी डायरी उठा के तो देखिए, न जाने आपको भी कितनी आवाजें, कितने चेहरे, और न जाने कितनी पहली बारिशें भी आपको जरूर याद आ जाएंगी। वो बारिश का ही मौसम था जब हम मिले थे, वो बारिश का ही मौसम था जब दिल ने कुछ कहा था, वो बारिश का ही तो मौसम था जब तुमने कुछ मुझसे सुना था, बल्कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। अजब मौसम था, शायद मोहब्बतों का मौसम था। और आज तन्हा है हम, लेकिन इस तन्हाई में भी मोहब्बत की वो पहली कसक आज भी महसूस होती है।

वाकई जब भी हम बारिश की बूंदों को देखते हैं तो इन बूंदों में एक अजब सी बात होती है। ये सिर्फ जमीन को ही नहीं भिगोती बल्कि दिल के किसी कोने में जो पुरानी यादें सजी होती हैं उनको भी छू जाती हैं। कई बार अगर आप खिड़की पर बैठे हों और बारिश हो रही हो तो महसूस कीजिएगा कि खिड़की पर गिरती बूंदों की टप टप और फिर मिट्टी की सौंधी खुशबू और ठंडी हवा का झोंका, अचानक किसी अपने की याद दिल के दरवाजे पर देने ही लग जाता है। यानी

और कुछ भी न सुना जाए, बस ये जो बारिश की आवाज़ है इसे सुना जाए, ठंडी हवा के झोंकों को महसूस किया जाए।

0: लाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: वाकई दिल तो करता है कि ये जो पल गुजर रहे हैं लम्हा भर के लिए ठहर जाएं, लेकिन पल ही तो हैं, भला लम्हों में कैसे ठहर सकते हैं। लेकिन हाँ, दिल ही तो है, दिल तो न जाने क्या क्या कहता है। चलिए देखते हैं कि इस दिल की आवाज़ और क्या कहती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी याद आती रही।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी।

वैसे देखा जाए तो ये इश्क ही तो है जो याद बनकर अक्सर इस दिल को सताता है। इस दिल से कोई आवाज़ आती है कि काश कोई होता, काश कोई ऐसा होता जो हाथ पर हाथ रखकर पूछ लेता कैसी हो। दिल की खामोशी में अक्सर एक आवाज़ उसी की रहती है। तन्हाई के हर लम्हे में याद बस अक्सर उसी की आती है। और एक हम हैं कि हंसकर दर्द छुपा लेते हैं ज़माने की खातिर, वरना

जैसे चांद तो हो आसमान पर मगर उसमें रोशनी ना हो। समझ लीजिए जनाब कि इस दिल का हाल क्या हो सकता है, ये दिल क्या कहता है, क्या सुनता है, क्यों आखिर उसी को ये दिल याद करता है। अजब कहानी है जनाब इस दिल की, ये दिल बार बार उसी को आवाज़ देता है जो नज़र के सामने तो रहता है और इस जिगर के बेहद करीब।

0: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
1: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
0: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधा रोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
1: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधा रोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
0: अधिक जानकारी या पौधा रोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999

0: 7999 पर कॉल कीजिए।
1: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपने नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
0: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और कार्यक्रम चल रहा है आपकी याद आती रही। जानते हैं जब बात तन्हाई की होती है, जब बात अकेलेपन की होती है, तब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आखिर तन्हाई में क्या करें, कैसे अकेले गुजारें जिंदगी या फिर जिंदगी के कई लम्हात। लेकिन मुझे लगता है कि तन्हाई में हम तन्हा कहाँ होते हैं। हमारे अंदर न जाने कितनी कहानियां सांसें लेती हैं, यादें जो कभी खामोश बैठती ही नहीं, कई ऐसे अधूरे ख्वाब जो सोते हुए भी अक्सर जागते रहते हैं, कुछ दुआएं हैं जो होंठों तक आती ही नहीं, कुछ दुख हैं जिन्हें हम संभाल कर रखते हैं और कुछ खुशियां जिन्हें न जाने जमाने से हम छुपा के रखते हैं। हर दिन हर वक्त इन्हीं सब के साथ हम जीते हैं। तन्हाई मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए खामोशी है जो खुद के अंदर झांकते नहीं हैं, जो खुद को सुनना नहीं चाहते, महसूस नहीं करना चाहते। हम सब की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अंदर ही रह जाती हैं और जिंदगी की जो बात है जिंदगी

जिंदगी की जो गज़ल है, ज़िंदगी की जो शायरी है, वो हम अक्सर सुन नहीं पाते। और ये तन्हाई ही तो है जो हमें हमारे करीब ले आती है।

जिंदगी में कोई आ जाए बाहर बन के तो फिर कहना ही क्या। और अब वक्त का इशारा कि मैं आपसे यहीं इजाज़त लूँ, लेकिन वादा करूँ प्रोग्राम रंगे महफिल में आपसे एक और मुलाकात का। तो मिलेंगे आपसे, फिलहाल बस इतना ही कहेंगे कि प्रकाश चंद गोगिया हमारे साथ हैं, कड़कड़ुमा दिल्ली से कार्यक्रम सुन रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वक्त कम है और आप भी इस बात को जानते हैं। तिलक राज अरोड़ा और खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं, और इसके अलावा के पी तोमर साहब कार्यक्रम को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे साथ कौन है, गोवा बारिश बहुत तेज है, और दिल्ली इस वक्त मौसम कैसा है, दिल्ली में बहुत बहुत गर्मी है इस वक्त। और हमारे साथ है कौन, ये आपने अपना नाम नहीं लिखा दोस्त, बट कोई बात नहीं, कार्यक्रम आपको पसंद आया और हमें क्या चाहिए। और इसके अलावा हमारे साथ कौन है, शुभ रात्रि रेशमा जी, अब कौन है, इस आपने अपना नाम नहीं लिखा, गीत आपको अच्छे लगे, सभी को पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त, जी हाँ, हमेशा की तरह हम जो कहते हैं कि लम्हे हम रोक नहीं सकते, लम्हों को गुजर ही जाना चाहिए, तो बस ये लम्हे ऐसे ही गुजरते रहेंगे और ये यादें बनकर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो चलिए, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, ऐसे ही सुनते रहिए। फिलहाल मैं चलती हूँ, बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगी कार्यक्रम रंगे महफिल में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।

0: Like I said, all that applause, all that accolade is so well deserved for that hard working, determined lady called Celine Dion, who wouldn't let language barriers be barriers to her. She had to break upon the world and make it stand in awe at her complete and iconic, beautiful voice and style. But that would eventually happen. What is going to happen right now is a little break.
1: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
2: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
1: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
2: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से होगा।
1: अधिक जानकारी या पौधारोपण स्थल पर अपना स्लॉट बुक करने के लिए www.greendrive.delhi1mahotsav.in पर जाएं या 8588999799 पर कॉल कीजिए।
2: अगर आपके पास पौधा लगाने की जगह है तो वृक्ष रथ को बुलाइए या नर्सरी लोकेटर की मदद से अपनी नजदीकी सरकारी नर्सरी से निशुल्क पौधा प्राप्त कीजिए।
1: और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये संकल्प सिर्फ एक पौधे तक सीमित ना रहे तो बनिए एनवायरमेंटल सेवियर और दिल्ली सरकार के साथ जुड़कर दिल्ली को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: Akashwani Rainbow 102.6. This is Rainbow Showcase. Shalu's here with you saying once again, good evening and thank you for joining, lovely listeners. Of course, I've been collecting and collating your messages, have not been ignoring them, just collecting them so that I can go through them in a breeze. All right, so let's begin with dear friend Indu. She says, hi, good evening to you, lovely friend. Rajkumar is here writing in from Trichy. He says, glad to catch you on Rainbow Showcase. Glad to catch you here, Rajkumar. It's always a pleasure. My dear friend from Delhi, Dev, is here, to whom I've not had the opportunity to say hello in a long, long time. So lovely to say hello to you. And you're saying, happy to listen to you after a long time. Ditto, happy to be with you, Dev. I hope you're enjoying the show. And 9868107070 is the number, you know it. I wanted to repeat it for those who don't. It's that super kind of love that we have, which, at least as far as remembering the number is concerned, doesn't bring on the amnesia at all. It's there on our fingertips, and also on your fingertips is the keypad on which you have to type away your messages. So what's keeping you? Do it. In the meantime, while you're doing it, this track again. Celine Dion. And please note the variation, the range from this track that was played a while ago to this one.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आ गई याद शाम ढलते ही, बुझ गया दिल चिराग जलते ही, खुल गए शहरे गम के दरवाजे एक जरा सी हवा के चलते ही। आइए महसूस करें इसी एहसास को खूबसूरत गजलों के साथ।

फिर वही शाम, फिर वही गम, फिर वही तन्हाई है। वाकई जनाब, जब हम इन खूबसूरत गज़लों की बात करते हैं और जब हम फिल्मों की जानिब देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि गज़लों का एक अहम रोल है हमारी फिल्मों में। और जब बात तलत महमूद की हो तो कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत मखमली आवाज़ के मालिक थे तलत महमूद साहब। आवाज़ में लर्जा था लेकिन दिल में उतर जाती थी बात, और ये आवाज़ आज भी दिल को भा जाती है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम रंगे महफिल में कुछ ऐसी ही खूबसूरत गज़लें आप तक पहुंचाएं जो यकीनन फिल्मों के लिए तो अहम थी ही लेकिन आज भी उतनी ही मकबूल हैं, उतनी ही दिलकश हैं जितनी उस ज़माने में हुआ करती थी।

यूं ही कोई मिल गया था सरी राह चलते चलते, ये चराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते चलते। वाकई बहुत ही खूबसूरत कलाम और लता मंगेशकर की आवाज़ यकीनन बहुत ही खूबसूरत, बेहद दिलकश। जब बात दिलकश आवाज़ों की आती है तो एक नाम हमें और याद आता है, जिसका अभी मैंने जिक्र भी किया था तलत महमूद साहब के साथ, मुबारक बेगम। जी हाँ, गज़लों की बात हो, खूबसूरत आवाज़ों का जिक्र हो और मुबारक बेगम का जिक्र ना आए तो बात कुछ अधूरी रह जाती है। उनकी आवाज़ में बेहद सादगी का एहसास होता है, दर्द और अपनापन तो था ही, और यूं लगता था कि जैसे, बल्कि लगता था क्या, आवाज़ तो आज भी हमारे बीच मौजूद है। जी हाँ, सीधा दिल पर असर होता है उनका हर एक कलाम और उनकी आवाज़। उन्होंने अपनी जो एक गज़ल गायकी का एक फ़न था, उससे साबित किया है कि गज़ल सिर्फ सुरों की नहीं बल्कि एहसास की भी एक अलग तरीके की फनकारी हुआ करती है। तो चलिए इसी फन से और इसी आवाज़ से महसूस होते हैं।

गज़लों की बात हो और ये गज़ल ना सुनी जाए मुबारक बेगम की आवाज़ में, तो वाकई कुछ अधूरापन सा लगता है। इस आवाज़ में नज़ाकत भी है और एक खामोश सी कशिश का भी एहसास होता है। और इस गज़ल की बात करें तो इस गज़ल में मोहब्बत भी है, जुदाई का जज्बा भी है और तन्हाई, उसके तो कहने ही क्या। वाकई अगर फिल्मों में गज़लों का सफ़र उस पर बात की जाए तो ये सफ़र बेहद पुराना है और उतना ही पुराना है जितना हिंदी सिनेमा का एक सुनहरा दौर। गज़ल ने पर्दे पर सिर्फ सुरों का ही साथ नहीं दिया बल्कि अल्फाज को एक ऐसी रूह बख्शी कि वो आज भी हम सब के दिलों में हमेशा यादों की तरह महकती रहती है। तो चलिए इन्हीं गज़लों को सुनते हैं एक और खूबसूरत से सफ़र पर। साथ ही रहिएगा, हमारे प्रोग्राम है रंगे महफ़िल।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। और रंगे महफिल में हम बात कर रहे हैं जज्बात की, एहसासात की, यानी उन गजलों की जो हमारे दिलों में जिंदा हैं।

वाकई जनाब, इस आवाज को तो क्या कहें, ये आवाज तो दिलों में सांसें लेती है। ये आवाज हमारे जज्बात, हमारे एहसासात की एक खास अक्कासी करती है। और ये खूबसूरत आवाजें अक्सर, बल्कि कहना चाहिए बरबस ही याद आ जाती हैं। मखमली आवाज हो, दर्द में डूबी अदायगी हो, या फिर एक अलग गहरा अंदाज। सादगी की बात करें या फिर खनकती हुई आवाज की बात करें, इन सभी ने गजल को घर घर तक पहुंचाया है। और फिल्मी गजलों ने गायकी को एक अलग ही ऊंचाई दी है। तो चलिए एक गजल और सुनते हैं और उसके बाद मैं हूं आपके साथ, कहीं जाइएगा नहीं। प्रोग्राम रंगे महफिल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर।

वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत। और जब बात खूबसूरती की आती है, दिलकशी की आती है, तो जनाब आपके जो मैसेजेस हैं वो भी बेहद दिलकश हैं। देव हमारे साथ हैं, लिखते हैं कि बहुत देर से जाना कि हम खुद ही लाजवाब थे, बेवजह यूं ही खुद को औरों पर तमाम खर्च कर दिया। वाह क्या बात है। वो बहुत पास से गुजरे, दूर तक कुछ न रहा, हमेशा की तरह बिल्कुल अलग लिखते हैं देव। बहुत शुक्रिया। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम रंगी महफिल, बेस्ट प्रेजेंटेशन, नाइस गजल सिलेक्शन, बिग थैंक्स फॉर एक्सलेंट प्रोग्राम, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथ कौन है, आपका शो सुनने के लिए मैं फंक्शन से जल्दी घर आ गया और इस वक्त आपका शो सुन रहा हूँ, प्रेमचंद प्रेमी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और तलत महमूद साहब का आपको गीत पसंद आया और गज़लें आपको पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि संभव हो तो गज़लों के इस बेहतरीन प्रोग्राम में जनाब शहरयार साहब का भी कोई कलाम ज़रूर प्ले करें। जनाब अली, अगर हम आपसे यहाँ कहें कि अभी वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो बस आप हमारे साथ रहिए और प्रोग्राम को इसी तरह सुनते रहिए। तस्वीर वफा जला के जिया, पल पल किसी को रुला के जिया, और शख्स वो खुद भी ना कभी चैन से सोया होगा, दिल अपनों का जो दुखा के जिया। बहुत अच्छा प्रेमचंद जी, बहुत बहुत अच्छा आपने लिखा है। और इसके अलावा हमारे साथ हैं के पी तोमर जी, लिखते हैं, सबसे पहले उन्होंने लिखा सुजाता, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने सुजाता फ़िल्म का जो खूबसूरत शाहकार सुना है उसी, इसीलिए आपने हमें मैसेज किया। के पी तोमर लिखते हैं, फिर महफिल में आ गया मैं भी, आदाब नमस्ते, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते, क्या गज़ल है और क्या गायकी। जी हाँ, पाकीज़ा आपने सुना, हमारी याद आएगी, बिल्कुल आपने सही लिखा। और मजरू साहब के कलम का कमाल, और फिर फिल्म ममता, बिल्कुल आपने एक एक लफ्ज़ सुना है जनाब, और आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा रफ़ी साहब के बाद आपने लिखा है मदन मोहन, बिल्कुल आपने, आपका, आप तो वाकई कमाल हैं, वंडरफुल सेलेक्शन ऑफ गज़ल्स, हैट्स ऑफ टू यू, अ रियल, थैंक यू सो मच। आप इतनी सारी हमारी तारीफ़ कर देते हैं तो यूँ लगता है कि हम क्या कहें इस बारे में। हाँ, अलबत्ता कोशिश रहती है कुछ अलग और कुछ ऐसा सुनाए जाएं जो वाकई हम सब के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए सरमाया है। बहुत शुक्रिया के पी तोमर जी, आप अच्छा लिखते हैं और यकीन मानिए आप अच्छा सुनते भी हैं और सराहते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, प्रोग्राम के सभी जो गज़लें हैं इनको बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप ही का है और आप सुनते हैं तो यकीन मानिए हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब ज़िंदगी ऐसे ही आगे चलती रहेगी, और रही बात गज़लों की, फिल्मों की, तो ये फिल्में भी हमारी ऐसी ही हैं कि जब जब जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, नई नई आवाज़ें इसके साथ जुड़ती चली गईं। और अच्छी बात ये रही कि हर दौर में गज़लों ने अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। और बात जब हम करते हैं फिल्म उमराव जान की, तो जनाब उमराव जान बहुत ही खूबसूरत फिल्म, जिसमें आशा भोसले साहिबा ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से गज़लों को अमर कर दिया। मैं यहाँ पुरानी जो उमराव जान थी, रेखा वाली, उसकी बात कर रही हूँ। और इसके बाद एक और फिल्म आई थी, उसमें अलका याग्निक की आवाज़ थी। तो चलिए ऐसा करते हैं, एक छोटी सी बानगी सुनते हैं फिल्म उमराव जान।

तो देखा आपने, ये भी एक शाहकार है, शहरयार साहब का कलाम। और आज भी इस फिल्म की गज़लें हमें बेहद पसंद आती हैं। और जब बात उमराव जान की हो रही है और बात हो रही है फिल्मी गज़लों की, तो धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा। नई उमराव जान आई तो उसमें एक अलग ही अंदाज़ हमें नज़र आया। ज़रा ये भी सुनिए।

तो देखा आपने, अलका याग्निक भी गज़ल से अछूती नहीं रही। उन्होंने भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में गज़लों को एक नया मकाम दिया है। और आप सब प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। रितु हमारे साथ हैं दिल्ली से, मनीष हमारे साथ हैं, और प्रोग्राम को बहुत उनको अच्छा लग रहा है कि मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। और राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से हमारे साथ लिखते हैं कि दिल्ली में बहुत गर्मी है, अभी आया हूँ। तो चलिए, आप अपने घर आ गए हैं और थोड़ा आपको राहत का ज़रूर एहसास होगा। और आपने आते ही रेनबो सुनना शुरू किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। सौरभ तिवारी हैं हमारे साथ हरदोई से, लिखते हैं कि सफ़र कितना भी लंबा हो मुस्कुरा कर तय कीजिए, रास्ते भी अपने लगने लगते हैं तब दिल से जिया कीजिए। रेनबो के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यू आर एन आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटर, कूल बैलेंस्ड। ओके, हमारे साथ केपी तोमर जी, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया केपी तोमर जी आपका। और बहुत हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि आप एक एक लफ्ज बहुत गौर से सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक पहुँचाते हैं, बहुत शुक्रिया। और हम आपसे अब 13 तारीख को ज़रूर मिलेंगे, तो हमारे साथ जरूर रहिएगा। और इसके अलावा हमारे साथ प्रेमचंद प्रेमी जी भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और गज़लें सुनाने के लिए। और जगजीत जी को भी बिल्कुल आपने सही कहा है जनाब, हम किसी को भी नहीं भूल सकते, हमारी लिस्ट में सभी शामिल हैं। सुरजीत जब्बल हैं फरीदाबाद से, तो बहुत शुक्रिया। तो ये प्रोग्राम का जो सिलसिला है जनाब, ऐसे ही चलता रहा। और ख़ास तौर से जब गज़लों की बात आती है तो गज़लों में इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब हम जिक्र करते हैं जगजीत सिंह साहब का, तो फिल्मी गज़लों में जगजीत सिंह ने भी अपनी एक अलग न सिर्फ पहचान बनाई, बल्कि कहा यह जाता है कि गज़लों को हर एक दिल तक पहुंचाने का एक बहुत ही आसान तरीक़ा जगजीत साहब ने इख्तियार किया। और वाकई लोगों ने जो गज़ल को नहीं पहचान रहे थे, उन्होंने गज़ल को समझा, गज़ल को जाना और उसे एक अलग ही मकाम दिया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिलसिला रुका नहीं है, लगातार हिंदी फिल्मों में गज़लों का सिलसिला जारी है। तो चलिए, चलते चलते अब आपको एक खूबसूरत सी गज़ल हम ज़रूर सुनवाएंगे। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि ये आवाज़ है जगजीत सिंह साहब की। और जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि मुस्कुराहटों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जगह दीजिए, ख़ास तौर पर अपने चेहरे पर रखिए मुस्कुराहट, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। तो बस हंसिए, मुस्कुराइए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। फ़िलहाल एक खूबसूरत गज़ल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा और मोहब्बतों के जो चिराग हैं दोस्त, उन्हें हमेशा ऐसे ही जलाते रहिएगा, रोशन रखिएगा। गुड नाइट, शब खैर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। हमारी अगली शुरुआत करने से पहले आइए सुनते हैं FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। महाराष्ट्र

गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 12:30 बजे राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा और जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम का। जी हाँ, प्रोग्राम जीरो आर शो लेकर आपके साथ हाजिर हूँ मैं हेमा। तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक।

0: सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब सुनते हैं अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रोवोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। 1993 बैच के IPS अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। विशाखापट्टनम तट के पास नौका पलटने की घटना के बाद एक मछुआरे को बचाया गया। लापता 6 मछुआरों की तलाश जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है 1:02:40। हमारे अगला प्रोग्राम सुहानी रात, जुड़े रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक एक ट्रैक्स के साथ।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक, रेनबो 102.6 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय 2 बजे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। विशाखापत्तनम तट के पास नौका पलटने की घटना के बाद एक मछुआरे को बचाया गया। लापता 6 मछुआरों की तलाश की जा रही है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम भुलाए ना बनेगा, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बहरीन में शाद हमद बिन ईसा अल खलीफा के से मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। विशाखापत्तनम तट के पास नौका पलटने की घटना के बाद एक मछुआरे को बचाया गया। लापता 6 मछुआरों की तलाश की जा रही है। और जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। एफएम रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यहीं जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: जहर बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त।
1: लाले क्या बताऊं यार, वो जिस जमीन पे पैर रखती है वो जमीन महकने लगती है, और अगर वो अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दे तो ये कुदरत महकने लगती है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: What a beauty! आपका क्या ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
0: Point noted, Mr.
1: रोहित।
0: Mr.
1: रोहित।

और अब प्रस्तुत हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। विशाखापत्तनम तट के पास नौका पलटने की घटना के बाद एक मछुआरे को बचाया गया। लापता 6 मछुआरों की तलाश की जा रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी रेनबू पर अब प्रस्तुत है एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने के उपायों पर चर्चा भी की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है और उसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। 1913 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। विशाखापत्तनम तट के पास नौका पलटने की घटना के बाद एक मछुआरे को बचाया गया। लापता 6 मछुआरों की तलाश की जा रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर अब वक्त हुआ है हमारे प्रातःकालीन कार्यक्रम का, जिसका नाम है आराधना। तो आइए लेते हैं भक्ति संगीत का आनंद आराधना के माध्यम से।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही